जिस प्रकार एक दीपक को जलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारा अस्तित्व भी ईश्वर की कृपा के बिना अधूरा है। वे ही हमारे जीवन के सुख दुख के साथी, परम मित्र, हमारे भाग्य विधाता और जीवन के मार्गदर्शक हैं, जिनकी परम कृपा से हमें शांति, सच्ची शांति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान के प्रति इसी श्रद्धा और विश्वास को समर्पित ये भजन आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में।

ईश्वर की भक्ति यदि सच्चे मन और समर्पण के साथ की जाए तो वे हमारे भीतर के सारे अवगुणों को नष्ट कर हमारे मन को शुद्धता और पवित्रता के ज्ञान से रोशन कर देते हैं। तो आइए सच्चे मन से प्रभु की वंदना करते हैं और सुनते हैं ये भक्ति वंदन अनूप जलोटा के स्वर में।

आप सभी का आज का दिन सुखद और मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के बाद। आज 22 जून है। आइए जानते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन किन महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण दर्ज है। आज की बात कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं शोभा पांडे। आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, हर वर्ष 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में वर्षावनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। साथ ही ऐसे तरीकों को बढ़ावा देना है जिनसे जंगलों को नुकसान पहुंचाए बिना विकास कार्य किए जा सकें। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2017 में रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप नामक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन द्वारा की गई थी। श्रोताओं, 22 जून 1978 को प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा चारून की खोज की गई थी, जिसे अमेरिकी नौसेना वेधशाला के खगोलविद जेम्स क्रिस्टी द्वारा खोजा गया था। चारून प्लूटो के कुल 5 ज्ञात चंद्रमाओं में से सबसे बड़ा है, जो प्लूटो के आकार का लगभग आधा है। श्रोताओं, ऑपरेशन बारबारोसा 22 जून 1941 को शुरू हुआ था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली नाजी जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर सबसे बड़ा और अचानक किया

गया सैन्य आक्रमण था। ये आक्रमण नाजी जर्मनी ने सोवियत संघ के विशाल संसाधनों पर कब्जा करने और साम्यवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से किया था। ये इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी आक्रमण था जो अंततः सोवियत संघ के खिलाफ जर्मनी की भयानक हार और द्वितीय विश्व युद्ध के रुख में बदलाव का कारण बना। श्रोताओं, आज ही के दिन 22 जून 1555 में मुगल सम्राट हुमायूं और बैरम खान की सेना ने सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी की अफगान सेना को हराया था। इस जीत ने हुमायूं को दिल्ली पर कब्जा करने और भारत में मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। आज ही के दिन वर्ष 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी गुट के रूप में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को तेज करना और समाजवादी राष्ट्र का निर्माण करना था। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी मस्त मौला नहीं कुछ फिकर है, बड़ी निडर निडर जिधर चाहती उधर घूमती हूँ। ये पंक्तियाँ हैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध जनवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश में जन्मे केदारनाथ अग्रवाल हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उनकी कविताएं सीधे तौर पर आम आदमी, किसान, मजदूर और प्रकृति के यथार्थ से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने प्रकृति का चित्रण केवल सौंदर्य के लिए ही नहीं बल्कि उसे जीवन के संघर्षों से जोड़कर किया है। वे कल्पनाओं में जीने की बजाय धरातल की सच्चाइयों को अपनी लेखनी का आधार बनाते थे। उनकी प्रमुख कृतियों में शामिल हैं अपूर्वा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग की गंगा, नीत के बादल, आग का आईना और पंख और पतवार। 22 जून 2000 को उनका निधन हो गया। उनकी कविताएं आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि वे हमें अपनी जड़ों, अपनी मिट्टी और अपने लोगों से जुड़ने की प्रेरणा देती हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। विविधा के इस अंक के साथ हाजिर हूँ मैं शोभा पांडे। आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने में जंगलों की भूमिका निर्विवाद है। इनमें से वर्षा वन प्रकृति का सबसे जटिल जीवंत और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। इसीलिए हर वर्ष 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन केवल वनों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि उनके घटते अस्तित्व पर चिंतन करने और उनके संरक्षण की प्रतिज्ञा लेने के लिए समर्पित है। विश्व वर्षावन दिवस की शुरुआत वर्ष 2017 में रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य ये था कि दुनिया भर में वर्षावनों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक आंदोलन शुरू किया जा सके। शुरुआत में ये एक छोटी पहल थी, लेकिन धीरे धीरे दुनिया भर के पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदायों ने इसे अपना समर्थन दिया। आज ये एक वैश्विक मंच बन गया है, जहां लोग वर्षावनों के महत्व को साझा करते हैं और उनके बचाव के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं। श्रोताओं, वर्षावनों को अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि वर्षावन वातावरण से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। साथ ही ये ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करते हैं। वर्षावन जैव विविधता का भंडार है। दुनिया की

आधे से अधिक पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियां इन्हीं वर्षा वनों में पाई जाती हैं। साथ ही ये स्थानीय वर्षा और वैश्विक जल चक्र को नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल मिट्टी के कटाव को रोकते हैं बल्कि नदियों और भूजल स्तर को भी पुनर्जीवित करते हैं। इसके अलावा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की कई जीवन रक्षक दवाएं वर्षावनों में पाए जाने वाली पौधों से बनती हैं। आज वर्षावन अस्तित्व के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। कृषि विस्तार, अवैध पेड़ों की कटाई, खनन और शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या के कारण दुनिया भर के वर्षावन तेजी से सिमट रहे हैं। ये नुकसान न केवल वहाँ के वन्य जीवों के लिए घातक है बल्कि ये पूरी मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। विश्व वर्षावन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये संदेश देना है कि वर्षावन हमारे अस्तित्व के लिए कितने जरूरी हैं। सिर्फ वृक्ष बचाना ही काफी नहीं है बल्कि नए वृक्ष लगाना और नष्ट हुए वनों को पुनर्जीवित करना, स्थानीय लोगों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में सशक्त बनाना और उन्हें संरक्षण की प्रक्रिया में मुख्य भागीदार बनाना है। वर्षावन केवल एक प्राकृतिक संसाधन ही नहीं है बल्कि ये हमारी धरती का सुरक्षा कवच है। यदि ये जंगल समाप्त हो गए तो न केवल शुद्ध हवा की कमी होगी बल्कि जलवायु असंतुलन से सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं और अधिक भीषण हो जाएंगी। विश्व वर्षावन दिवस हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध परस्पर निर्भरता का है। हमें ये समझना होगा कि जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। ये दिन हमें संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन शैली में बदलाव लाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस हरे भरे धन को बचा कर रखेंगे जिससे हम एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम विविधा यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: वनकर्मचारिभिः स्थानीयजनैश्च सह संवादं करिष्यति। अधिकारिणाम् अनुसारेण भारते सम्प्रति 500+ व्याघ्राः सन्ति, तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति। भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति। अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति। नीट यूजी 26+ पुनर्परीक्षा सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थायां सुसम्पन्ना। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु 44+5,000 परीक्षा केन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन्। दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेष व्यवस्थाः अपि कृताः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन 12 उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामाः क्रमशः प्रकाशिताः। मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनपत्रेषु 87% परिणामाः घोषिताः सन्ति, अवशिष्टपरिणामाः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते। छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति। मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इति उक्तम्। छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणिक सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं CBSE इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः। तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायोः स्रवण घटनायां 7 मृताः, 70+ श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः। घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति। राष्ट्रिय आपद्मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितं आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा 3-सदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र 2-2 अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2-दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा

0: या चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन दो पारियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विवरण हमारे केंद्र से आज दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आज रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम, रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक, ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। अब से कुछ देर बाद 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान पाठ से आज का प्रसंग। दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनती हैं अपना कार्यक्रम घर संसार, जिसमें चर्चा के विषय रहेंगे माफ करना सीखें और अल्पसंख्यकों हेतु योजना। साथ ही आप सुनेंगे बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां और माँ की भूमिका विषय पर श्रीमती प्रीति कपूर गृहिणी से संगीता तिलारा की बातचीत। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1311 का प्रसारण समय रहेगा दोपहर 1:30 पर। खेती की बातों का समय रहेगा दोपहर 2:30 पर, जिसमें वार्ता की जाएगी कृषि उत्पादन में जैव उर्वरकों की महत्ता एवं उपयोग विषय पर। वार्ताकार होंगे नवीन चंद्र बिलवाल। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युवाणी सुनते हैं संध्या 5:15 पर, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा सकारात्मकता के साथ बढ़ते रहें। शाम 5:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम उत्तरायण। ग्राम जगत का प्रसारण समय रहेगा शाम 7 बजे, जिसमें आज की बातें होंगी एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन विषय पर और

चर्चा की जाएगी वर्षा काल में पशुओं की देखभाल विषय पर। भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:41 पर। शास्त्रीय संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रातः 8:30 पर और सुबह 11:30 पर। लोकगीत आपको सुनवाएंगे प्रातः 7:30 पर लोकमंजरी में, दोपहर 2 बजे उत्तराखंड के लोकगीत में और संध्या 5:05 पर शैल स्वर के तहत। सुगम संगीत आप सुनते हैं प्रातः 10:05 पर, दोपहर 1:15 पर, रात्रि 8 बजे सबरस में और रात्रि 10 बजे सुगम संगीत के तहत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा प्रातः 9:05 पर गीत नर्झर में, 10:35 पर सुरबहार में, सुबह 11 बजे सैनिकों के लिए में, दोपहर 12 बजे मेरी पसंद में, दोपहर 2:45 पर एक ही फनकार में, अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्म गीत में, शाम 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष में और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत के तहत। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान पाठ का 132वां भाग।

श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री शंकर तथा रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र की स्तुति के पश्चात गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। श्री राम सहित सभी दशरथ कुमार विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं, जहां नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। अयोध्या नगरी का रूप कभी उस चौदहों लोक रूपी पर्वत की तरह दिखाई देता है, जिस पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो कभी उस सागर की भांति जिसमें रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियों का जल उमड़ घुमड़ कर आ मिलता है। सबकी अभिलाषा है कि राजा श्री राम को युवराज पद दे दें। एक दिन दर्पण में अपनी छवि देख राजा दशरथ अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे कि कानों के पास के केश सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा हो कि ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद देकर उन्हें अपना जन्म और जीवन सफल कर लेना चाहिए। अतः एक दिन शुभ समय देखकर हर्षित मन से उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना विचार जा सुनाया।

अभी आपने सुनी श्री रामचरित मानस गान पाठ की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे अनुराधा पौडवाल और साथी संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। चारधाम यात्रा और श्री हेमकुंड साहिब यात्रा प्रदेश में सुचारू रूप से जारी। प्रशासन ने यात्रा प्रभावित होने संबंधी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। और कुमाऊं विश्वविद्यालय में विधि पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है। इस

0: इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुंगागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, रोजगार सृजन, स्वरोजगार को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के दनिया स्थित राजकीय महाविद्यालय में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भी तेजी से विकास हो रहा है, उत्तराखंड भी तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ आयुर्वेद और योग आधारित पर्यटन के क्षेत्र में भी व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल की अवधारणा के तहत मेले और स्थानीय सांस्कृतिक आयोजनों को नई पहचान दी जा रही है। इससे स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार सशक्त हो रही है।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: प्रदेश में चारधाम यात्रा और श्री हेमकुंड साहिब यात्रा सामान्य रूप से संचालित हो रही है। रुद्रप्रयाग के नगरासू स्थित गुरुद्वारा साहिब में 20 जून को हुई घटना के संबंध में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा है कि श्री हेमकुंड साहिब यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ माध्यमों से यात्रा प्रभावित होने संबंधी भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही है, जिनका वास्तविक स्थिति से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं से अपील की कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें तथा केवल प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
3: नगरासू में जो घटनाक्रम हुआ है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पर स्थित गुरुद्वारे के अंदर ही आपसी विवाद हुआ था और इस विवाद को मॉनिटर करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन वहाँ पर मुस्तैदी से उपस्थित है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा और किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत और शांतिपूर्वक यात्रा भी चल रही है। गुरुद्वारे के अंदर भी शांतिपूर्वक सभी जो अरदास है, लंगर है, आवाजाही है, वो सब कुछ चल रही है।
0: इस बीच पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने बताया कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां ठहरे कुछ निहंग सिख यात्रियों के बीच एक विषय को लेकर विवाद की स्थिति बनी ही थी। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार संबंधित पक्षों के साथ संवाद कर रही है तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं और यात्रियों का गुरुद्वारे में आवागमन सामान्य रूप से जारी है, लंगर, अरदास और अन्य धार्मिक गतिविधियां भी नियमित रूप से संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की उन्होंने अपील की है।
4: मैं आपको ये भी अपील करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे फैल रही

0: भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। कल से लगातार यहाँ पर लंगर सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अरदास यथावत जारी है। सभी यात्री गुरुद्वारे में आ रहे हैं और अपनी यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें और केवल औपचारिक हैंडल से ही अपनी सूचनाएं प्राप्त करें।
1: कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर तथा उससे संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीए एलएलबी, बीए एलएलबी ऑनर्स और बीबीए एलएलबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल के माध्यम से 4 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उधर पौड़ी जिले स्थित गोविंद बल्लभ पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में नए शैक्षणिक सत्र से 3 नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इनमें बीसीए, एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग तथा एमटेक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शामिल है। नए पाठ्यक्रमों के शुरू होने से विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध होंगे। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के लिए राज्य के पर्वतीय जिलों में झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने तथा आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 22 से 25 जून के बीच मॉनसून के पहुंचने की संभावना है, जिससे वर्षा गतिविधियों में और भी वृद्धि हो सकती है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत में एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है और पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। इस खबर पर दैनिक जागरण और नवोदय टाइम्स ने मुख्यमंत्री धामी के हवाले से शीर्षक दिया है, उत्तराखंड को योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाएंगे। नीट की पुनः परीक्षा सकुशल संपन्न, हर केंद्र पर फॉरेंसिक जांच होगी। इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है कि नीट यूजी परीक्षा देश विदेश के 5,000 से अधिक केंद्रों पर संपन्न हुई। रुद्रप्रयाग में गुरुद्वारे पर कब्जे की कोशिश, हिंदुस्तान समाचार पत्र की सुर्खी। और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के हवाले से अमर उजाला लिखता है, रक्षा मंत्री से उत्तराखंड में सेना की अधिक भर्ती कराने का किया गया आग्रह। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा प्रदेश में सुचारू रूप से जारी। प्रशासन ने यात्रा प्रभावित होने संबंधी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। और कुमाऊं विश्वविद्यालय में विधि पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी, जिसमें हमारे आज के कलाकार हैं विनोद कुमार।

0: लड़ाई के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
0: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
0: झगड़ा मिटाएं,
1: विश्वास जगाएं।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी, जिसमें हमारे आज के कलाकार हैं विनोद कुमार।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी, जिसमें हम आज आपको सुनवा रहे हैं विनोद कुमार के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

विनोद कुमार के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ हमारा आज का कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की

0: महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा

0: परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ, सहायक प्रोफेसर के पदों और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
1: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
5: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
6: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम केपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host 2-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic

0: strategic influence.
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है.
0: Prime Minister Modi made these remarks after commissioning three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dounagiri, INS Sanshodhak and INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee Port in Kolkata yesterday.

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का राग अहीर भैरव में गाया ख्याल। आपके साथ तबला संगत की थी पंकज चौधरी ने। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने उद्यान के चीता प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। राष्ट्रपति के नवम्बर 2025 में अफ्रीकी देश बोत्सवाना की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान 8 चीतों के प्रतीकात्मक हस्तांतरण किया गया था। इन चीतों को इस वर्ष फरवरी में परियोजना के नवीनतम चरण के तहत कुनो लाया गया था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बी बत्सेत्सेग के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे। इसके बाद वे 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे और इस दौरान उनकी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता होगी। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून

0: तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जीआरएफ सहायक प्रोफेसर के पदों तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में एफआईएच प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत हासिल की। भारत की ओर से युवराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त शोभा पांडे का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तू इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल है जैसे तपती धूप में कोई ठंडी मंजिल है। न जाने कौन सा रूहानी रिश्ता है हमारा, तू दूर होकर भी हर पल मेरे दिल के करीब है।

कार्यक्रम के आरंभ में अभी आपने सुना आप तो ऐसे न थे फिल्म का ये गीत। शब्द रचना निदा फैजी की थी और संगीतकार थी उषा खन्ना। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। इस गीत को सुनना चाहते थे कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जड़ा और सिटी दीवाना, जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर आकृति राहुल, ज्योति जयप्रकाश राहुल और प्रियंका, यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, योगेश मालाकार और इनका समस्त परिवार, मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम देवी किशन, भावना मनमानस और कनिका पटेल, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए निरंजन आयंगर का लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया माय नेम इज खान फिल्म का ये गीत। राहत फतेह अली खां, रिचा शर्मा और साथियों की आवाज़ों में इस गीत को सुनना चाहते हैं वेस्ट दिल्ली तिलक नगर से आर एस स्वीटी और आर के शुक्ला, देहरादून से हिमांशु कांडपाल, अजीत नगर बलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनकदीप कौर, जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, लेहगांव रेलवे महाराष्ट्र से दीपक कुरहाड़े, आशीष, कल्पना कुरहाड़े और

और वंदना कुरहाड़े। इसी गीत को सुनना चाहते हैं रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे, शाहजी नगर देगलूर महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे।

0: तीनों कॉलेज में
1: डोंट वरी
0: फीस तो देखो
2: क्या हाल है क्या हुआ
1: फीस की टेंशन
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही
3: रास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक नो कोलैटरल वो कहाँ मिठाई
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत आवाज़ें हैं आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की इस गीत को सुनना चाहते हैं शास्त्री नगर बीड़ शहर से किशन सपकाल आशा सपकाल सोनिया सपकाल विशाल और साईराज सपकाल नंदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा चांदनी वर्मा राहुल वर्मा गोपी वर्मा बहरामपुर जिला खारगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोक चंद्र वर्मा भगवती वर्मा अभिषेक सीमा डॉक्टर अमित वर्मा सचिन सुभाष संतोष और इनके सभी साथी सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा अर्चना वर्मा अनुज वर्मा और आयुषी वर्मा राजबिराज नेपाल से श्याम कुमार हाकू तारा देवी हाकू राजन हाकू कल्पना हाकू सनी पिंकी खुशबू श्रुति और पूजा हाकू विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले वंदना काले आदेश कुमार काले प्रोफेसर वसुधा वज्र सिंह लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर आपका पसंदीदा ये गीत

कार्यक्रम की अगली पेशकश में सुनिए हॉन्टेड 3D फिल्म का ये गीत, शकील आजमी के लिखे बोलों को सुरों में पिरोया है चिरंतन भट्ट ने और आवाजें हैं के सुजैनी और साथियों की। इस गीत को सुनना चाहते हैं रेडियो लिसनर्स क्लब अकोला महाराष्ट्र से रमाकांत कुलकर्णी, चित्रा रानी कुलकर्णी, दिना कुलकर्णी, कुमारी मुन्नी विधि देशपांडे और दिनेश कुलकर्णी, हड़पसर पूना महाराष्ट्र से प्राजक्ता पाठक, परागराव पाठक और प्रयागराज पाठक, कुंभारगली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले और सानिका दले, पूनावले पुणे से हमारे श्रोता हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और शाइसा सोनवने, मारहरा गेट एटा से नबी हसन अब्बासी, रसीद्वार से नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, यशफ अब्बासी और अनम अब्बासी, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गजी।

लीजिए ए अब सुनिए, दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है उत्तम सिंह ने और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की। इस गीत के पसंदकर्ता हैं मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े और वैभव शिंदे, हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया। इस गीत को सुनना चाहते हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अपर्णा नामदेव, महादेव घाट अमलेश्वर से मिथिलेश तिवारी, गुड़िया तिवारी, रिंगनी से करुणा सिंह, जानवी सिंह, जेल रोड रायगढ़ से महेश राय, राधिका, उमा राय और कोमल राय, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से हमारे श्रोता हैं जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान।

कार्यक्रम की अगली पेशकश में सुनिए प्रीतम का संगीतबद्ध किया अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से गीत। आवाज आतिफ असलम की है और बोल इरशाद कामिल के हैं। इस गीत की फरमाइश हमें की है नई दिल्ली से ध्वनि और साध्वी ने, रानीगंज पश्चिम बंगाल से रेहान शर्मा, रोशनी रवि, इंदर, करणदीप और भूपिंदर ने, बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हालिमा डावर, बेबी जिक्रा डावर और बेबी आयशा खत्री। इस गीत को सुनना चाहते हैं गांव निम्नाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। जलंधर से संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मनोज मक्कर, भारत मक्कर और कमल साहनी। इस गीत के पसंदकर्ता हैं तेलंगाना स्टेट निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना, दानिश और आसिफ शेख।

कार्यक्रम की अगली पेशकश इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छेलाल रॉय और बुल्की वाली फलना झा। ग्राम खड़कूना जोली अल्मोड़ा उत्तराखंड से दिव्यांशु लोहनी, प्रमोद लोहनी, खगेश लोहनी, मुकेश, ज्योति भूमिका, अमरनाथ लोहनी, सुरेश, मानस तिवारी और इनके परिवार के सभी सदस्य। सांगली जिले से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, कीरत हुजरे और रेहान शेख। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में साहिर लुधियानवी का लिखा, खयाम का संगीतबद्ध किया, कभी कभी फिल्म का ये गीत।

लीजिए अब अगला गीत दीवाना फिल्म से। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रवण और आवाज़ें हैं अलका याग्निक और विनोद राठौर की। इस गीत के पसंदकर्ता हैं सुराणा मोहल्ला बिकानेर से नरेंद्र सुराणा, कांतिलाल सुराणा, शरद सुराणा, मयंक सुराणा, विमल अभाणी, लालेंद्र होलेंद्र और रूनी जैन, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान, कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, ऊषा सिंह और ऋषभ सिंह। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बरकाना झारखंड से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, कमल कुमार, एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौशल, डॉक्टर इशिता साहनी, सोनमवली और प्रियंका, कोल सिटी बरकाना से मोहम्मद अफजल मलिक, नाजमी तबस्सुम, अफजल इब्राहिम।

कार्यक्रम में लीजिए, आप सुनिए वक्त फिल्म का ये गीत। बोल साहिर लुधियानवी के हैं और आवाज़ आशा भोंसले की है। इस गीत के इंतज़ार में हैं छत्तीसगढ़ भिलाई से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा, मानवेड़ा रोड रामपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकित भटकर और अनिकेत, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रेकर, अमर ताम्रेकर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी और इनके परिवार के सभी सदस्य, लाला बाजार अल्मोड़ा से बाबा फरहान, संजू सामिया, अफिया, मुमताज़ अमार, नीलोफर, शन्नू और शब्बू।

ऐसे गीत के साथ हमारा आज का फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी दोस्त शोभा पांडे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रे को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना किसी भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समुद्री का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने उद्यान के चीते प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बी बत्सेतिक के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान उनकी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता होगी। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत जारी है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रोटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार

0: बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं पंकज उधास के गाए इस नगमे के साथ।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए आशा भोसले का गाया ये गीत।

0: कार्यक्रम बैंड लीजिए, आप सुनिए फरीदा खानुम की गाई ये गजल।
1: आज जा

इस गीत के साथ हमारा आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सरबहार, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही फिल्म पर आधारित फिल्मी नज़में। हमारी आज की फिल्म है कभी खुशी कभी गम। श्रोताओं, आज हम उस फिल्म की बात कर रहे हैं जिसने बॉलीवुड की परिभाषा ही बदल दी। एक ऐसी फिल्म जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है, जिसे देखकर आज भी आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ष 2001 में रिलीज हुई फिल्म कभी खुशी कभी गम की। ये फिल्म करण जौहर द्वारा लिखित और निर्देशित है, जिसका निर्माण यश जौहर ने किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने यशवर्धन रायचंद की, जया बच्चन ने नंदिनी की, शाहरुख खान ने राहुल, काजोल ने अंजलि, ऋतिक रोशन ने रोहन की और करीना कपूर ने पूजा की भूमिका निभाई थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक अत्यंत धनी और अनुशासन प्रिय उद्योगपति यशवर्धन रायचंद से। वे अपनी पत्नी नंदिनी और दो बेटों राहुल और रोहन के साथ एक आलीशान जीवन जीते हैं। राहुल उनका गोद लिया बेटा है जिससे वो बेहद प्रेम करते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब राहुल चांदनी चौक में रहने वाली एक मध्यम वर्गीय लड़की अंजलि से प्रेम करने लगता है। यशवर्धन इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते क्योंकि वे अपनी प्रतिष्ठा और परंपराओं के कारण एक उच्च वर्ग में राहुल का विवाह कराना चाहते हैं। अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर राहुल अंजलि से विवाह कर लेता है, जिससे नाराज होकर यशवर्धन राहुल को घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद राहुल अंजलि और उसकी बहन पूजा के साथ लंदन चले जाता है। श्रोताओं, कई साल बाद जब राहुल का भाई रोहन बड़ा हो जाता है तब उसे ये सच पता चलता है और वो अपने परिवार को फिर से जोड़ने का संकल्प लेकर राहुल और अंजलि को ढूंढने लंदन जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अंजलि की बहन पूजा से होती है और वो पूजा के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। रोहन धीरे धीरे राहुल का भरोसा जीतता है और उसे उसके परिवार की याद दिलाता है। फिल्म के अंत में रोहन और पूजा की मदद से यशवर्धन और नंदिनी का सामना राहुल और अंजलि से होता है। लंबे इंतजार और गलतफहमियों के बाद अंततः परिवार के बीच का प्यार जीत जाता है और पूरे परिवार का एक सुखद मिलन हो जाता है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, इस फिल्म के संगीत की बात करें तो इस फिल्म का संगीत न केवल फिल्म की सफलता का एक बड़ा आधार था, बल्कि इसने उस समय के भारतीय संगीत परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। इस फिल्म का संगीत जतिन ललित और आदेश श्रीवास्तव ने तैयार किया था और लता मंगेशकर, सोनू निगम, अलका याग्निक, उदित नारायण और अमित कुमार की आवाज़ों ने गीतों में वो ऊर्जा और ताजगी भरी जो फिल्म के किरदारों के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। इसके संगीत की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 2001 में रिलीज होने के बावजूद आज भी ये गीत उतने ही ताज़ा लगते हैं। श्रोताओं, ये फिल्म भारतीय सिनेमा की एक ऐसी फिल्म है जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई है। ये फिल्म केवल एक कहानी नहीं बल्कि परिवार, परंपरा और प्रेम का एक बड़ा उत्सव है। ये साल 2001 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी जिसने वर्ल्ड वाइड स्तर पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना नया दौर फिल्म से। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। कार्यक्रम की अगली पेशकश में सुनिए सिंघम फिल्म का ये गीत श्रेया घोषाल और अजय की आवाज़ों में।

इस गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के सुबह के 11:10 होने वाले हैं। अब हमारा अगला कार्यक्रम देहरादून केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रबीलाल टुड्डू के साथ विशेष बातचीत। तनुश्री बंदोपाध्याय के विशेष योगदान के साथ संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध संथाली रचनाकार रबीलाल टुड्डू जी। 77 वर्षीय श्री टुड्डू को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इस वर्ष पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध हैं, बल्कि इन्होंने सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती दी है। आइए आज उनसे बातचीत में जानते हैं उनके लेखन की प्रेरणा और उनके साहित्यिक सफर के बारे में। टुड्डू जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्ते।
1: आपको देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है, ये जानकर आपको कैसा लग रहा है?
2: ऐसे तो अच्छा ही लगता है, ये तो खुबी आनंद का बात है। और बहुत सा मिला है इसका पहले, लेकिन ये तो नेशनल अवार्ड है ना, इसलिए ज्यादा खुश है। हम परिवार का स्वागत में खुश है।
1: आपका साहित्यिक लेखन अत्यंत विस्तृत और प्रभावशाली है। आपकी एक रचना है परसी खतीर, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इस रचना के बारे में हमें बताएं।
2: किताब एक ड्रामा का है, परसी खतीर। परसी खतीर के लिए ही सब कुछ मिल रहा है। वो तो एक हमारा जो भाषा के लिए आंदोलन था, भाषा स्वीकृति के लिए, जो 8वां तफसील में हमारा भाषा का स्वीकृति मिला है, भाषा आंदोलन का जो हिस्ट्री था वही हम ड्रामा का रूप में लिखा है। इसमें सोशल मैसेज भी है और जो लड़ाई का था उसका भी एक नाट्य रूप है, रोमांटिक भी है और भाषा आंदोलन का बात भी उसी में है। इसलिए शायद हम लोगों का जो सिलेक्टर है अवार्ड का, वो चुन लिया है और डिक्लेयर भी हो गया पद्मश्री अवार्ड के लिए। हम बहुत खुश है।
1: आपकी इस कृति का मुख्य विषय और संदेश क्या रहा?
2: देखिए, बिना लड़ाई से कुछ नहीं मिलता है। या हम लोग इतना साल लड़के आया था 8वां सूची में संविधान का, कम से कम संताली भाषा का स्वीकृति होना चाहिए। इसलिए बहुत साल से हम लोग लड़ाई करके करके

0: बाद में जब डिक्लेयर हुआ संताली भाषा अष्टम तपस्वी में इंक्लूड हुआ, ये जो सक्सेस है ये एक हिस्टोरिकल लड़ाई था। ये लड़ाई हम रोमांटिक वे से भी कोशिश किया है प्रेजेंट करने के लिए, और लड़ाई का एक मीडिया है ये भी, ड्रामा एक लड़ाई का भी इंस्ट्रूमेंट है, ये दोनों मिलके बैठो सक्सेसफुल ये मिला है।
1: लेखन के प्रति आपकी रुचि कब से शुरू हुई?
0: वो तो स्कूल लाइफ से, हाई स्कूल में जब पढ़ता था उसी टाइम से हम शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ड्रामा लिखा है, प्रेजेंट किया है, परफॉर्म किया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए। जनरल पब्लिक तो वो पढ़ना नहीं आता जिसको, वो तो हम क्या लिखा है वो कैसे जानेगा, लेकिन ड्रामा सब आदमी का पास एक्सेप्टेबल है। वो जब स्टेज में परफॉर्म होता है पब्लिक का पास बहुत इफेक्ट होता है, इसलिए हम ड्रामा को प्रेफर करते हैं।
1: आपका स्कूली जीवन कैसा रहा और क्या लेखन में रुचि बढ़ाने में आपके शिक्षकों की भी भूमिका रही?
0: बांग्ला मीडियम हम लोग का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, पढ़ाई का टाइम में बांग्ला में पढ़ता था हमारा, लेकिन बांग्ला हम लोग का मातृभाषा नहीं है, मातृभाषा है संताली। तो हम लोग क्या किया था, ज्यादा से ज्यादा संताली स्टूडेंट जो पक्षी का मापी के ये करता था, मीनिंग किसी को ठीक से पता नहीं था, लेकिन वो बोल बोल के पढ़ पढ़ के वो तो लिख देता था। हमारा भी ऐसा ही हैबिट था, जहाँ हम जो कुछ पढ़ा है हम टोटो नहीं लिखता है, आंसर पेपर में हम जो पढ़ा है वो टोटो नहीं लिख पाता है। हम क्या करता था, वो तो इसी का कंटेंट जो है वो अपना तरीके से हम लोग लिख देता था। इसी को हम लोगों का जो मास्टर लोग को है बहुत पसंद आता था, ये लड़का तो वो अपने आप लिख देता है, वो तो किसी को कंसल्ट नहीं करता है, नोटबुक या किताब तो नहीं कंसल्ट करता है। हम सिर्फ क्या प्रश्न है वो देख लिया और पढ़ा भी है, किताब में हम पढ़ा भी है। क्या करता था, जब लिखता था आंसर पेपर जब लिखता था उस टाइम हम अपना से लिख देता था, इसलिए टीचर लोगों का बहुत पसंद आता था। उस टाइम से हमको इंस्पिरेशन मिलता था टीचर का पास से, अब लिख के जाओ, तुम्हारा जो खुश मन में है तुम लिख के जाओ। ऐसा करते करते करते करते पब्लिक लाइफ में भी आगे हम लोग जाओ, पब्लिक भी हमारा जो लिखन है बहुत पसंद करता था। हम तो रिएक्शन लेता था, कैसा लगा है कैसा ही है, तो बोलता ना हम बहुत अच्छा लिखा है। तब तक इंस्पिरेशन मिल गया, हम लिख के गया लिख के गया लिख के गया, ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया। यही है हमारा असली फ्रॉम बिगिनिंग, ऐसा एक इंस्पिरेशन मिल गया।
1: आपने स्कूली शिक्षा कहाँ से प्राप्त की?
0: प्राइमरी गांव में ही है, नुआड़ा गोड़ा निम्न बुनियादी विद्यालय, उसका बाद हाई स्कूल बदला हाई स्कूल है, वहाँ से पास आउट होके अंकलना कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान, वहीं से प्योर साइंस लेके हम पास किया है। ऑनर्स नहीं मिला था उस टाइम, ऑनर्स मिलना बहुत टफ होता था, बहुत कंपटीशन होता था, तो हम तो ज़्यादा कॉम्पिटेंट उस टाइम नहीं था, इसलिए हम प्योर साइंस के लिए हम अप्लाई किया है, वही प्योर साइंस लेके ग्रेजुएशन किया है।
1: शिक्षा के बाद आपने अपनी नौकरी की शुरुआत कहाँ से की?
0: हम सर्विस के लिए बहुत से अप्लाई किया है, पहले हम मिला है एजी बंगाल में अकाउंटेंट जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल, वहीं से लोअर डिवीजन क्लर्क शुरू किया हम, चार साल बाद अपर डिवीजन का चांस आया, ऑडिटर पोस्ट के लिए चांस आया है, ऑडिटर भी हमको मिल गया, लेकिन एक साथ तीन चार नौकरी मिला है एक साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एजी बंगाल का ऑडिटरशिप एक साथ मिल गया सब। तो फर्स्ट वन इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हम वहीं ज्वाइन कर लिया, वहीं से प्रमोशन होके असिस्टेंट मैनेजर, उसका बाद फिर दूसरा अप्लाई नहीं किया है ये के लिए, हायर पोस्ट के लिए।

0: हम वही असिस्टेंट मैनेजर होके रिटायर किया है, लास्ट में रिटायर किया है ओडिशा स्टेट से 2009 का दिसंबर में।
1: संथाली भाषा के प्रसार के लिए आपने बहुत काम किया है, आपके अनुसार मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है?
0: देखिए, जिसका मातृभाषा नहीं है उसका एडुकेशन भी नहीं होता है। दूसरा भाषा लेके आप एडुकेशन कितना दूर जाएंगे, ये तो संभव नहीं है। इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबको मातृभाषा से ही होना चाहिए। यही हमारा टारगेट भी था, लड़ाई भी था, काम भी ऐसा ही हम लोग करके आया है।
1: आगे भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं?
0: अभी तो रिटायर कर गया, बुढ़ापे में क्या काम करेगा, प्रैक्टिकली तो काम ऐसा नहीं आएगा। फिर भी हम जितना दिन रहेंगे पब्लिक के साथ ऐसा ही इंटरेक्शन करेगा, लिख के पर्सनली कॉन्टेक्ट करके सोसाइटी के साथ तालमेल के हम काम करके जाएगा। जितना दिन हम जिएंगे इतना दिन काम करेंगे। और अभी जब एजेड हो गया हम लोग, जनरल पीपल को थोड़ा सा एडवाइस देने के लिए कुछ लिखेगा। कोई आदमी का एम्बिशन ऊंचा नहीं होने से ऊंचाई पे उड़ने नहीं सीखेगा से। इसलिए हर आदमी को एक तो एम्बिशन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, हम क्या करके जाएंगे, हम क्या करेंगे, ये टारगेट होना जरूरी है। इसीलिए हम ऐसा मोटिवेशनल कुछ करके जाएंगे ये सोच रहे हैं, इतना संभव होगा मालूम नहीं।
1: टूडू जी, संथाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समाज से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?
0: संथाल समाज सबसे अभी देश में पिछड़े वर्ग है, तो ये संथाल समाज को कैसे डेवलप किया जाए, मोटिवेट कैसे किया जाए, यही टारगेट होना चाहिए। हम लोग तो पीछे पड़े हुए हैं, बहुत सा नेग्लिजेंसी है, बहुत सा ड्रॉबैक है, ये सब लेके के बहुत सा पीछे चल रहा है, तो कैसे आगे बढ़ना है।
1: आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सजेशन तो जरूर होगा, पहले तो इसका आर्थिक स्थिति स्टेबल होना चाहिए, उसका बाद आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। आपका पास जो ही कोई सपना नहीं होगा, आपका इंस्पिरेशन नहीं आएगा, काम करने का ही इंस्पिरेशन नहीं आएगा। आपका पास कोई सपना होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। अगर हम बोलेगा आदमी को, पीपल को बोलेंगे, जैसे भी आपका ये स्थिति है उसमें से आपको आगे बढ़ना है, इसलिए आपको एक ठोस फिक्स टारगेट होना चाहिए, हम ये करेंगे। टारगेट नहीं ठीक होने से, एम ठीक नहीं होने से आप कुछ भी, आपका मेंटेलिटी ऐसा तैयार नहीं होगा। इसलिए हर आदमी को एक टारगेट होना चाहिए, क्या हम लेखक बनेंगे, क्या हम आर्टिस्ट बनेंगे, क्या हम साइंटिस्ट बनेंगे, ऐसा टारगेट होना जरूरी है। और आदमी को बचपन से यही टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तब सक्सेस कुछ मिलेगा।
1: आपको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है?
0: प्राइवेट अवार्ड भी मिला है, पहले मिला था, और जो बिरसा भगवान का एक तो ये है जीवनी, उसका नाट्य रूप हम दिया था वीर बिरसा। तो पहले पब्लिक अवार्ड मिला था पंडित रघुनाथ मुर्मू अवार्ड फ्रॉम जमशेदपुर टाटा सारजोंदा, वही शुरू हुआ हमारा सफर। उसका बाद मिला है हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से बंगभूषण मिला था, उसका बाद मिला है साहित्य अकादमी का, लास्ट में पद्मश्री मिला है।
1: टूडू जी, मोदी सरकार आने के बाद से पद्म पुरस्कारों की बात करें तो देश के कोने कोने से प्रतिभा को ढूंढ कर दिया जा रहा है, आपकी क्या राय है इस बारे में?
0: पहले तो बहुत सा बड़ा बड़ा आदमी को मिलता था, अभी तो गांव के भी आदमी को मिल रहा है, नेशनल अवार्ड पद्मश्री मिल रहा है, ये देख के तो हम लोगों का ये विश्वास आ रहा है। अभी गांव के भी कोई आदमी कुछ अच्छा काम करेगा और तो उसको मिलने का अवसर मिलेता है, यही अच्छा वाला बात है। हम तो ऐसा सरकार को पदक्षेप को हम जरूर धन्यवाद देंगे। ये गांव का साधारण आम आदमी का

0: भी आप लोग अच्छा काम ढूंढ के निकालता है, यही अच्छा होता है।
1: टूडू जी, आपकी बातें हमें संदेश देती हैं कि अपनी मातृभाषा, संस्कृति और परंपरा पर गर्व करना ही हमारी असली पहचान है। साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने का एक सशक्त माध्यम है। टूडू जी, अपने विचार हमसे साझा करने के लिए धन्यवाद।
0: नमस्ते।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रबीलाल टूडू के साथ विशेष बातचीत। तनुश्री बंदोपाध्याय के विशेष योगदान के साथ संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.eirnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। प्रस्तुत है समूह स्वरों में देशगान।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगा कर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: देशगान श्रोता भी सुन रहे थे, हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट का मोहन वीणा पर बजाए राग बागेश्री। आलाप गत मध्यलय झपताल में निबद्ध है, द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है, और तबला संगत करता है सुखविंदर सिंह।

पंडित विश्वमोहन भट्ट से मोहन वीणा पर बजाया राग बागेश्वरी, अभी आपने सुना। और अब पंडित विश्वमोहन भट्ट से ही सुनिए मोहन वीणा पर धुन पहाड़ी। तबला संगत करता है सुखविंदर सिंह।

श्रुतों शास्त्र संगीत में अभी आपने सुना पंडित विश्व मोहन भट्ट से मोहन वीणा पर बजाया राग बागेश्वरी और धुन पहाड़ी। तबला संगीतकर्ता थे सुखविंदर सिंह। शास्त्रीय संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। शुभारंभ कर रहे हैं आक्रोश फिल्म के गाने से। अनुपम आमोद ने इसे गाया है। इरशाद कामिल के बोल हैं और प्रीतम का संगीत।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे, हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। 12:10 होने को है अगला प्रसारण, देहरादून केंद्र से रिले होगा।

ओली जब सुनिए शफकत अमानत अली को तनु वर्स मनु फिल्म में, गीतकार है राजशेखर और संगीत कृष्णा का।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

स्वागत है बहनों आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम घर संसार के आज के इस अंक में। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आधे घंटे के इस खूबसूरत सफर में मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो सखी संगीता तिलारा। कैसी हैं बहनों आप सभी? हम तो हमेशा यही दुआएं करते हैं और यही उम्मीदें करते हैं कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराती रहें और इसी मुस्कुराहट के साथ सुनती रहें हमारा कार्यक्रम घर संसार। तो बहनों आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। बहनों हर इंसान से अपने जीवन में गलतियां ज़रूर होती हैं और कभी कभी ना चाहते हुए भी या जाने अनजाने हमसे गलतियां हो ही जाती हैं। जाने अनजाने बातों ही बातों में हम किसी को हर्ट कर देते हैं, यानी कि किसी का दिल दुखा देते हैं। ऐसे कभी कोई हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचा देता है, यानी कि हमें हर्ट कर देता है। वैसे बहनों ये सब हम कोई प्लान करके नहीं करते, लेकिन फिर भी हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमारी कुछ बातों से, हमारे काम से किसी की भावनाएं आहट हो जाती हैं और कभी यही सब हमारे साथ भी होता है तो हम दुखी हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। और ऐसे में इन बातों से जो हमारा मन है वो काफ़ी भारी होने लगता है। और बहनों ऐसे में अगर हमको लगता है कि गलती हमसे हुई है तो माफ़ी मांगना सबसे अच्छा विकल्प होता है। ऐसे ही अगर दूसरा अपनी गलती स्वीकार करके हमसे माफ़ी मांग रहा हो तो हमें माफ़ करने से अच्छा हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है और कुछ हो भी नहीं सकता। तो बहनों जो आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं उसका विषय भी यही है कि माफ़ करना भी सीखें और साथ ही माफ़ी मांगना भी। बहनों हमारे अपने आसपास ऐसे बहुत से इंसानों को हम देखते हैं या आपने भी देखा होगा कि जिनसे गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन उसके बाद भी वो माफ़ी नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि उनका ईगो माफ़ी नहीं मांगने देता और अगर दूसरों से गलती हो जाती है तो वो माफ़ी मांगने वाले को माफ़ भी नहीं करते क्योंकि उनके मन की कड़वाहट, उनका गुस्सा उन्हें माफ़ करने ही नहीं देता। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ही नकारात्मकता आ जाती है, आपसी रिश्तों में काफ़ी कड़वाहट होती है, रिश्तों में दूरियाँ आ जाती हैं और एक तरह का तनाव जीवन में बना रहता है। तो बहनों अगर हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में रिश्तों में प्यार मजबूती बने रहे, इसके लिए माफ़ करना और माफ़ी मांगना भी सीखना ही होगा क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे रिश्तों जो हमारे आपसी रिश्ते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। साथ ही छोटे छोटे मनमुटाव हमारी मेंटल हेल्थ यानी कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते और ये एक ऐसी जंजीर होती है जो हमें जकड़े रहती है और हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए कभी जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो अपने ईगो को दूर किनार करके सामने वाले से माफ़ी मांग लीजिए, फिर सामने वाला चाहे हमें माफ़ करे या ना करे ये उन पर निर्भर करता है। अपनी गलती स्वीकार करके माफ़ी मांग कर उस परिस्थिति से तो हम बाहर निकल ही जाते हैं। ठीक ऐसे ही अगर हमारे आसपास किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है, हमें बुरा लगता है, तो बहनों अपने अंदर की कड़वाहट को, गुस्से को दूर कर अगर कोई हमसे माफ़ी मांग रहा है, अपनी माफ़ी को स्वीकार कर रहा है तो ज़रूर माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि बहनों अगर माफ़ी मांगने के बाद भी हम माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर उनका दिया हुआ दुख, गुस्सा, कड़वाहट अभी भी बरकरार है। बहनों हम जब इन बातों को याद करते हैं इससे हमें ही तकलीफ़ होती है तो अच्छा यही होगा कि उन्हें माफ़ करें और इस परिस्थिति से खुद को बाहर निकाल लें। माफ़ करके और माफ़ी मांगने से हमारे रिश्तों में मिठास बनी रहती है। आपसी मनमुटाव के कारण जो विश्वास हम खो चुके होते हैं वो वापस मिल सकता है, अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी रहती है जिस वजह से हम पहले की हुई गलतियों को दोहराने से भी बचते हैं और फिर धीरे धीरे अपने व्यवहार में परिवर्तन करके हम दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखने लगते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझकर व्यवहार करते हैं जिससे हमारे जो रिश्ते हैं फिर चाहे वो किसी के साथ भी हो मधुर बने रहते हैं। तो बहनों हम तो बस यही कहेंगे कि गलतियां होने पर अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफ़ी मांगना और दूसरे की गलती पर माफ़ करना, ये दोनों ही बातें हमारे अच्छे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं जो हमें सकारात्मक बनाती हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। बहनों किसी से माफ़ी मांगना और किसी को माफ़ करना इतना आसान तो होता नहीं, हम ये भी कहेंगे, लेकिन ये वही कर सकता है जो दिल से अच्छा इंसान हो, जिसका मन बड़ा हो, दिल बड़ा हो।

तो बहनों, हमें खुद बड़ा मानना है, खुद को बड़ा समझना है, तो किसी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और किसी को माफ़ भी कर देना चाहिए और एक सकारात्मकता के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और हम तो हमेशा यही कहेंगे कि हमारी सभी श्रोता बहनें अपने जीवन में आगे बढ़ें, एक खुशहाल जीवन जिएं। और जो गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये भी ज़िंदगी के लिए कुछ यही बयां कर रहा है।

0: स्वागत है बहनों आप सभी का। आप सुन रही हैं अपना कार्यक्रम घर संसार। बहनों गर्मियों का मौसम है और इस समय बच्चों के स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं और इन छुट्टियों का इंतज़ार बच्चे बड़े बेसब्री से भी करते हैं और ये समय होता है जब बच्चे दिन भर घर में ही रहते हैं। और बहनों ऐसे समय में यानी कि छुट्टियों में माता पिता की चिंता भी बढ़ जाती है कि बच्चे दिन भर घर में क्या करेंगे, अपना समय ज़्यादा स्क्रीन में तो नहीं बिताएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाई के साथ साथ इन छुट्टियों को उपयोगी और यादगार बनाया जाए। अगर बहनों आप भी यही सोच रही हैं तो चलिए इन सभी बातों को आसान बनाते हैं कि कैसे हम ये सब कर सकते हैं। हम मिलते हैं अपनी एक श्रोता सखी से जो एक गृहिणी है और परिवार और बच्चों की परवरिश से जुड़े विषयों पर उनका व्यावहारिक अनुभव बहुत ही समृद्ध है। एक माँ के रूप में उन्होंने बच्चों की ज़रूरतों, उनकी दिनचर्या और उनके सर्वांगीण विकास को बहुत करीब से समझा है। आज वे अपने अनुभवों के माध्यम से हम सभी के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करेंगी कि किस प्रकार हम बच्चों की गर्मी की छुट्टियों को आनंददायक उपयोगी बना सकते हैं। हमारे साथ हैं कार्यक्रम में श्रीमती प्रीति कपूर अल्मोड़ा से, तो आइए उनसे सुनते हैं बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां और माँ की भूमिका विषय पर की गई क्षेत्र संकलित बातचीत। गर्मी की छुट्टियां बच्चों के लिए मस्ती, खेल और नई नई चीजें सीखने का समय होती हैं। लेकिन इन छुट्टियों को बच्चों के लिए सुरक्षित, आनंददायक और उपयोगी बनाना हर माता पिता विशेषकर माताओं की एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में है श्रीमती प्रीति कपूर अल्मोड़ा से। प्रीति जी एक गृहिणी है और एक माँ के रूप में बच्चों की परवरिश और उनकी जरूरतों को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। आज वे अपने अनुभवों के माध्यम से हमें बताएंगी कि किस प्रकार बच्चों की छुट्टियों को और अधिक खुशनुमा और सार्थक बनाया जा सकता है। तो प्रीति जी हमारे घर संसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सभी श्रोता सखियों को मेरा नमस्कार
0: जी। प्रीति जी सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों की जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं वो इतनी खास क्यों होती है?
1: जी मैम, गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए बहुत खास होती हैं क्योंकि ये उन्हें रोज़ की पढ़ाई से थोड़ा आराम देती हैं। इस दौरान वो अपनी इंटरेस्ट को विकसित कर सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं, उन्हें खेलने, घूमने, परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलता है और ये बॉन्ड बच्चों में और हम में जोड़ता है आपस में।
0: प्रीति जी आप एक माँ हैं और बच्चों की जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि छुट्टियों के दौरान एक माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है?
1: जी मैम, छुट्टियों के दौरान माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों के समय को सही दिशा दे ताकि जो उनकी छुट्टियाँ हैं वो उपयोगी भी हो सकें और उनके विकास में भी सहायक हो। तो उसमें वो उनको अलग अलग एक्टिविटीज में डाल सकती हैं, चाहे वो डांस है या स्पोर्ट्स है, पेंटिंग है और आउटडोर गेम्स है, और अच्छा समय बच्चों के साथ वो बिता सकती है।
0: जी प्रीति जी आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं तो माँ की जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि छुट्टियों के दौरान एक माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है?
1: छुट्टियों में एक माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चे के समय को मैम सही दिशा देना होता है कि सुबह समय से बच्चे उठें और दिन का खाना है, रात का खाना है और साथ में जो उनका स्कूल का होमवर्क वगैरह मिलता है उसे कराना और साथ साथ फैमिली टाइम जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है देना, क्योंकि आजकल जो बच्चे बाहर चले जाते हैं तो फिर वो फैमिली टाइम बच्चों को नहीं मिल पाता, जिससे अलगाव हो जाता है बच्चों में और परिवार में भी। तो मैम बच्चे की जो जड़ें होती हैं वो फैमिली से जुड़ी होती है, तो ये जड़ों में हमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, चाहे हम उसके साथ स्पोर्ट्स करें या फिर हम उनको कहीं घूमने ले जाएं, और ये समय हमें बच्चे को देना चाहिए। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि रोज के शेड्यूल के साथ साथ हम बच्चे को अपना समय भी दें और बच्चे को सभी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करवाएं साथ साथ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी जी। जो बच्चे हैं वो छुट्टियों में देर तक सोते हैं, हम सभी जानते हैं, और देर से उठते भी हैं। उनकी दिनचर्या को संतुलित रखने के लिए क्या किया जा सकता है, आप क्या राय देंगे?
1: जी मैम, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि बच्चों का समय बहुत अव्यवस्थित हो जाता है छुट्टियों में, तो सुबह हमें बच्चों को अपने साथ व्यायाम करने ले जा सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह पे बच्चों का फोकस करना चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और वो सुबह सैर पे जा सकते हैं। अगर सुबह जल्दी उठेंगे बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटी वगैरह में योगा, व्यायाम और बैडमिंटन जैसी आउटडोर स्पोर्ट्स, उन पे बच्चों का फोकस करना चाहिए, और रात को समय से खाना देके बच्चों को समय से सुलाना चाहिए ताकि अगले दिन की सुबह की दिनचर्या भी बच्चों की सही रहे।
0: और प्रीति जी गर्मियों में

0: उनका बच्चों के खान पान से ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादा फास्ट फूड और यही सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उन्हें अच्छा भी वही लगता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बिजी टाइम में से भी बच्चों के लिए समय निकालें और उन्हें घर का ताज़ा पौष्टिक आहार दें, और उनका फल और फलों का जूस हो गया, लस्सी है, और पौष्टिक आहार और स्प्राउट्स घर के खाने पे ही ज्यादा जोर देना चाहिए, जिससे उनको पौष्टिक आहार मिले, जिससे वो ऊर्जावान रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे मैम। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि उन्हें समय पे भोजन दिया जाए, ताकि बच्चों का जो टाइम टेबल है वो सही रहे, क्योंकि समय पे बच्चे भोजन खाएंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए उनके।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि बच्चे आजकल खाने के मामले में बहुत ज्यादा लापरवाही पीती थी, हम भी जानते हैं, तो विशेषकर माताओं को ही ध्यान देना पड़ता है इस चीज का। और जैसे कि आजकल छुट्टियों में जो बच्चे हैं वो अक्सर मोबाइल और टीवी पर ज्यादा समय बिताने लगते हैं, इस आदत को कैसे कम किया जा सकता है?
0: हम बच्चों को वही आउटडोर गेम्स, किताबें पढ़ने और ये आर्ट है, म्यूजिक है, ऐसी चीज़ों में अगर हम बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे या उन्हें प्रोत्साहित करेंगे तो वो अपने आप ही उनका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए उपयुक्त विकल्प होंगे।
1: तो प्रीति जी, आपने सही बताया कि बच्चों को अगर मोबाइल फोन और टीवी से हमको अलग करना है तो अदर एक्टिविटीज में शामिल करना होगा। तो क्या हम बच्चों को घर के छोटे छोटे कामों में शामिल कर सकते हैं? इससे उन्हें क्या सीख मिलती है? क्या आप ऐसा करती हैं अपने बच्चों के साथ?
0: जी हाँ, मैं भी करती हूँ। जब मेरे बच्चे छुट्टियों में घर आते हैं तो मैं उनको अपने घर के छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व करती हूँ, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ती है, परिवार के साथ सहयोग बढ़ता है और अपना आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आज बच्चे जो छोटे छोटे स्टेप्स उनके वो अपने लिए उठा रहे हैं, कल वही स्टेप वो बाहर पढ़ने जाएंगे तो वो स्टेप उनके ही काम आएंगे। तो मेरे अनुसार बच्चों को जरूर अपने घर के छोटे छोटे कामों में उनकी सहयोगिता या उनकी भागीदारी को लेना चाहिए, जो उनके व्यक्तित्व के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आगे चलकर।
1: और छुट्टियों के दौरान बच्चों के साथ परिवार का समय बिताना कितना महत्वपूर्ण है?
0: जी मैम, मेरे हिसाब से तो परिवार के साथ बिताया हुआ समय वो एक लम्हा होता है जो हमें भावनात्मक रूप से परिवार के साथ बांधे रहता है या जोड़े रहता है, क्योंकि इसमें माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध मजबूत होते हैं। बच्चों को सुरक्षा और अपनापन भी महसूस होता है जब वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं। जब हम बच्चों के साथ कहीं आउटडोर जाते हैं तो वो कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमेशा हमारी यादों में रहते हैं। तो मैम, परिवार के साथ बिताया गया समय बच्चों के लिए भी और माता पिता दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों को ही आपस में बहुत जोड़ता है एक दूसरे के साथ।
1: जी प्रीति जी, बच्चों की छुट्टियों की बात हम कर रहे हैं तो बच्चों के लिए छुट्टी पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती भी होनी चाहिए, तो बच्चों के लिए कितना जरूरी है घर से बाहर निकलना, नई जगहों पर माता पिता को उनको घुमाने लेके जाना, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप?
0: बच्चों के लिए छुट्टियां खास होती हैं, हर बच्चों को होता भी है कि हमारी छुट्टियां पड़ी हैं तो हम अपनी नानी के यहाँ जाएं या मासी के यहाँ जाएं। तो जब वो अपनी नानी और मासी के यहाँ जाते हैं या अपने कहीं बाहर भी जाते हैं तो मैम वहाँ भी बच्चे सबसे कुछ ना कुछ बड़ों से सीखते हैं, और अगर हम बच्चों को बाहर कहीं ले जाते हैं हमारी प्रकृति के बारे में, ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जो पता चलता है, जो एक प्रैक्टिकल मैम उनको उनकी किताबों से ही जोड़ता है और एक उनकी नॉलेज बढ़ती है उन चीज़ों के लिए जो भी आज उनकी बुक्स में चीज़ें आती हैं, तो बच्चे अगर वहाँ जाते हैं तो मैम खुद से देखते हैं, खुद से उन चीज़ों को समझते हैं, तो उनके ज्ञान में वृद्धि होती है उससे।
1: जी प्रीति जी, आप हमारे घर संसार कार्यक्रम के माध्यम से सभी माताओं को क्या सुझाव देना चाहेंगी ताकि बच्चों की छुट्टियां आनंददायक, सुरक्षित, उपयोगी और उनकी पढ़ाई के साथ साथ आनंदमयी बन सके?
0: जी मैम, मैं यही कहना चाहूंगी सभी माताओं से कि आजकल जो बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है उसे आप कम करने की कोशिश करें। उनको अच्छी अच्छी सुंदर आजकल कहानियों की किताबें आ रही हैं जिनमें चित्र बने रहते हैं, जिसे देखते ही बच्चों को पढ़ने का मन भी करता है, तो आप उनकी किताबें पढ़ने की रुचि बढ़ाएं। और जो बड़े बच्चे हैं उनको भी उनके यूज की जो उनके आगे के एग्जाम्स के लेवल है उनसे रिलेटेड उन किताबों को उनको प्रोत्साहन करें कि वो आगे की तैयारी के लिए भी पढ़ें या नॉलेजेबल किताबें पढ़ें, अब्दुल कलाम जी की और हमारे बड़े राइटर्स हैं उनकी बुक्स पढ़ के उनको मोटिवेशनल चीजें भी मिलती हैं और एक स्ट्रेंथ मिलती है जो उनके आगे के विकास के लिए बहुत जरूरी है। बुक्स के माध्यम से या हम अपनी आउटडोर एक्टिविटीज के माध्यम से, तो ये सब करके हम अपने समाज को एक सही दिशा दे सकते हैं। इन छुट्टियों में बागवानी में अपने बड़ों के साथ भी शामिल कर सकते हैं कि एक मिट्टी से बच्चों को एक बड़ी अच्छी ऊर्जा मिलती है और अपनी प्रकृति को भी हम सहयोग देते हैं बच्चों के साथ ही। और जब आप किचन में माताएं बहनें जब खाना बनाती हैं तो बच्चों को छोटे छोटे हम कामों में हम उनकी भागीदारी भी कर सकते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है और खाने का मजा भी बढ़ जाता है जब बच्चे खुद से बनाते हैं या बच्चे खिलाते हैं। तो

0: एक अलग सा ही हमें भी खाने का, बच्चों के हाथ का खाना खाने का भी एक अनुभव मिलता है जो बहुत ही अच्छा सा होता है। तो आप बच्चों को अपने साथ किचन में भी और बाहर भी सब जगह हम बच्चों की भागीदारी ले सकते हैं। इन छुट्टियों में हम उनके साथ मूवी टाइम भी जा सकते हैं, जो एक अच्छा मोमेंट होता है एक माता पिता के लिए और बच्चों के लिए, जो उनका एक अच्छा समय आपस में मिलता है, जो छुट्टियों में टाइम मिलता है हर पेरेंट्स को। जब हम बच्चों के साथ ऐसे जाते हैं तो एक मेमोरेबल टाइम होता है बच्चों के साथ हमारा समय बिताया हुआ। तो बच्चा जब स्कूल अटेंड करता है तो उसके लिए भी वो सारे मोमेंट्स उसके दिमाग को फ्रेश रखती है, जिससे वो एक नई शुरुआत बहुत अच्छे से करता है।
1: जी, तो प्रीति जी आपके बहुत ही अच्छे विचार थे और सुझाव थे कि बच्चों की छुट्टियों को कैसे आनंददायक बनाया जा सके और जिससे बच्चे खुशी खुशी इन छुट्टियों को बिता सके। तो बहनो, आज की इस बातचीत से हमें ये समझ आता है कि बच्चों की छुट्टियां केवल मनोरंजन का समय नहीं है, बल्कि सीखने और परिवार के साथ जुड़ने का भी एक सुंदर अवसर है। सही मार्गदर्शन और प्यार के साथ हम अपने बच्चों की छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं। तो प्रीति जी, आज आप हमारे घर संसार कार्यक्रम में शामिल हुई और आपने अपने इतने खूबसूरत विचार हमारे संग साझा किए, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद संगीता जी।
2: बहनों, अभी आप बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां और माँ की भूमिका विषय पर श्रीमती प्रीति कपूर से की गई क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता सुन रही थी। हमारे साथ सुनते रहिएगा कार्यक्रम घर संसार। मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
3: बिना ISI के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
4: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
3: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
4: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
3: झगड़ा मिटाएं, विश्वास जगाएं।
5: जागो ग्राहक जागो।
2: मैंने कार्यक्रम में अब बात करते हैं एक अल्पसंख्यक योजना के विषय में, जिसका नाम है एकीकृत बाल विकास सेवाएं। बाल कुपोषण हमेशा से ही राष्ट्रीय चिंता का विषय रहा है। सरकार ने बच्चों और महिलाओं में कुपोषण को दूर करने के लिए बहुत से कार्यक्रमों और योजनाएं बनाई हैं, और एक ऐसी ही योजना है एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS, जो भारत सरकार के सबसे प्रतिष्ठित और प्रमुख राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों में से एक है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना दुनिया का सबसे बड़ा समुदाय आधारित कार्यक्रम है। ये योजना 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और 16 से 44 वर्ष तक की महिलाओं के लिए है। ये योजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू करने के मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना है, बच्चों की स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना, मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करना है, और साथ ही बहनों, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों और कार्यक्रमों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है। इन सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरे देश में आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ महिलाएं और नौनिहालों तक पहुंचाया जाए और उनको मिल सके। तो बहनों, अगर आप भी इसके लाभ लेने के अधिकार में आती जरूर लीजिए और अपने आसपास जागरूकता भी फैलाती रहें। तो अपनी इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आपको भी इंतज़ार होगा गीत का, तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

मैनू आज के इस खूबसूरत और स्नेह भरा साथ आपके साथ अब संपन्न होता है। आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। घर संसार कार्यक्रम से विदा लेने का समय है, फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी एक प्यारी सी मुस्कान पूरे घर को खुशियों से भर देती है। और इस समय अपनी रेडियो सखी संगीता तिलारा को दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजे हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर

पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्य बल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपये का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री बी बत्तिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने हरिद्वार में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की, कार्यों की प्रगति पर संतोष

0: जताया। टीबी मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देहरादून में स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार जारी। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने एंचोली और निराड़ा में एसटीबी प्लांट का निरीक्षण किया, सुरक्षा मानकों में तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए और बागेश्वर में बहुउद्देश्य विधिक शिविर का आयोजन, आम जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने हरिद्वार में विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी और रोजगार परक योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए लखपति दीदी योजना के तहत शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। श्री चौधरी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने जिले में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।
1: हरिद्वार जनपद के ग्राम्य विकास विभाग के लगभग सभी कंपोनेंट हैं, उनकी समीक्षा की गई और जो भी प्रेजेंटेशन यहाँ पर आए हैं उनको देख करके मैं काफी उत्साहित हूँ। अपवाद स्वरूप अगर एक हाथ मुद्दों को जोड़ दिया जाए तो सभी में बहुत रिमार्केबल काम जो है वो इस जनपद में हुआ है।
0: टीबी मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देहरादून में स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार जारी है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में 189 उच्च जोखिम क्षेत्रों को चिन्हित कर 100% स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। निक्षय पोर्टल पर अब तक लाखों संवेदनशील लोगों का पंजीकरण किया जा रहा है और 53% एक्सरे स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि देहरादून में हर साल 3,500 से 4,000 टीबी के सक्रिय मामले सामने आते हैं, इसलिए बीमारी की समय पर पहचान और उपचार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 2 नई एक्सरे मशीनों की मांग भी की है ताकि स्क्रीनिंग की रफ्तार और बढ़ाई जा सके और टीबी के मामलों में प्रभावी कमी लाई जा सके।
2: हमारी एक्सरे मशीन है, अलग अलग फैसिलिटी में है, तो वहाँ पर भी हम प्रयास कर रहे हैं कैसे किस तरीके से टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हम लोगों की ज्यादा स्क्रीनिंग उसमें कर सके। एक इशू थोड़ा सा रहता है कि वहाँ पे टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत क्योंकि सभी को फ्री किया जाना है इसमें, तो एक थोड़ा सा इशू उसमें रहता है कि किस तरीके से हम उन लोगों को वहाँ पे फ्री करते हैं, उसको स्क्रीन करें और

0: को छोड़ दिया जाए तो सभी में बहुत रिमार्केबल काम जो है वो इस जनपद में हुआ है।
1: टीबी मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देहरादून में स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार जारी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में 189 उच्च जोखिम क्षेत्रों को चिन्हित कर 100% स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। निक्षय पोर्टल पर अब तक लाखों संवेदनशील लोगों का पंजीकरण किया जा रहा है और 53% एक्सरे स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि देहरादून में हर साल 3,500 से 4,000 टीबी के सक्रिय मामले सामने आते हैं, इसलिए बीमारी की समय पर पहचान और उपचार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 2 नई एक्सरे मशीनों की मांग भी की है ताकि स्क्रीनिंग की रफ्तार और बढ़ाई जा सके और टीबी के मामलों में प्रभावी कमी लाई जा सके।
2: हमारी एक्सरे मशीन है, अलग अलग फैसिलिटी में है, तो वहाँ पे भी हम प्रयास कर रहे हैं कैसे किस तरीके से टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हम लोगों की ज्यादा स्क्रीनिंग उसमें कर सके। एक इशू थोड़ा सा रहता है कि वहाँ पे टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत क्योंकि सभी को फ्री किया जाना है इसमें, तो एक थोड़ा सा इशू उसमें रहता है कि किस तरीके से हम उन लोगों को वहाँ पे फ्री करते हैं, उसको स्क्रीन करें और

0: पर ही भरोसा करें। वहीं पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं और यात्रियों का गुरुद्वारे में आवागमन सामान्य रूप से जारी है। लंगर, अरदास और अन्य धार्मिक गतिविधियां भी नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: पिथौरागढ़ जिले में सीवरेज व अपशिष्ट जल शोधन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने एंचोली और निराड़ा में एसटीपी प्लांट का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने प्राथमिक उपचार इकाइयों से लेकर एरेशन टैंक तक पूरी शोधन प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा मानकों में कुछ कमियां पाई जाने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवस्था को सुचारू और प्रभावी बनाया जाए ताकि अधिकतम घरों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य के लिए एसटीपी का बेहतर संचालन बहुत जरूरी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एसटीपी प्लांटों के संचालन, रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्यों की प्रभावी पूर्ति हो सके। बागेश्वर में आयोजित

0: से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, रक्त जांच और दवा वितरण की व्यवस्था की गई। इसके अलावा दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के साथ ही दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए।
1: इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आम जनता है, जो ऐसे लोग हैं जिन तक लाभ नहीं पहुंच पाता है, एक जगह पे उनको जो समस्याएं हैं, वृद्धा पेंशन से रिलेटेड हैं, मानसिक प्रमाण पत्र से संबंधित हैं, उनका निराकरण यहाँ मौके पर ही हो। काफी लोग ऐसे हैं जिनके मानसिक प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं क्योंकि यहाँ साइकेट्रिस्ट नहीं है, तो इसीलिए हमारा निवेदन था चिकित्सा अधिकारी महोदय से कि वो यहाँ पर साइकेट्रिस्ट की टीम उपलब्ध कराएं ताकि मानसिक रोगों से संबंधित लोगों के प्रमाण पत्र बन सके। पेंशन से संबंधित कोई समस्या है, आधार से संबंधित जो समस्या है, उनका निराकरण यहाँ मौके पर ही हो पाए, तो मुझे उम्मीद है कि इस शिविर से जो यहां की जनता है उनको लाभ पहुंचेगा।
0: वहीं लाभार्थी रमेश पाठक ने कहा कि इस तरह के शिविर बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं।
2: ये बहुउद्देशीय शिविर जो लगा है बहुत अच्छा शिविर लगा है, लोगों को इससे लाभ मिलता है, बहुत काफी जानकारी मिलती है और यहाँ के विभिन्न प्रकार के दिव्यांग और किसी के आय प्रमाण पत्र जो बेचारे जिनको जानकारी नहीं है वहाँ पर जानकारी प्राप्त हो जाती है और बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं कृषि विभाग के, उद्यान विभाग के, उससे संबंधित सारी चीज की जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। और ऐसे शिविर लगाने के लिए विधिक का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे लगने चाहिए ऐसे शिविर, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं रहती है, जानकारी का अभाव रहता है, तो यहाँ पर एक छत के नीचे सारी जानकारी उनको प्राप्त हो जाती है।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। साथ ही इन जिलों में कहीं कहीं बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के शेष जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने हरिद्वार में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की, कार्यों की प्रगति पर संतोष जताया। टीबी मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देहरादून में स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार जारी। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने एंचोली और निराड़ा में एसटीबी प्लांट का निरीक्षण किया, सुरक्षा मानकों में तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए और बागेश्वर में बहुउद्देश्य विधिक शिविर का आयोजन। आम जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत। आगाज कर रहे हैं फिराक गोरखपुरी के कलाम से। आवाजें हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की।

और अब सुगम संगीत में आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद सुल्तान खां और चित्रा के युगल स्वरों में ये गीत।

हेमा सरदेसाई और साथियों के स्वरों में अभी आपने ये गीत सुना और इसी के साथ सुगम संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1311।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता,

और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर

पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।

0: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
1: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
0: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
1: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
0: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं गढ़वाली लोकगीत के साथ, कलाकार हैं नरेंद्र सिंह नेगी।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाश

शिवानी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: श्रोताओं, विजय सिंह सैलानी के स्वर में ही गढ़ वाले लोकगीत आपने सुना, और इसी लोकगीत के साथ उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समा

0: समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिसकर्मियों और NVM कर्मचारियों का मासिक मानदेय 2,000 रुपये बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज CISF के मुख्यालय के

0: भारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चार दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज शाम दो दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये

0: गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन की 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है कृषि उत्पादन में जैव उर्वरकों की महत्ता एवं उपयोग। जानकारी दे रहे हैं श्री नवीन चंद्र भेलवाल।
2: किसान भाइयों व बहनों, जैसा कि आज पूरे विश्व में मानव जनसंख्या में लगातार वृद्धि होने से इस बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए जो हमारी खेती है उससे अधिक उत्पादन लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देश में अधिक कृषि उपज लेने के लिए कृषि भूमि की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। यह तभी संभव हो पाएगा जब हमारे खेतों की मिट्टी स्वस्थ व उपजाऊ बनी रहे, जिससे हमारे किसान भाई लंबे समय तक खेतों से उत्पादन लेते हुए एक टिकाऊ खेती को स्थापित कर सकेंगे। जैसा कि अधिक उत्पादन लेने के लिए रासायनिक खादों, कीटनाशक व रोगनाशक रसायनों का खेती में अधिक प्रयोग होने से आज इन रसायनों द्वारा अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इन रसायनों के कारण खेत की मिट्टी, पानी, जलवायु, पर्यावरण में अत्यधिक हानिकारक रसायनों के रहने से इनके द्वारा मानव, पशु पक्षियों व अन्य जीव जंतुओं पर इनके हानिकारक प्रभाव देखे जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हर वर्ष 2 लाख लोग कृषि में प्रयोग हो रहे हानिकारक रसायनों के कारण मारे जाते हैं। खेती में रसायनों के प्रयोग से आ रही गंभीर समस्याओं को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों से किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर जैविक खेती को अपनाया जा रहा है। आज कृषि में रसायनों का प्रयोग कम से कम करने व जैविक साधनों से खेती करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। जैविक साधनों में जैविक खादों का कृषि में महत्वपूर्ण स्थान है। इन जैविक खादों में कंपोस्ट खादें हैं, हरी खाद है, वर्मी कंपोस्ट व जैव उर्वरक ये प्रमुख खादें हैं। बहनों, आज कृषि उत्पादन में जैव उर्वरकों की महत्ता एवं उपयोग पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि जैव उर्वरक आखिर हैं क्या। जैव उर्वरक खेती में प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक उर्वरक हैं। ये जैव उर्वरक मिट्टी में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विशेष सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं। इन उर्वरकों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा हवा में स्थित नाइट्रोजन, जिसको पौधे सामान्यतया शोषित नहीं कर पाते, ये उर्वरक हवा में विद्यमान नाइट्रोजन को पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इसी तरह मिट्टी में स्थित अघुलनशील फॉस्फोरस, जिसे पौधे सामान्यतया नहीं ले पाते, सूक्ष्म जैव उर्वरक इस फॉस्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार पोटाश की उपलब्धता फसल में बढ़ाने के लिए पोटाश संचरण जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ ही धान की रोपाई वाली फसल में नील हरित शैवाल व एजोला फर्न धान की फसल में नाइट्रोजन को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। आज हमारे देश में अनेकों सरकारी विभाग एवं निजी क्षेत्रों के उद्यमी इन जैव उर्वरकों का निर्माण कर रहे हैं। पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के आधार पर इन जैव उर्वरकों में नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक, फास्फोरस उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक, इसके साथ ही पोटास उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक और साथ ही जिंक, सल्फर व आयरन उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक भी इस वक्त उपलब्ध हैं। इनमें राइजोबियम नामक जैव उर्वरक दलहनी फसलों में नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। इस उर्वरक का प्रयोग दाल वाली फसलों जैसे चना, मसूर, राजमा, मूंग, उड़द आदि में तथा तिलहनी फसलों में सोयाबीन व मूंगफली, और जो चारे वाली हमारी फसलें हैं उनमें बरसीम और इसका में इस जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। यह राइजोबियम जैव उर्वरक दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों का निर्माण कर वायुमंडल में जो नाइट्रोजन घुली रहती है उसको लेकर पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक दलहनी फसल में अलग अलग जाति के राइजोबियम जीवाणु जड़ों में गांठों का निर्माण करते हैं, इसलिए किसान भाई ये हमेशा ध्यान रखें कि प्रत्येक दलहनी फसल के लिए राइजोबियम जैव उर्वरक भी अलग अलग प्रयोग करने होते हैं। राइजोबियम जैव उर्वरक का प्रयोग दलहनी फसलों में करने से 10-20% तक अधिक उपज पाई गई है। दलहनी फसलों के अलावा खाद्यान्न फसलों में नाइट्रोजन पोषक तत्व की वृद्धि के लिए एक जैव उर्वरक है जिसको एजेटोवेक्टर जैव उर्वरक कहते हैं। यह जीवाणु मुक्त रूप से नाइट्रोजन योगीकरण क्रिया द्वारा मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एकत्र कर पौधों के उपयोग लायक बनाता है। एजेटोवेक्टर जैव उर्वरकों के प्रयोग से गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, सरसों व सूर्यमुखी आदि की फसलों में 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन तक एक हेक्टेयर में उपलब्ध हो जाती है, जिससे इन फसलों की पैदावार में 10% तक की वृद्धि देखी गई है। खाद्यान्न व तिलहनी फसलों के अलावा एजेटोवेक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग सब्जियों जैसे टमाटर, आलू, भिंडी, गोभी व बैंगन आदि फसलों में भी किया जा सकता है। देखा गया है कि एजेटोवेक्टर जैव उर्वरक कुछ बीज जनित फफूंद की रोकथाम में भी उपयोगी रहता है। तीसरी तरह के नाइट्रोजन प्राप्त करने वाले जैव उर्वरकों में एजो स्पाइरेलियम नामक जैव उर्वरक है। ये जीवाणु भी मिट्टी में मुक्त रूप से रहकर वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इस जैव उर्वरक का प्रयोग सभी

अन्य फसलों व सब्जियों में किया जा सकता है। इस जैव उर्वरक के प्रयोग से उपज में 10 से 15% तक की वृद्धि देखी गई है। एजो स्पाइरेलम जैव उर्वरक को अपने कार्य वृद्धि के लिए बहुत ही कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिससे यह उर्वरक धान की रोपाई की गई फसल में भी अच्छा कार्य करता है। अब बात आती है फास्फोरस उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरकों की। इन्हें फास्फेट विलयकारी जैव उर्वरक भी कहा जाता है। हमारे खेतों की मिट्टी में स्थित फास्फोरस का कुछ भाग पौधों को उपलब्ध होने की अवस्था में नहीं रहता है। फास्फेट विलयकारी जैव उर्वरक के जीवाणु इसे उपलब्ध हो सकने वाली अवस्था में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इस जैव उर्वरक का प्रयोग सभी दलहनी धान्य फसलों व अन्य फसलों में किया जाता है। इस फास्फेट विलयकारी जैव उर्वरक के प्रयोग से 10 से 20 किलोग्राम फास्फोरस जो है वो तत्व प्रति हेक्टेयर फसल में उपलब्ध हो जाता है। अलग अलग फसलों में इससे करीब 5 से 25% तक की जो फसलों में है वो वृद्धि देखी गई है। इसके साथ ही पोटास की फसल में उपलब्धता बढ़ाने के लिए पोटास घुलनशील जीवाणु उर्वरक है, और इसी तरह जिंक की फसल में उपलब्धता

0: जो बीज हैं वो बड़े आकार के हैं, जैसे राजमा, फ्रांस बीन, सोयाबीन, चना, मक्का। तो इन बीजों के उपचार के लिए 1 किलोग्राम बीज में 30 से 40 ग्राम जैव उर्वरक की आवश्यकता होगी। बीजों को जैव उर्वरकों से उपचारित करने के लिए जो है 1% गोंद या गुड़ का पानी में घोल बना लें। और अब जिन बीजों को उपचारित किया जाना है उन्हें किसी साफ फर्श या पॉलिथिन के ऊपर रखकर इसमें इस बने हुए घोल को धीरे धीरे डालकर हल्के हाथों से बीज में मिलाएं, जिससे घोल समान रूप से बीजों पर लग जाए। अब बीज की मात्रा के अनुसार इन बीजों के ऊपर जैव उर्वरक फैला दें तथा हल्के हाथ से इन बीजों को इस प्रकार मिलाएं जिससे हर बीज पर इस जैव उर्वरक की एक परत लग जाए। अब इन उपचारित बीजों को छाया में सुखा कर और इसकी तुरंत फिर खेत में बुवाई कर दें। नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरकों को एक साथ मिलाकर प्रयोग करने से भी फसल की उपज में अधिक वृद्धि देखी गई है। सब्जियों तथा अन्य फसलों में जिनकी रोपाई की जानी है, इसमें रोपाई की जाने वाली फसलों की पौध को उखाड़कर जड़ों को साफ पानी से धो लें, फिर पौधों की जड़ों को जैव उर्वरक के घोल में 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रोपाई करनी चाहिए। घोल व जैव उर्वरक की मात्रा रोपाई की जाने वाली पौध की मात्रा के अनुसार रखनी चाहिए। आलू आदि कंद वाली फसलों के बीजों को जैव उर्वरक के 10% घोल में 5 से 10 मिनट तक इनके कंदों को डुबोकर उपचारित कर तब बुआई करनी चाहिए। यदि किसान भाई बुआई किए जाने वाले बीजों को रासायनिक फफूंदनाशक या अन्य रसायनों से उपचारित कर रहे हों तो रसायनों से उपचारित करने के बाद ही जैव उर्वरकों का प्रयोग इन बीजों में करना चाहिए। जैव उर्वरकों का प्रयोग सीधे खेत में भी किसान भाई कर सकते हैं। इसके लिए एक नाली खेत के लिए 40 से 50 किलोग्राम कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट या फिर खेत की भुरभुरी मिट्टी दो में 200 से 250 ग्राम जैव उर्वरक को अच्छी प्रकार मिलाकर जो खेत की अंतिम जुताई करते हैं उस समय खेत में मिला दें। धान की रोपाई की गई फसल में जो है उसमें हरित शैवाल, एजोला फर्न व माइकोराजा का प्रयोग करने से भी धान की उपज में 15 से 20% तक की उपज में जो है वो वृद्धि देखी गई है। कम लागत लगाकर जैव उर्वरकों के प्रयोग से फसलों के उत्पादन में वृद्धि तो होती है, इसके साथ ही फसल में रोगों से बचाव व खेत की मिट्टी को उपजाऊपन बढ़ाने में भी इन उर्वरकों का विशेष महत्व रहता है। जैव उर्वरकों के प्रयोग में कुछ सावधानियां किसान भाई अवश्य रखें, इनमें जिससे इनमें लगने वाली लागत से कहीं अधिक उत्पादन फसलों से प्राप्त किसान भाई कर सकते हैं। सबसे पहले प्रयोग में लाए जाने वाले जैव उर्वरकों को हमेशा विश्वसनीय स्थान से ही लें। इन पैकेटों के ऊपर जो लिखी हुई समयावधि है उसके अंदर ही इनका प्रयोग कर लें। बुवाई के समय खेत की मिट्टी में नमी का ध्यान रखें। इनके प्रयोग के समय खेत में नमी होनी चाहिए। अधिक अम्लीय या क्षारीय मिट्टी में इन जैव उर्वरकों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। अगर आपकी मिट्टी जो है अम्लीय या क्षारीय है तो ऐसी भूमि में मृदा सुधार के उपाय करने चाहिए। जैव उर्वरकों से अधिक लाभ लेने के लिए खेतों में जीवांश की सही मात्रा होनी आवश्यक है, जिसके लिए खेतों में अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग किसान भाई करें। जैसा कि पर्वतीय कृषि में लगभग 85% खेती का क्षेत्रफल वर्षा पर निर्भर है, जिसे हम उपराव खेती के नाम से जानते हैं, इस उपराव खेती में अधिकांश खेती जैविक खादों के प्रयोग द्वारा ही की जाती है। जो 15% सिंचित खेती यहाँ पर है उसमें रासायनिक खादों के साथ ही हमारे किसान भाई बहन जैविक खादों का भी भरपूर प्रयोग करते हैं। फसल को पोषक तत्व और अधिक मात्रा में प्राप्त हों इसके लिए एक सस्ते और आसान साधन के रूप में जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर किसान भाई खेतों से अच्छा व अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: कृषि उत्पादन में जैव उर्वरकों की महत्ता और उपयोग, इस विषय पर श्री नवीन चंद्र बेलवाल खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोताओं के लिए जानकारी दे रहे थे। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज इस सभा के शेष और सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 2:45 पर एक ही फनकार में आज फनकार रहेंगे जाने माने मशहूर अभिनेता अमरीश पुरी। 3:10 पर पीपल्स पद्मा ऑन

आकाशवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होगा। समय याद रखिएगा 3:10 पर। सायंकालीन सभा आरंभ होगी संध्या 5:00। रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार। शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले होंगे। शाम 5:05 पर शैलस्वर में आज कलाकार होंगे किशन जोशी और साथी। शाम 5:15 पर युववाणी में आज की बात का विषय रहेगा सकारात्मकता के साथ बढ़ते रहें। स्वास्थ्य जगत भी लेकर आएंगे युववाणी में। संध्या 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। भक्ति संगीत संध्या 6:41 पर सुनिएगा। आज कलाकार होंगे अनूप जलोटा और चंद्रो आत्मा। संध्या 7:00 ग्राम जगत कार्यक्रम पेश किया जाएगा, जिसमें आज की बातें होंगी एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन विषय पर चर्चा। सुनिएगा वर्षाकाल में पशुओं की देखभाल। रात्रि 8:00 सुगम संगीत सबरस में हम लेकर आएंगे। रात 10:00 भी सुगम संगीत आप सुन सकेंगे। फिल्म संगीत सुनिएगा संध्या 7:40 पर और रात 9:15 पर इंद्रधनुष में, और रात 10:30 पर भी फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सभा के शेष और सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। दिन के 2:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत एक ही फनकार, जिसमें आज के फनकार हैं मशहूर अभिनेता अमरीश पुरी।

एक ही फनकार के सभी श्रोताओं को अंजू पंक्ति का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर फिल्म में नायक के साथ साथ खलनायक की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सिने जगत में नायकों की ही तरह खलनायकों ने भी अपने बेहतरीन अभिनय कौशल के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है और इन्हीं खलनायकों में से एक नाम है अमरीश पुरी साहब का। अपनी दमदार, रौबदार, बुलंद आवाज और प्रभावशाली अभिनय कौशल, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे के अनोखे भाव, भंगिमाएं और रुपहले पर्दे पर अपनी चुंबकीय उपस्थिति से खलनायक शब्द को एक नवीन ऊंचाइयों तक पहुंचाया अमरीश पुरी साहब ने। आज खास तौर पर हम उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि आज 22 जून उनकी जन्म जयंती है, तो उन्हें नमन करते हुए आज उन्हीं की अभिनीत फिल्मों

एक नवीन ऊंचाइयों तक पहुंचाया अमरीश पुरी साहब ने। आज ख़ास तौर पर हम उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि आज 22 जून उनकी जन्म जयंती है, तो उन्हें नमन करते हुए आज उन्हीं की अभिनीत फिल्मों के चंद नगमे पेश कर रहे हैं एक ही फनकार में।

तो ये कड़कदार रोबदार आवाज़ आपने सुनी अमरीश पुरी साहब की। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवा शहर में हुआ और उनके बड़े भाई मदन पुरी और चमन पुरी भी अभिनय की दुनिया से ही जुड़े थे। इसके अलावा मशहूर गायक और अभिनेता उस दौर के कुंदन लाल सहगल भी उनके करीबी थे। और इन सब के होने के बावजूद अमरीश पुरी साहब के लिए फिल्मों में जगह बनाना आसान था। उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा और जब वो युवा हुए तो अभिनेता बनने का ख्वाब संजोए वो मुंबई पहुंचे और उन्होंने फिल्मों में हीरो बनने के लिए स्क्रीन टेस्ट भी दिया, लेकिन पहली ही कोशिश में वो असफल रहे। इसके बाद उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नौकरी करनी शुरू की और नौकरी होने के बावजूद उनके अंदर का कलाकार हमेशा उन्हें अभिनय की तरफ खींचता रहा। और जब वो नौकरी कर रहे थे उस दौरान वो थिएटर की दुनिया से भी जुड़े रहे और यही उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता को निखारा संवारा और सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड जैसे बड़े रंगकर्मियों के साथ उन्होंने काम किया। कई नाटकों में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया।

तो श्रोताओं, करीब 21 साल तक नौकरी करने के बाद अमरीश पुरी जी ने अभिनय की जो दुनिया थी उसमें उन्हें अच्छे अवसर मिलने लगे, तो उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। उस समय उनकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। उनका शुरुआती फिल्मी सफ़र छोटे किरदारों से शुरू हुआ और साल 1971 में आई फिल्म रेशमा और शेरा में उन्होंने काम किया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं निभाई। श्याम बेनेगल की कलात्मक फिल्मों में वो खास तौर पर नजर आए। साल 1975 में मंथन भूमिका, 1977 में, 1980 में कलयुग, 1983 में मंडी जैसी सुपरहिट फिल्मों में उनका दमदार किरदार देखने को मिला।

इन फिल्मों में जब अमरीश पुरी जी ने काम किया उसके बाद उन्होंने विधाता, नायक, लोहा, दामिनी, फूल और कांटे, हीरो, मेरी जंग, नगीना, चाइना गेट जैसी कई फिल्मों में बेहतरीन किरदार निभाए। और फिर आया साल 1987 और इस साल आई बोनी कपूर निर्देशित फिल्म मिस्टर इंडिया। इस फिल्म ने हमेशा के लिए उनके किरदार को और उनके अभिनय को अमर कर दिया। इसमें अमरीश पुरी साहब का किरदार मोगैम्बो इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग उन्हें उनके असली नाम से ज़्यादा मोगैम्बो के नाम से पहचानने लगे और हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार डायलॉग्स में शामिल रहा मोगैम्बो खुश हुआ।

शुरू इस फिल्म से पहले साल 1986 में आई बेहद चर्चित फिल्म नगीना, और इस फिल्म में एक ख़तरनाक क्रूर सपेरे के किरदार में नज़र आए थे अमरीश पुरी, और उनका किरदार इस फिल्म में इतना दमदार था कि उस फिल्म में लीड रोल में थे ऋषि कपूर और श्रीदेवी। इन दोनों के साथ ही अमरीश पुरी का किरदार भी हमेशा के लिए अमर हो गया।

शुदों साल 1984 में बनी स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम में मोला राम की भूमिका अमरीश पुरी ने निभाई, जो बेहद चर्चित रही। और इस भूमिका का ऐसा असर हुआ उन पर कि उन्होंने हमेशा अपना सिर मुंडवा लिया और ऐसे ही रहने का फैसला किया। इसी तरह आपने हर फिल्म में या उनको वैसे भी ऐसे ही देखा होगा बिना बालों के, और इस वजह से भी उनके खलनायक की भूमिकाएं जो भी फिल्मों में उन्होंने की हैं वो बेहद चर्चित रहीं, उन्हें बेहद सराहा गया, दर्शकों ने उन्हें बहुत पसंद किया। व्यावसायिक फिल्मों में प्रमुखता से काम करने के बावजूद समानांतर या अलग हटकर बनने वाली फिल्मों के प्रति उनका प्रेम बना रहा और वो इस तरह की फिल्मों से आगे भी जुड़े ही रहे। और फिर आया खलनायक की भूमिकाओं से हटकर चरित्र अभिनेता की भूमिकाओं की बात, तो इस दौर में भी उन्होंने कई फिल्में ऐसी की जिसमें उन्होंने चरित्र अभिनेता के तौर पर किरदार निभाए और अपनी अभिनय कला का जादू कम नहीं होने दिया।

कीजिए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या फिर परदेस जैसी फिल्मों में उनके एक सख्त पिता के जो अनुशासन वाले हैं उनके किरदार को हम भला कैसे भूल पाएंगे।

तो श्रोतों, अपने सिनी करियर में अमरीश पुरी जी ने 400 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई।

तो श्रोताओं, लगभग 4 दशकों तक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले इस महानायक ने 12 जनवरी 2005 को इस नश्वर संसार से विदा ली। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन सिनेमा की दुनिया में उनके द्वारा स्थापित किए गए प्रतिमान और उनका स्वाभिमान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। उनके बेहतरीन अभिनय और उनके डायलॉग्स के जरिए हम हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे।

तो श्रोताओं, एक ही फनकार आज के प्रोग्राम केंद्रित था, जाने माने मशहूर अभिनेता अमरीश पुरी पर। और अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। संध्याकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब हमारे आज की सायंकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेतसेग बटमुक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलेंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और NVM कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय कर्डिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वो तमिलनाडु में जल अधिकारों के लिए की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
2: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
1: लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ छात्र घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल द्वारा चलाए जा रहे बचाव और राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस ऐप के बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि सेवाओं का लाभ शीघ्र उठाने में इसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शैल स्वर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं किशन जोशी और साथियों का गाया लोकगीत। श्रोता, हमारी सभा के सभी कार्यक्रम इस समय आप मीडियम वेव 187.3 मीटर अर्थात 1602 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र और 101.5 MHz पर FM केंद्र बागेश्वर से भी सुन सकते हैं।

किशन जोशी और साथियों के गाए इसी लोकगीत के साथ शैल स्वर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:10 होने वाले हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 5:35 हुए हैं। युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कार्यक्रम युवाणी के आज के अंक में आप सभी का। आज के इस अंक के साथ मैं हाजिर हूं आपका रेडियो मित्र भुवन जोशी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात के साथ। और आज हम बात करेंगे सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें विषय पर। दोस्तों, मानव जीवन संघर्षों, चुनौतियों और अवसरों का संगम है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। ऐसे समय में सकारात्मक सोच को निराशा से निकालकर सफलता की ओर अग्रसर करती है। सकारात्मकता केवल एक विचार नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है जो हमें हर परिस्थिति में आशा, उत्साह और आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, सकारात्मकता का अर्थ है परिस्थितियों के उज्जवल पक्ष को देखना, यानी कि हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं। जब एक विकट परिस्थिति में हम होते हैं तो उस समय हमें उस परिस्थिति के नकारात्मक गुणों की ओर न देख के उसके सकारात्मक गुणों की ओर देखना चाहिए, ताकि हम उस परिस्थिति से आगे निकल सकें। जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति सकारात्मक होकर करते हैं, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, परिस्थितियों के उज्जवल पक्ष को देखना और समस्याओं के बजाय उसके समाधान पर ध्यान केंद्रित करना ही सकारात्मकता है। सकारात्मक व्यक्ति चुनौतियों को अवसर के रूप में स्वीकार करता है और असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ता है। सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन को बेहतर बनाता है। सकारात्मक सोच व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक रहते हैं, तब कठिनाइयां भी छोटी प्रतीत होती हैं। सकारात्मकता तनाव और चिंता को

कम करने में सहायक होती है और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाती है। इसके अतिरिक्त सकारात्मक व्यक्ति दूसरों को भी प्रेरित करता है और समाज में एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करता है। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में अनेक बार व्यक्ति असफल, बेरोजगारी और आर्थिक समस्याओं और सामाजिक दबावों से घिर जाता है। ऐसे समय में सकारात्मक सोच ही उसे आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति को धैर्यवान, आशावादी और कर्मशील बनाता है। सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने के उपायों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करने की बात हम सोचते हैं। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होने से व्यक्ति का ध्यान सही दिशा में केंद्रित रहता है और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और एक समय ऐसा आता है जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। असफलताओं से सीखना। दोस्तों, असफलता सफलता की सीढ़ी है। असफल होने पर निराश होने के बजाय हमें उससे सीख लेकर पुनः प्रयास करते रहना चाहिए ताकि हम अगली बार जब प्रयास करेंगे तो निश्चित ही अपनी कमी को दूर करते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएं। अच्छी संगति अपनाएं। सकारात्मक विचार रखने वाले लोगों के साथ रहने से हमारे विचार और व्यवहार भी सकारात्मक बनते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बनाएंगे जिनके विचार हमेशा नकारात्मक होते हैं या नकारात्मक दृष्टिकोण के जो लोग होते हैं उनके साथ अगर आपका उठना बैठना होगा तो आप निश्चित ही आपका मनोबल नीचे होगा और आप असफल होंगे। आत्मविश्वास बनाए रखना भी सकारात्मकता का एक लक्षण है। स्वयं पर विश्वास रखना सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ बनाए रखता है। इसलिए हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। इसलिए हमेशा जब भी आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आप कई बार असफल भी होते हैं, उन असफलताओं से आप सीखें कहाँ पे कमजोरी रह गई, आप असफल हो गए। उन असफलताओं से सीख के आप अगर दोबारा प्रयास करते हैं तो आप निश्चित ही सफल होते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें, निश्चित ही आपका जीवन सफल होगा। तो दोस्तों, आज की बात में बस इतना ही। आपको ले चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये गीत।

0: वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर।
3: तीनों कॉलेज में
4: डोंट वरी,
3: फीस तो देखो।
5: क्या हाल है, क्या हुआ?
4: फीस की टेंशन,
5: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
6: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
7: RBI कहता है
8: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: तो दोस्तों, ये था हमारा आज का युवाणी कार्यक्रम और इसी के साथ अपने दोस्त भुवन जोशी को आज के इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुनेर सभा श्रोताओं के में कृष्ण सिंह लटवाला नमस्कार। श्रोताओं अब धीरे धीरे कने बारिशक बखत जो उड़ी वाल छे और मौसम हबीर पहली यानी कि मानसून मौसम हबीर पहली आपू के कुछ बात में ध्यान जो छे रखन जैन, क्योंकि कई बार हम देखनू कि हमारे जो जीवन छे दिनचर्या छे वो मानसून में थोड़ा अस्त व्यस्त है जाए। तो यश में मौसम है पहली हमन के अपन स्वास्थ्य और अपन घर आसपास तक जो छ ध्यान हमन के देन चाहिए। एक तो हमन के अपन छतक और नालियनक सफाई जो छो बखत पर कर लें चाहिए, क्योंकि हम देख लूँ कि हमारे घर पर छत में पड़ी हुई पेड़ पत्तू या फिर कचरे या फिर धूल के हम कई बार निहट पान, तो हमन के कहें साफ करन चाहिए ताकि जो बारिश का पानी छे वो आसानील हमार छत पर बहर रह जो। यह के दगरे छत पर या दीवारों पर कोई दरार छिन तो उन्हें के लिए हमन के भर लें चैन। सोतो यह के दगरे हमन के अपन जो ड्रेनेज पाइप छिन और जो सीवर लाइन छिन वो के लिए साफ स्वच्छ जो छे रखन चैन। अगर हमार घर के आसपास कोई ठुल पेड़ छिन या फिर वह कोई सूखी हुई या कमजोर टहनी छे तो उन्हें के लिए हमन के बखत पर हटा लें चैन ताकि तेज हवा में वो गिरो ना। यह के देखें बिजली की जो जाँच छो यानी कि हम उनके अपन वायरिंग के देखना चाहें, के लेकिन बारिश के मौसम में हम देख लूँ कि शॉर्ट सर्किट का खतरे ले बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसमें बहरक जो स्विच बोर्ड छिन तार छिन अर्थिंग जाँच हम उनके इलेक्ट्रिशियन है तिले करूँ चैन। और हमेशा अपने पास एक आपातकालीन

कितना रखन चाहिए और मच्छर भगोनी वाले जो साधन चाहिए उन्हें हमन का इस्तेमाल करन चाहिए, जब कि हम मच्छर मारने वाली दवाई या फिर मच्छरदानी इंतजाम जो है पहली भट्टी के कर सकूँ। यह के देख रहे हैं अपन छत रेनकोट और जो वाटर प्रूफ हमार जो छन उन्होंने हमके अपन सही हमन से कर रही चैन। और हमारे जो कोई विशेष अच्छे से जैसे हम देख लो हमारे किचन गार्डन में हूँ कई लोगों ने घरों में या हमारे जो घर के आस पास जो खेत हुई अगर हमन के मौसम में वे पहली उन्होंने भल तरीके से पानी की जो निकासी छ और वह जो पानी की निकास छ उकूल है सही हमन के कर ली चैन। या कि एक दोहर पक्ष लक्ष्य जो हम आपको बता के हमन के मौसम पूर्व मानसून पूर्व अपन जो

या हमर जो घरक आसपास जो खेत होने अगर हमन के मौसम में वे पहले उन्होंने भल तरीके उनमें पानी की जो निकासी छ और वह जो पानी की निकास छ उकुल है सही हमन के कर ली चैन या कि एक दोहर पक्ष ल छ जैक हम आपको बता के हमन के मौसम बेर पूर्व मानसून बेर पूर्व अपन जो स्वास्थ्य छ वह के लिए हमन के देखभाल करन जो छ जरूरी छ मौसम में। इसमें हमन के अपन जो हमर जो ऋतु है मानसून वाल इसमें हमन के थोड़ा मौसम अगर अनुकूल हो तो हमन के ये उमले भल तरीके जो छे अपन खान पान और अपन सेहत तक हमन के ध्यान जो छे रखन चाहिए और है सब तो हमन के सीमित मात्रा में खट्टे फलों का सेवन जो छे करन चाहिए। तो इसमें और जब हम वर्षा ऋतु आ जाए तो मैं हवा में आर्द्रता अधिक होने वजह पसीने ले बहुत ज़्यादा हूँ लेकिन वातानुकूलित वातावरण में रूम जो है नुकसान ला हमन के करो। कारण यह छो कि ये दिनों में ठंडी हवा शरीर के लिए बहुत हानिकारक ही इनमें मांसपेशियों में जकड़न पूर्व बदन में दर्द जोड़ों में दर्द और सिर दर्द जस वायु विकारों की समस्या ले हमन के जल्दी है जी। और यदि आपको कहीं कूलर या फिर एसी में नींद लेना या पंख में नींद लेना आदत छे तो आपको कहीं एक मोटी चादर ले दगड़ में उड़न चैन यह कह दगड़े खुले आसमान में शीतल हवेला हम उनके वजन जन के लेकिन रात में चलने वाले नम हवा ले कई तरीके के विकार जो छे उत्पन्न कर सकें। ये वक्त में हम उनके मच्छर जनित बीमारियों के लिए खतरा रूँ तो इसमें सीते वक्त हम उनके मच्छरदानी के प्रयोग ले अवश्य करें चैन। और सबसे महत्वपूर्ण बात सोचता हूँ कि हम उनके साफ सफाई के गंभीरता लेन पड़ो। बारिश के दिनों में मच्छर और विभिन्न प्रकार के कीट पतंगुन होने वाली बीमारियों की जगह वायरस और बैक्टीरिया ले बहुत ज़्यादा सक्रिय है जानी इन्हें देखे बचने के लिए घरक और आसपास में जगहों पर पानी के नहीं रुकन दिन चैन कीट और मच्छरों में बचाव के लिए कीटनाशक दवा छिड़काव करन चैन घर में नमी नहीं रून दो और दिन में घर खिड़कियन के हमन के खोल भी रखन चैन। बागवानी करते वक्त हमन के थोड़ा बहुत सावधानी यानी कि पूर्व जो दस्तान छन वो पहन चैन और पूर्व बाहक कपड़ा हमन के पहन चैन। और वर्षा ऋतु में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह रह जाए कि हमन के जो पानी हूँ ये वक्त में बहुत ज़्यादा दूषित हो जा चाहे हम अगर पीने वाले पानी की बात करूँ या फिर अन्य पानी जो हमारे घर में दैनिक उपयोग में प्रयोग हूँ वो पानी जो है इसमें थोड़ा खराब है जा। तो ये मैं जब हम अगर गंद पानी पी लें खराब पानी पी लें तो हम उनके में डायरिया उल्टी टाइफाइड और कई समस्याएँ होने खतरे जो है बढ़ जा। तो इसमें पीने वाले पानी और खाना बनाने में जो पानी का प्रयोग हम कर लूँ उसका हम उनके पहले उबाल हिन चैन और फिर ठंड कर बेल पे हम उनका प्रयोग करें चैन। और लगातार बारिश होने पड़ ले बहुत सारे जो आयुर्वेदिक बचाव छ हम उन्हें पालन ले कर सकूँ। तो सदा यह तो छी कुछ बातचीत मौसम यानी कि मानसून मौसम हमें पूर्व कुछ सावधानी और कुछ कार्य जो आप दैनिक जीवन में बहुत जरूरी होनी उनके अपन पहले हमन के हम यह कामों के कर सकूँ और मानसून में जो चिंता हमन के हैं वो चिंता बटी हम थोड़ा बच सकूँ निजात पे सकूँ। तो कार्यक्रम में अगला हम बात करूँ आपके सुनूँ दीवान कन वाला गई यो कुमाऊनी लोकगीत।

0: दी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।

श्रोता हूँ अल्लाह पूर्ण सुनो चंद्रकला जोशी के और अब आपको लिए चलूँ आकाशवाणी देहरादून केंद्र पर और सुनूँ पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। कृपया प्रतीक्षा करा।

0: 95 मेगाहर्ट्ज पर ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत श्री अशोक कुमार हलधर से बातचीत।
1: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं लेखक अशोक कुमार हलधर के साथ विशेष बातचीत। सहेली मुखर्जी के सहयोग के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: अशोक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी जीवन यात्रा और अब तक के अनुभवों के बारे में कुछ बताएं। आप अपने जीवन और कार्यों की इस यात्रा को किस प्रकार से देखते हैं?
3: मैं रेलवे नौकरी करता था। उस टाइम में गार्ड का नौकरी में दो स्टेज है। एक स्टेज में गुड्स ट्रेन वर्किंग करना पड़ता है, तो गुड्स ट्रेन बहुत रेस्पॉन्सिबल है, उसमें जिम्मेदारी ज्यादा है और एकाकी का काम है, अकेला ही रहता है। वो झड़ आदि तूफान जो भी है उसको सामना करना पड़ता है, और आधारी रात में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा गाड़ी का तो भी देखभाल करने होता था।
2: अशोक जी, आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे आपकी प्रमुख प्रेरणा क्या रही? आपके जीवन में ऐसा कौन सा अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
3: प्रेरणा मिला काम करते प्रगति का साथ रहते हुए। अंधारी डिब्बा में जब अकेलापन था उस टाइम में चिंतन भावना और प्रगति में क्या देखा, बाहर जगत में क्या है क्या नहीं है, वो आम अंदर में ले लेता, माने बाहर दर्शन अंतर दर्शन में आ जाता था। उसका बाद जब हमारा माने नौकरी खत्म हो जाता है, ड्यूटी शेष शेष टाइम में तो रेस्ट मिलता है, घर चला आता है, कभी रानी हूं में चला जाता है। उसके बाद जब घर फिकता वही जो भावना मेरा कल्पना जो देखा हम जो फेस किया वही चीज हम आके पेन पेपर में लिख के, जो मेरा चिंतन क्या है, क्या हम बाहर जगत में टोबिक में देखा और क्या होना चाहिए। मेरा भी वैसा ही है, एक संसार में फूल खिलती है और फूल भी झड़ जाता है और उसको कोई कीमत नहीं रहता है। जब तक फूल बगीचा में रहता है तब तक उसको कीमत है। मेरा आदमी का जीवन मनुष्य का जीवन भी ऐसा है, जब तक आपको काम रहेगा तब तक कीमत रहेगा, और काम का अभाव में और कोई इसको कीमत नहीं है। तो एक तो जगह में कीमत है जहाँ आप ऐसा काम करना है जो काम समाज का हर आदमी को काम में आएगा। कुछ चेतना समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए आदमी के लिए हम सोचा, क्या हम देखा आदमी को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज एक अनुप्रेरणा हम प्रवृत्ति से मिला। उसका बाद मालगाड़ी का बाद जब पैसेंजर में प्रमोशन हुआ तो आदमी का साथ मेरा काम हुआ। आदमी जब जाता है काहे के लिए जाता है, कुछ काम करने के लिए, रोजगार के लिए जाता है। दिन में रात में आदमी का साथ हम था और उससे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है वही ज्ञान का हम किताब में लिखा है, जो क्या आदमी परिश्रम करता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कैसे होता है, अगेंस्ट द नेचर वी हैव टू परफॉर्म आवर जॉब फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ये हम देखा और उसी चीज का हम किताब में लिखा है।
2: अशोक जी, आपको इस वर्ष देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री के लिए चुना गया है, तो ये न केवल आपके व्यक्तिगत योगदान का सम्मान है बल्कि आपके क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी है। तो इस सम्मान के लिए चुने जाने पर आप क्या कहना चाहेंगे?
3: देखिए, कोई अवार्ड मिलने से एक तो इंस्पिरेशन मिलता है और हम जो हमारा काम हमारा रास्ता सही था और मेरा काम भी सफल हुआ जिससे कारण से हमको मिला। 30 साल तक हम ये साधना किया, लेखा पढ़ा के साथ जुड़ा हुआ है और वो काम करते चले। हम कभी नहीं सोचा कर्मण्येवाधिक रास्ते में पुलिस पदाचरण, मैंने कभी नहीं सोचा जे हमारा एक पुरस्कार मिलेगा। हम काम के लिए काम करता था, यही हमारा उद्देश्य था, लेकिन जो मिल गया तो उसमें और चेतना हमारा इंस्पिरेशन बढ़ा, समाज को हम और कुछ दे सकता है, यही सोच के अभी मेरा खुशी होता है। हाँ, जो हम धन्यवाद ज्ञापन करता है भारत सरकार को, उसके बाद मोदी जी को हमारा धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, जो सही कर्मों का फल मिला है, मेरा समाज को मिला, हम दलित समाज में बिलोंग करता है उसको भी, और जो शिक्षा साहित्यिक अनुप्रेरणाएं, जिसको शिक्षा प्रेमी आदमी है, शिक्षा अनुरोगी मनुष्य, उसके साथ में जो हमारा विजय आज मिला है, उसको साथ मेरा विजय हम बांटने चाहता है।
2: अशोक जी, आपके अनुसार आज के युवाओं को अपने जीवन और करियर में आगे बढ़ने के लिए किन गुणों को विकसित करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए?
3: नेक्स्ट जेनरेशन, देखिए, कोई काम दृष्टि ठीक रख के प्रोचेस्टा जारी रखना है, अविराम उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। हमारा काम में बाधा आ सकता है, लुकआउट आ सकता है, लेकिन जब हमारा प्रोचेस्टा रहेगा, उसका ऊपर डिवोशन रहेगा काम का ऊपर, तब कामयाब हो जाएगा। यही मेरा सोच है, और यही मैंने सोच हम संसार को, मानुष आदमी को, समाज को देने चाहता है, जे शिक्षा चेतना अभी को होता है, तब उसको सही दिशा सही काम में वो काम करेगा। देखिए, मुंह का तो जैसा वर्षा का पानी नदी में बह जाता है तो बह ही जाता है, तो समाज में पैसा बहुत ही आदमी आता है, भीड़ करता है, अपना काम हो जाता है, चला जाता है, लेकिन वास्तविक में जो है सो एक लय है, सुनने से कोई चीज आविष्कार होता है और सुनने से विलीन हो जाता है, यही मेरा सिद्धांत है, तो इसमें कोई आवेश नहीं है, यही हमारा दीर्घ सिद्धांत है।
2: अशोक जी, आपका शैक्षणिक जीवन कैसा रहा और आपकी शिक्षा ने आपके व्यक्तित्व या फिर आपके कार्य क्षेत्र को किस प्रकार से प्रभावित किया, और जब आप एक छात्र थे तो किन अनुभवों ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया था?
3: शिक्षा तो चेतना देता ही है। देखिए, आज का जो समाज व्यवस्था है, आज का जो शिक्षा है, हमारा पीरियड में ऐसा नहीं था, इतना फैसिलिटी भी नहीं था, और इतना मोबाइल फोन भी नहीं था, और टेलीफोन भी बहुत आदमी के पास नहीं था, बड़ा बड़ा आदमी जो था उसके पास टेलीफोन का मुख्य व्यवस्था था, और जो सामान्य आदमी था उसके लिए एक ही काम था, जो हमको कुछ करना है तो क्या करेगा, हमको लेखा पढ़ा सीख के समाज को, परिवार को बचाना है, रोजगार करना है, और उसके साथ हमारा जो चिंतन है उसको विकास करना है। जब मेरा विकास नहीं होगा तो हमारा परिवार का विकास भी नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा, तो पहले अपना विकास करो, उसका बाद दूसरा विकास करने जाओ, चिंता करो, तब विकास होगा। तो वो सोच हम लोग, मेरा को मिला इनिशियल स्टेज पे, इस चीज हम अपना से सोचते, उस टाइम में कोई विनोदन का व्यवस्था नहीं था, और शिक्षा चेतना छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं था, पोस्ट कार्ड का व्यवहार था, एक तो जोगाजोग व्यवस्था भी अच्छा नहीं था, पोस्ट कार्ड में सब कुछ, वो तो टाइमिंग फैक्टर था, जिससे कारण से एक ही चीज आनंद मिलता था, किताब मिला, किताब पढ़।

0: से एक तो आनंद मिलता था और चेतना भी उसको साथ हो जाता है, शिक्षा भी उसमें ही रहता है, यही मेरा विचार था। तो हम शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ था, अभी तक जब तक जिंदा रहेंगे उसको समझ रहेगा।
1: अशोक जी, हमसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए और इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी लेखक अशोक कुमार हल्दर के साथ विशेष बातचीत। सहेली मुखर्जी के सहयोग के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपने प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है podcast.airnews@gmail.com।

अल्लाह आपको सुनो पीपल से पद्मा ऑन आकाशवाणी और फिर स्वागत छे अपन हमारे कार्यक्रम उत्तरायण में। सुधा हम देखलूँ कि हमार दिनचर्या जो छे धीरे धीरे खराब होने लग रहे और एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए एक स्वस्थ जीवनक लिए हमन के हमेशा योग जो छे वो करन चैन। हम कह सकलूँ कि करें योग रहें निरोग। तो जब हम योग कर लो तो हमारे एक जो स्वस्थ जीवन छे उको हम जी सकनू। और यह कह देख रहे एक जो योग साधना है ऐसे कि हम कह सकनू कि योग साधना हम करनू तो योग साधना के जरिए हम अपने जीवन के स्वस्थ बढ़ सकनू। हम देखनू कि आज कई प्रकार की बीमारी जो छे मनखी के घेरे में लग रो चारों ओर वह घर मनखी के बड़े हेलो तो इसमें ये बीमारियों दुष्चक्र व बचने के लिए हमन के कोई न कोई यस कार्य जो चाहिए अवश्य करना चाहिए। जैसे कि हम शारीरिक श्रम और शारीरिक व्यायाम नियमित योग व्यायाम और यह के दगड़े योगक कुछ प्रमुख चक्रों के अपने भेद अपने जीवन के स्वस्थ रख सकनू। स्वतः हमारे जो पुराण मनीषी थी उन्हें योग कर छी और हमारे पुराण जो हमारे ऋषि छी मुनि छी वो बैठे हमन के ये योग जो छे वो मिल रहो और आज पूरी दुनिया भारतक योग दगे कदम बे कदम मिलने लग रहा। पूरी दुनिया मानना है कि योग जो छे एक यस महत्वपूर्ण बात छू कि योग कर भी हम स्वस्थ रह सकूँ। तो पूरी दुनिया ले मानो तो हम अल्लाह हाल में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ले हम मना और पूर्व भारतक दगर दगरे पूर्व विश्व के मना और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ले एक मान्यता जो छे वो मिल रही। तो इसमें हमन के योग जो छे अवश्य करना चाहिए। राति हम जल्दी उठ भी और थोड़ा अपने दैनिक दिनचर्या के पालन कर भी तो एक दगर दगर योगक लीजिए कुछ बखत हमन के अवश्य निकालन चैन। तो अब कार्यक्रम में अगला पुकार सुनू गोकुल सिंह बिष्ट गई यो कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं गोकुल सिंह बिस्टर गई यही लोकगीतक दगड़ आज उत्तरायण कार्यक्रम इत्य के संपन्न हूँ। भोला पुदगे फिर भेंट करूँ एला पुदगड़ी कृष्ण सिंह लटवाल जो अनुमति नमस्कार। और श्रोता थोड़ी देर बाद उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र में प्रसारित करी जा, कृपया प्रतीक्षा करें।

यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद

हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है। अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा संत समाज के मार्गदर्शन और सहयोग से कुंभ 2027 को दिव्य और भव्य रूप दिया जाएगा। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने पिथौरागढ़ में विभिन्न विभागों की समीक्षा की, जिले में विकास कार्यों की प्रगति को संतोषजनक बताया। उत्तरकाशी में 7 दिवसीय विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का समापन, बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी युवाओं को सम्मानित किया गया। और पौड़ीनगर के बहुप्रतीक्षित कंडोलिया इंडो स्टेडियम का शुभारंभ, खेल प्रतिभाओं को मिलेगा नया मंच। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संत समाज के मार्गदर्शन और सहयोग से कुंभ 2027 को दिव्य और भव्य रूप दिया जाएगा। आज हरिद्वार में आयोजित विशाल संत सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में संत समाज का योगदान अतुलनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए युग का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और केदारनाथ धाम के पुनर्विकास जैसे कार्य भारत की आध्यात्मिक विरासत को नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं।
1: भारत की आध्यात्मिक चेतना का स्वर्णिम काल चल रहा है, सनातन का भी स्वर्णिम काल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, चाहे वो भगवान राम का मंदिर बन रहा हो, काशी का कॉरिडोर बनना हो या महाकाल लोक बनना हो, के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम ऑल वेदर रोडें बननी हो, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण होना हो, शीतकालीन यात्रा चलनी हो, आदि कैलाश यात्रा चलनी हो, उन सभी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के अंदर अनेक काम हो रहे। अभी हमारे यहाँ पर कुंभ का आयोजन भी होना है 2027 में, उसकी तैयारियां हो रही। सभी संतों का सभी का आशीर्वाद लिया है, उनके मार्गदर्शन अच्छा मिला हो, अच्छा आयोजन हो।
0: वहीं रुद्रप्रयाग जिले के नगरासु स्थित गुरुद्वारा साहिब की घटना के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करने की भावना के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक भावना को आहत नहीं होने दिया जाएगा तथा सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को मजबूत बनाए रखा जाएगा।
1: मेरी बात हुई और हमने उनको कहा है कि हम निष्पक्ष रूप से करेंगे और कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड सभी को समाहित करती है, सभी का सम्मान करती है, और यहाँ पर हेमकुंड साहब भी है, यहाँ पर नानक मता साहब भी है, यहाँ रीठा साहब भी है, अनेक स्थल जो है यहाँ पर हमारे सिख धर्म गुरुओं ने स्थापित किए हैं, एक मान्यता है। तो सबका सम्मान करना हमारे राज्य की एक संस्कृति है, संस्कार है हमारे।
0: ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने आज पिथौरागढ़ में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण

0: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और युवाओं व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। श्री चौधरी ने कहा कि सीमांत पिथौरागढ़ जिले में विकास कार्यों की प्रगति संतोषजनक है और अधिकांश विभाग पूरी तत्परता और जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने, लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने तथा दूरस्थ व सीमांत क्षेत्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा जिले में रानीखेत के विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल ने आज गोविंद सिंह महारा राजकीय चिकित्सालय में नवनिर्मित ब्लड सेपरेशन यूनिट कक्ष और अस्पताल की चार दीवारी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में दूरदराज के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए आते हैं। लंबे समय से चिकित्सालय में ब्लड सेपरेशन यूनिट की मांग की जा रही थी, जिसका आज लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस यूनिट की स्थापना होने से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।
1: हॉस्पिटल में चूंकि ये पूरे चार पांच विधानसभाओं के केंद्र में है और काफी यहाँ जनता स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेती है, तो यहाँ पर हमारे ब्लड सेपरेशन यूनिट नहीं थी और जिसकी डिमांड लंबे समय से यहाँ से की जा रही थी। आज उसका हमने विधिवत रूप से उसका लोकार्पण यहाँ पर किया है। इसके साथ ही साथ हमारे चूंकि बाउंड्री वॉल हमारा इस हॉस्पिटल में नहीं होने के कारण उसमें अतिक्रमण हो रहा था इसकी जमीन पर लगातार, आज उसकी बाउंड्री वॉल काम का भी हमने शुभारंभ किया है। इसके साथ ही साथ जो हमारी दीवार थी पिछले बरसात में टूट गई थी सुरक्षा दीवार, वो भी आज पूर्ण हो गई, उसका भी लोकार्पण किया है। और हमारे जो हॉस्पिटल के अंदर टाइल और शीशी मार्ग निर्माण का आज
0: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आज अल्मोड़ा जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के तहत कठपुड़िया से कलोड़िया कतुनिया तक बनने वाले मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सड़कें केवल संपर्क का माध्यम नहीं होती, बल्कि वे किसी भी क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि की जीवन रेखा होती हैं। उन्होंने कहा कि इस नई सड़क के निर्माण से ग्रामीणों का आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र में आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मेरा युवा भारत उत्तरकाशी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। इस विशेष राष्ट्रीय एकीकरण और अध्ययन कार्यक्रम के तहत 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश से आए युवाओं ने उत्तरकाशी जिले के सीमांत क्षेत्रों भारत चीन सीमा और वाइब्रेंट विलेज का दौरा कर जमीनी स्तर पर हो रहे विकास कार्यों, स्थानीय संस्कृति और सीमांत जीवन की चुनौतियों को करीब से समझा। पूरे सप्ताह अनुकरणीय अनुशासन और सीमांत क्षेत्रों के अध्ययन में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी युवाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को सीमांत क्षेत्रों की समृद्ध संस्कृति, वहां की भौगोलिक चुनौतियों और प्रधानमंत्री के वाइब्रेंट विलेज विजन से सीधे रूबरू कराना था। विभिन्न राज्यों के युवाओं ने यहां जमीनी स्तर पर जो अनुभव प्राप्त किया है वह विकसित भारत 2047 के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। पौड़ी के विधायक राजकुमार पोरी और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आज नगर के बहुप्रतीक्षित कंडोलिया इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ किया। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस स्टेडियम में खिलाड़ियों को अब बेहतर व सुरक्षित वातावरण में अभ्यास और प्रतियोगिताओं की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि इंडोर स्टेडियम का सौंदर्यीकरण अत्यंत आकर्षक और उत्कृष्ट गुणवत्ता का है, जिसे निर्धारित समय में पूरा किया है। उन्होंने नागरिकों और खिलाड़ियों से स्टेडियम के संरक्षण और रखरखाव में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया।
3: ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और जिलाधिकारी महोदय और उन्होंने पीडब्ल्यूडी के सहयोग से इसको बहुत जल्दी तैयार किया। काफ़ी समय से ये जो है बहुत बुरी स्थिति में था, टूट फूट इसमें बहुत ज़्यादा थी। निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए बड़ी सौगात हुई है कि आज इसका उद्घाटन हो गया है। आज से बच्चे इसमें आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं, अपना खेल खेल सकते हैं। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं सब लोग।
0: वहीं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा, स्टेडियम को उच्च मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है, जो पौड़ी नगर के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बनेगा।
4: अब इसका पूरा एक जीर्णोद्धार पिछले 4-5 महीने के अंदर कराया गया, जिसमें कि इसकी जो लाइटिंग है उसको सुधरवाया गया। हमारी जो वुडन फ्लोर था मेनली उसी का काम था, वुडन फ्लोर्स को मैटिंग को सभी को चेंज करके पुनः इसको एकदम नए जैसा

0: बनाया गया और साथ में जो बाहर का भी सौंदर्यीकरण किया गया और अब वॉशरूम आदि का काम भी कराया जा रहा है। और पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी तो पानी आदि के भी कूलर्स और जो वाटर फिल्टर्स आदि सभी की व्यवस्था की गई है। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि मैक्सिमम बच्चे इससे लाभ अर्जित करें और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो पौड़ी के लोकल बच्चे हैं वो यहीं पे आकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और एक कोच भी हमारा कम था तो अभी कुछ समय पहले एक नया कोच भी बैडमिंटन के लिए रखे गए हैं, जो एक यहाँ पे स्पेशली इंडोर के लिए रहेंगे और एक ऊपर रांची के।
1: उत्तराखंड राजस्व परिषद की आयुक्त रंजना राजगुरु ने आज चंपावत में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में लंबित पुराने वादों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि LR एक्ट के तहत 6 माह से अधिक समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा संत समाज के मार्गदर्शन और सहयोग से कुंभ 2027 को दिव्य और भव्य रूप दिया जाएगा। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने पिथौरागढ़ में विभिन्न विभागों की समीक्षा की, जिले में विकास कार्यों की प्रगति को संतोषजनक बताया। उत्तरकाशी में 7 दिवसीय विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का समापन, बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी युवाओं को सम्मानित किया गया। और पौड़ी नगर के बहुप्रतीक्षित कंडोलिया इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ, खेल प्रतिभाओं को मिलेगा नया मंच। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम की पहली भक्ति रचना। हम आपको सुना रहे हैं अनूप जलोटा के स्वर में।

चंदुआत्मा की गाई सी भक्ति रचना के साथ भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, गढ़वाली माँ देहरादून बटी प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी सोनिया खुकशाल। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोले, संत समाज का मार्गदर्शन और सहयोगन हरिद्वार में आगामी कुंभ है दिव्य और भव्य रूप दिए जाल। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने पिथौरागढ़ में विभिन्न विभागों की समीक्षा कारी, जिला में विकास कार्यों की प्रगति थे संतोषजनक बताई। टीबी मुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य थे हासिल करना खुणे, देहरादून जिला में सही स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार जारी। और पौड़ी नगर का बहुप्रतीक्षित कंडोलिया इंडोर स्टेडियमों को शुभारम्भ, आधुनिक सुविधाओं सुसज्जित ये स्टेडियम थे खेल प्रेमियों और युवा खिलाड़ियों खुणे समर्पित करे गयू। और अब समाचार विस्तार बटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोले कि संत समाज का मार्ग निर्देशन और सहयोग हरिद्वार में आगामी कुंभ थे दिव्य और भव्य रूप दिए जाल। आज हरिद्वार में आयोजित विशाल संत सम्मेलन में उन बोले कि सनातन संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन में संत समाज को योगदान अतुलनीय। मुख्यमंत्री ने बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नए युग का साक्षी बनो च। उन बोले कि अयोध्या में श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और केदारनाथ धाम का पुनर्विकास जनी कार्य भारत की आध्यात्मिक विरासत थे नए ऊर्जा प्रदान करना छिन।
1: भारत की आध्यात्मिक चेतना का स्वर्णिम काल चल रहा है, सनातन का भी स्वर्णिम काल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, चाहे वो भगवान राम का मंदिर बन रहा हो, काशी का कॉरिडोर बनना हो या महाकाल लोक बनना हो, के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम ऑल वेदर रोने बननी हो, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण होना हो, शीतकालीन यात्रा चलनी हो, आदि कैलाश यात्रा चलनी हो, उन सभी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के अंदर अनेक काम हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर कुंभ का आयोजन भी होना है 2027 में, उसकी तैयारियां हम सभी संतों का सभी का आशीर्वाद लिया है, उनके मार्गदर्शन अच्छा मिला हो, अच्छा आयोजन हो।
0: ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने आज पिथौरागढ़ में विभिन्न विभागों की समीक्षा कारी, विकास योजनाओं और जन कल्याण कार्यक्रमों की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने बोले कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था थे सशक्त बनाने, स्वरोजगार का अवसर थे बढ़ावा देने और युवाओं और महिलाओं थे आत्मनिर्भर बनाने खुणे निरंतर प्रयास करनी च। ये खुणे आवश्यक च कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों का अनुरूप योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। श्री चौधरी ने सरकार की जनहितकारी योजनाओं को लाभ समाज का अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुँचाने खुणे अधिकारियों थे निर्देश दीन। उन बोले कि सीमांत पिथौरागढ़ जिला में विकास कार्यों की प्रगति संतोषजनक छ और अधिकांश विभाग पूरी तत्परता और जिम्मेदारी का दगड़ कार्य करना छिन। उन अधिकारियों थे विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखन, लंबित मामलों थे शीघ्र निस्तारण करण तथा दूरस्थ व सीमांत क्षेत्रों तक योजनाओं को लाभ पहुँचाने खुणे विशेष प्रयास करने का निर्देश दीन। प्रदेश में चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा सामान्य रूप से संचालित होनी च और कखी भी कोई व्यवधान नीच। रुद्रप्रयाग जिला का नगरासु स्थित गुरुद्वारा साहिब में गत 20 जून में हुई घटना का संबंध में जिलाधिकारी विशाल मिश्र ने बोले कि हेमकुंड साहिब यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी छ।

0: वाले कि कुछ माध्यमों में यात्रा प्रभावित होने संबंधी भ्रामक सूचनाएं प्रसारित होनी छी, जो कि वास्तविक स्थिति दगड़ कोई भी संबंध नीच। जिलाधिकारी ने स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं से अपील करी कि वो अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
1: नगरासु में जो घटनाक्रम हुआ है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पर स्थित गुरुद्वारे के अंदर ही आपसी विवाद हुआ था और इस विवाद को मॉनिटर करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन वहाँ पर मुस्तैदी से उपस्थित है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा और किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत, और शांतिपूर्वक यात्रा भी चल रही है, गुरुद्वारे के अंदर भी शांतिपूर्वक सभी जो अरदास है, लंगर है, आवाजाही है, वो सब कुछ चल रही है।
0: वकी पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने स्पष्ट कारी की श्रद्धालुओं और यात्रियों थे गुरुद्वारों में आवागमन सामान्य रूप से जारी छे। लंगर, अरदास और अन्य धार्मिक गतिविधियां भी नियमित रूप से संचालित होनी छी। उन लोगों थे अफवाह पर ध्यान न देने की भी अपील करी।
2: मैं आपको ये भी अपील करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। कल से लगातार यहाँ पर लंगर सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अरदास यथावत जारी है। सभी यात्री गुरुद्वारे में आ रहे हैं और अपनी यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें और केवल औपचारिक हैंडल से ही अपनी सूचनाएं प्राप्त करें।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो जे। ताजा समाचारों खोड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: टीबी मुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य थे हासिल करना खुणे देहरादून में स्वास्थ्य विभाग अभियान लगातार जारी छी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जिला में 189 उच्च जोखिम क्षेत्रों थे चिन्हित कैरी की 100% स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखी। निक्षय पोर्टल पर अभी तक लाखों संवेदनशील लोगों थे पंजीकृत किए जानु और 53% एक्सरे स्क्रीनिंग पूरी हुई है। उन्होंने बताया कि देहरादून में हर साल 3.5 से 4 हजार टीवी का सक्रिय मामला समण अंदीना, यहाँ खुणे बीमारी की समय पर पहचान और उपचार पर विशेष जोर दिए जानु। स्वास्थ्य विभाग ने द्वि एक्सरे नए मशीन की मांग करी जल स्क्रीनिंग की रफ्तार और बढ़े जा सक और टीवी का मामलों में प्रभावी कमी लाए जा सक।
4: हमारी एक्सरे मशीन है अलग अलग फैसिलिटी में है, तो वहाँ पे भी हम प्रयास कर रहे हैं कैसे किस तरीके से टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हम लोगों की ज्यादा स्क्रीनिंग उसमें कर सके। एक इशू थोड़ा सा रहता है कि वहाँ पे टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत क्योंकि सभी को फ्री किया जाना है, इसमें तो एक थोड़ा सा इशू उसमें रहता है कि किस तरीके से हम उन लोगों को वहाँ पे फ्री करते हैं, उसको स्क्रीन करें। उस संबंध में लगातार एमओएसयू को निर्देश दिए जाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो इंडोर मरीज हैं या जो भी वल्नरेबल ग्रुप के हैं उनका स्क्रीनिंग जो करें, तो वो उसको बढ़ाया जा रहा है और हम पूरा प्रयास निश्चित रूप से इसमें हम वृद्धि करेंगे और अच्छे रिजल्ट इसमें आएंगे। देहरादून में क्योंकि अब ऐसा महानगर है तो यहाँ निश्चित रूप से केसेस ज्यादा रहते हैं, तो एक समय पे अगर हम बात करें तो 3500 से 4000 के आसपास हमारे एक्टिव केसेस जो है वो रहते हैं।
0: पौड़ी का विधायक राजकुमार पौरी और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आज नगर का बहुप्रतीक्षित कंडोलिया इंडोर स्टेडियम को शुभारंभ करी। आधुनिक सुविधाओं लो सुसज्जित ये स्टेडियम थे खेल प्रेमियों और युवा खिलाड़ियों खुणे समर्पित करे गयु। ये अवसर पर श्री पौरी ने जिलाधिकारी की सराहना करते हुए बोले कि पौड़ी नगर थे नए पहचान देने में ऊंक महत्वपूर्ण योगदान छ। उन नागरिकों और खिलाड़ियों से स्टेडियम के संरक्षण और रखरखाव में सक्रिय योगदान देने को आह्वान करी। वकी जिलाधिकारी ने बोले स्टेडियम थे उच्च मानकों का अनुरूप विकसित करे गयु जो पौड़ी नगर खुणे एक प्रेरणादायक उदाहरण बनल।
5: अब इसका पूरा एक जीर्णोद्धार पिछले 4-5 महीने के अंदर कराया गया, जिसमें कि इसकी जो लाइटिंग है उसको सुधरवाया गया। हमारी जो वुडन फ्लोर था मेनली उसी का काम था, वुडन फ्लोर्स को, मैटिंग को, सभी को चेंज करके पुनः इसको एकदम नए जैसा बनाया गया और साथ में जो बाहर का भी सौंदर्यीकरण किया गया और अब वॉशरूम आदि का काम भी कराया जा रहा है। और पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी तो पानी आदि के भी कूलर्स और जो वाटर फिल्टर्स आदि सभी की व्यवस्था की गई है। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि मैक्सिमम बच्चे इससे लाभ अर्जित करें और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो पौड़ी के लोकल बच्चे हैं वो यहीं पे आकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और एक कोच भी हमारा कम था तो अभी कुछ समय पहले एक नया कोच भी बैडमिंटन

0: रखे गए हैं, जो एक यहाँ पे स्पेशली इंडोर के लिए रहेंगे और एक ऊपर राशि के।
1: उत्तराखंड राजस्व परिषद की आयुक्त रंजना राजगुरु ने चंपावत कलेक्ट्रेट में राजस्व विभाग का कार्यों की समीक्षा करी। उन राजस्व न्यायालयों में लंबित पुराना वादों को शीघ्र निस्तारण का निर्देश दींदे हुए बोले कि LR एक्ट का तहत 6 माह से ज्यादा भगत बटी लंबित मामलों थे प्राथमिकता का आधार पर निस्तारण सुरक्षित करे जा। आयुक्त ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना खुणे ई ऑफिस प्रणाली का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का विशेष बल दिया। आखिर में मुख्य समाचार एक दा फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोले, संत समाज का मार्गदर्शन और सहयोग अल हरिद्वार में आगामी कुंभ थे दिव्य और भव्य रूप दिए जाल। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने पिथौरागढ़ में विभिन्न विभागों की समीक्षा करी। जिला में विकास कार्यों की प्रगति थे संतोषजनक बताई। टीवी मुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य थे हासिल करना खुणे देहरादून जिला में स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार जारी। और पौड़ी नगर का बहुप्रतीक्षित कंडोलिया इंडोर स्टेडियम को शुभारंभ। आधुनिक सुविधाओं लो सुसज्जित ये स्टेडियम थे खेल प्रेमियों और युवा खिलाड़ियों खुणे समर्पित करे गयु। ये का दगड़ी ही गढ़वली में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त हुंदु। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुनेर सब श्रोतान के गोकुलक नमस्कार। श्रोताओं, आज एक बात एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन एक हम बात करूँ। खेती एक पर्यावरण अनुकूल यो प्राणी प्रणाली छे। यह एक मुख्य उद्देश्य कीटनाशकों पर ज़्यादा निर्भरता निर्धारण यह कम करण और जैविक यांत्रिक एवं सांस्कृतिक विधियों का संतुलन उपयोग कर भी फसलों के नुकसान से बचूं। यह एक पर्यावरण और मानव जो मनुष्य स्वास्थ्य से उद्विग्न लीजिए यह बहुत लाभदायक है। एकीकृत कीट व रोग प्रबंधनक जो प्रमुख जो तरीक छन फसलन के सुरक्षित धरना लीजिए विभिन्न विधियों एक साथ उपयोग करी जा। जब मैं फसल चक्र हम अगर बात करूं, हम अपने खेत में अगर एक बार कोई फसल बनूं तो दूसर बार हम उनके उन्हें कोई दूसर फसल उगुण चें। अगर हम बार बार एक का फसल को मैं बेना तो मैं एक पैदावार ला कम हो और जो उर्वरा शक्ति से माटे उल कम है जाए। जब ला हम गर्मियों में खेतन का जोतनु तो जुताई कम से कम गैर होने चाहें, ज़्यादा से ज़्यादा गैर होने चाहें ताकि जो माटा तली जो कीड़ छन और उनर अंड छन फपूत छन वो भली का ख़त्म है सको। प्रतिरोधी किस्म जैसे कि हमेशा हम अपन जो जाग में हम रुनू वहाँ का मौसम और माटक अनुसार बीमारी

इन थे लड़नग जी जो भल किस्मा बीच छन उनर हम उनका चुनाव करण चें। यांत्रिक और भौतिक विधि बात हम कनु खेते का हम नियमित भी निगरानी करण चें, इनकी देख रेख करण चें। रोगग्रस्त जो हमार जो पौधन में कीड़ वगैरह लग जानी या पात उनर खराब होने लग रही, तो वो पातन का हम उनके तोड़ बेर नष्ट कर देन चाहें, यानी कि उनका हटा देन चाहें। किड़न का आकर्षित करने लीजिए फिरोमोन ट्रैप पक इस्तेमाल करना चाहें। जैविक विधियों की बात हम करूँ, जैसी मित्र कीट हुनी जो मतलब फसल लीजिए भल हुनी, उनके लेडी बर्ड बोटल लग बढ़ावा देन चाहें। हानिकारक फबूद बचुना लीजिए बीजन के ट्राइकोडर्मा जस जैविक फपूदी नाशों उपचारित करने चाहिए, यानी कि उनके विल उपचारित कर भी एक इस्तेमाल करना चाहिए। रसायनों का इस्तेमाल केवल अंतिम विकल्प तौर पर, यानी कि जब हम उनको लागू कि अब जो कीट इसी ख़त्म नहीं होने, तब हम रसायनों का उपयोग करूँ या दवाई छिड़काव कर सकूँ। कोशिश ये रहना चाहिए कि जो हमारे पारंपरिक जो हमारे पास जैसे हम पहली बार नीमक छिड़काव कर बीर और गौमूत्र छिड़काव कर बीर हम अपनों फसल का पहली बटी बचाते उनका पारंपरिक ढंगल, तो वो विधि ना हम उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे खेत में जो लोग पैदावार हो वो भल हो। और जैविक ढंगल अगर हम खेत करूँ तो और भल छे, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य लीजिए लाभदायक छे। रसायनों का उपयोग हम बहुत कम करण छे। तो यो तो छे आजक बात। कार्यक्रम में आपको सुनूँ शंकर प्रीति गई यो गीत।

नर जो बाल्छ पक्कू होने चाहें उमें पानी बारिश का पानी भीतर नहीं घुसना चाहें ताकि जमीन गिल नहीं हो। और हमेशा भी साफ सफाई हम उनका ध्यान देना चाहें, गोबर है जहाँ तो हम उनका हटा देना चाहें और फर्श में जो भी बिछुण वाले जाग छ वहाँ या तो लकड़ा बुराद या हम पात वगैरह डाल लूँ तो भी बारिश में मतलब भी ज़्यादा भी लीजिए हम उनका थोड़ा सा ध्यान धर्म बढ़ो तो चुनी या लकड़ा बुराद उम्र डालना चाहें। कीड़ माखन बटी बचुना लीजिए उनका साफ साफ सफाई ध्यान धरना चाहें। और दूसर मच्छरों बटी बचना लीजिए ब्याह बखत उन्होंने धू लगा दी और नियमक जो पाच हैं उन्होंने धू उनका लगना चाहें जो मार माख मच्छर जुले छन वो बेटी हट जाए। और स्वास्थ्य हमेशा भी उन्हें स्वास्थ्य हम उनका ध्यान देना चाहें। टीकाकरण बारिश शुरू होना है पहले जो हमारे नज़दीक में पशु चिकित्सक छन जो गुरबासी डॉक्टर छन उन्होंने संपर्क कर भी गलघोटू लंगड़ा बुखार और खुरपक्का मुँहपक्का जैस जो बीमारी छन उनसे बचना लीजिए उनके टीको लगवा लेना चाहें। जब ल हम दूध निकाल लूँ तो हमेशा ये बात ध्यान देना चाहिए पहले तो हमारा हाथ बिल्कुल साफ सुथर होना चाहिए और जो हमारे दुधारू पशु छन दूध देने वाले पशु छन उन थनन का भली का साफ कर लेना चाहिए वी बात दूध निकालना चाहिए। और हसको तो पोटेशियम परगनेट जो लाल दाव छ वी घोलल उनका साफ कर लेना चाहिए ताकि थनेला रोग नहीं हो। बीमार पशु का अगर हमारे गोठ में ज़्यादा पशु छन तो अगर कोई पशु में बीमारी छ तो उनके लक्षण तुरंत और जो पशु छन उनथे उनकटी अलग कर देना चाहिए। और हमेशा ताचार बारिश मौसम में भीगी हुई सड़ी हुई फंगल लागी चार नहीं खाना चाहिए ताकि उनमें कोई बीमारी नहीं लगो। और मिनरल फिक्सर जो छ मिक्सर जो छ जो मौसम में घासक में पोषक तत्वों कमी है जाए तो चार में नियमित रूप मिनरल मिक्सर लगभग 50 ग्राम प्रतिदिन अवश्य उन्हें चार में मिलना चाहिए। साफ पानी पीने के लिए हमेशा साफ पानी और ताज पानी बारिश और गंद पानी गुरबासन का नहीं पीना चाहिए। गर्मी में बटी बचने लीजिए कि उमस ले हैं तो उनको भिजन नहीं देना चाहिए। और ठंडी हवा लीजिए दरवाजन पर या बुरिया तिरपाल लगना चाहिए। तो थोड़ा सा हम उनके अपन जो जानवर छन जनुत बटी हम दूध हम ढीनू तो उन्हें का हम उनके लिए देखभाल उन्हें करण चाहें और तब वो क्योंकि वो बेला नहीं सकन और हम उनके वो दूध और हम उनके खेत लीजिए गोबर गौमूत्र उन फटी मिलूँ तो हम लोग फर्ज बढ़ो कि हम उन्हें देख रेख करूँ। आओ कार्यक्रम में आप एक गीत सुन लूँ गायिका छन संगीता ढोडियाल।

श्रोताओं, संगीता ढोटियाला गई यो गीतगत दगड़ आज ग्राम जगत कार्यक्रम इत्तिक संपन्न हूँ। प्रस्तुति छी संजय जोशी। गोकुल का आज्ञा दियो। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Cachito.
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं दीपा सिंह।
3: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
4: जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आप दशकों से काम कर रहे हैं पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में। जिस वक्त आपको पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, उस वक्त आपके मन में क्या भाव थे?
4: बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि बहुत छोटे छोटे काम करके भी इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, भारत सरकार का ध्यान छोटे छोटे कामों की तरफ भी है, लेकिन जो परिणामकारी काम समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जो हम जन भागीदारी के माध्यम से कर रहे हैं बैतूल जिले में पिछले 3 दशक से, समाज ने उस काम को स्वीकार किया है, उसके परिणाम आए हैं और उसको संज्ञान में लेकर के, और जब ये घोषणा हुई तब बहुत प्रसन्नता हुई। उस दिन भी मैं, माँ नर्मदा जयंती थी, माँ नर्मदा जी की सेवा में, स्वच्छता में हम सब हमारी टीम के साथ लगे हुए थे और इसलिए बहुत प्रसन्नता हुई सुनकर के।
3: आपको समाज सेवा की सीख कहाँ से मिली?
4: मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ, मेरे जन्म जो है वो राजगढ़ जिले के छोटे से गाँव में हुआ है और इसलिए ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण और साथ में ही जो पारिवारिक हमारा बैकग्राउंड है वो किसान परिवार का होने के कारण हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे सभी परिवार के लोग ये उसी कार्य में लगे हुए हैं, खेती में, जल सुरक्षा में, पौधे लगाने में। मैं देखता था मेरे दादाजी जब गाय चराने के लिए जाते थे तो कोई भी ऐसा छोटा पौधा दिखता था तो उसमें कांटे लगा देते थे, कुएं में जाते थे, तालाब में जाते थे तो पहले उसमें से कोई कचरा निकाल करके बाहर करते थे और उसके बाद फिर उसके पानी का उपयोग करते थे। तो बचपन से ही अपने पूर्वजों की सीख जो मिली थी, बाद में फिर समाज कार्य के लिए गए तो समाज ने फिर सारी बातें अपने आप ही सीखने को मिली, तो स्वाभाविक रूप से फिर जो बचपन से सारी बातें थी वो आगे चल करके काम आई और पर्यावरण की सुरक्षा, जल की सुरक्षा और समाज सेवा के लिए, शिक्षा को लेकर के, ग्राम विकास को लेकर के फिर बैतूल जिले को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और उसी में फिर अभी तक लगे हुए हैं।
3: बहुत ही अच्छी बात कही कि आपने ये सीख जो है अपने घर से ही ली है। सर, जल संरक्षण एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, लेकिन आपने सामाजिक जिम्मेदारी से कैसे बनाया?
4: बिल्कुल, मैं जब बैतूल जिले में 91-92 में गया तो वहाँ का जो जिले में जब भ्रमण किया तो ये ध्यान में आया कि बैतूल जिले में वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होती है, 60 इंच के लगभग वहाँ बारिश होती है, लेकिन उसके बाद भी, और वहाँ का जो समाज है, विशेषकर जो जनजाति आदिवासी समाज है, वो दीपावली के बाद, खरीफ की फसल के बाद में ज्वार मक्का लेकर के उसके बाद फिर पलायन कर जाता था, क्योंकि उसके बाद कोई काम था नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या थी, जब लोगों से बात की हमने फिर पूरे जिले में और 2-3 वर्ष लगातार अलग अलग माह में पदयात्रा की गाँव की वहां पर, और उसके बाद लोगों से चर्चा में ध्यान में आया कि पानी गिरता तो पर्याप्त लेकिन रुकता नहीं है और इसलिए पानी को रोकने के छोटे छोटे प्रबंध किए जाए। बड़े बड़े काम तो सरकार करती है, डैम बनाने का, बड़े तालाब बनाने का, तो ग्राम स्तर पर क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां बहुत बड़ी संरचना बनाना ये संभव नहीं है, इसलिए छोटे छोटे काम हमने प्रारंभ किए। वहाँ के जो बरसात के बाद जो नदी नाले बहते थे उसमें बोरी बंधान के माध्यम से छोटे छोटे स्टाफ डैम बना करके, और वो हमने लोगों के सहयोग से काम किया। जब हम एकल विद्यालय भी वहाँ पर 400-500 गांव में चलाते थे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उन बच्चों को लेकर के, अभिभावकों को लेकर जब हमने काम किया और जब ध्यान में आया कि एक छोटे से बोरी बंधान बनाने से 15 से 20 एकड़ की फसल सिंचित हो सकती है, खेती और की जा सकती है, तो लोग फिर उस अभियान में जुटे और हमने पूरा एक अभियान महोत्सव के रूप में पूरे जिले में प्रारंभ किया। आज बैतूल जिले के 500-600 से ज्यादा गांवों में लोग स्वतः होकर के उस काम को करते हैं, क्योंकि हमने 2 दशक तक लगातार उस काम को किया है और उसके कारण फिर जो लोग पलायन कर जाते थे उनके एक एक 2-2 एकड़ की जब खेती होने लगी तो फिर पलायन भी कम हुआ और उसके साथ लोगों को उसके माध्यम से रोजगार भी मिला, गाँव में जलस्तर भी बड़ा, जिन गांवों में फरवरी में, मार्च में ही पानी

0: समाप्त हो जाता था, हैंडपंप सूख जाते थे, वो फिर मई जून तक भी और उस गांव में पानी ठहरने लगा और इसलिए रोग भी रुकने लगे।
1: मोहन सर, आपने एकल विद्यालय की बात कही है, कैसे आपने बच्चों को एडुकेट किया है, जो वहाँ के पेरेंट्स थे वो अभिभावक कैसे आपके साथ जुड़े?
0: जब मैं बैतूल जिले में गया उस समय अनेक गाँव में स्कूल नहीं थे, बाद में तो फिर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब जगह हो गए विद्यालय, लेकिन उस समय नहीं थे। तो हम गाँव में जाते थे तो बच्चे अशिक्षित थे, निरक्षर थे, पूछते थे कि सबसे बड़ी आपके गाँव की समस्या क्या, एक बार हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए। तो हमने फिर विद्या भारती की जनजाति शिक्षा के माध्यम से, भारत भारती संस्था जो हमारी है उसके माध्यम से, उसी गांव के कम पढ़े लिखे या जितना भी पढ़ा लिखा था उसका चयन किया, उसको हम ट्रेनिंग देते थे 10 दिन की। ट्रेनिंग में उसको अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से फिर गाँव में सिंगल टीचर स्कूल, उसको एकल विद्यालय इसलिए कहते हैं कि एक शिक्षक रहता है और वो गाँव के बच्चों को पढ़ाता है। तो उसके माध्यम से फिर गाँव में ये विद्यालय प्रारंभ किया और छोटे छोटे बच्चे जो बकरी चराने जाते थे या काम करने जाते थे उनको सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान करना, उनको संस्कार की कुछ बातें बताना, उनको उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए योगासन व्यायाम कुछ बताना, देशभक्ति के गीत है, परंपरागत जो हमारी गोंडी संस्कृति, कोरकू संस्कृति के जो गीत है उसी भाषा में उनको बताना, और धीरे धीरे फिर बच्चों का शिक्षा के रूप में विकास हुआ, फिर स्कूल में उनका एडमिशन हुआ, उनमें से कई बच्चे जो है उच्च शिक्षा की ओर गए हैं। हमने उसके लिए फिर 2-3 छात्रावास भी प्रारंभ किए क्योंकि दूर के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, तो फिर हमने 3 जनजाति बच्चों के अलग अलग छात्रावास भी प्रारंभ किए, उसमें भी बच्चे रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं, आज उच्च शिक्षा को लेकर के स्वावलंबी भी हुए हैं और सरकारी जॉब में भी गए हैं, कुछ अपना स्वयं का भी काम कर रहे हैं।
1: सर, आदिवासी और जनजातीय समाज को सशक्त बनाने में भी आप काफी सहयोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो क्या मुख्य धारा से जुड़ गए हैं या हमें और प्रयास करने की जरूरत?
0: हमारा जो जनजातीय आदिवासी समाज है प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है और इसलिए उनको कोई चीज बताना कि प्रकृति की रक्षा कैसे करना, ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो हमने तो उनसे ही जाकर के सीखा कि कैसे प्रकृति का संरक्षण किया, क्योंकि वो तो हजारों वर्षों से प्रकृति के बीच में रह रहे हैं और जो जंगल सुरक्षित है वो उन्हीं के कारण सुरक्षित है। हमने शहर में रहकर के तो जंगल खत्म कर दिए, गांव में जंगल खत्म कर दिया, वो प्रकृति प्रेमी होने के कारण, प्रकृति पूजक होने के कारण, और इसलिए उन्होंने नदियों को और सारी जो सुरक्षा करके रखी हमारे जीव जंतुओं को। तो लेकिन उनमें शिक्षा का अभाव था, आधुनिकता जो थी वो उसका अभाव था, उसको लेकर के हम उनके बीच में गए, जैविक खेती को लेकर के, ग्राम स्वावलंबन को लेकर के, कुछ गांव में हमने होम स्टे प्रारंभ किए जिसके माध्यम से लोग वहां आकर के रुकने लगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। हमने एक अन्नपूर्णम मंडपम योजना बनाई कि घर का जो पानी हम उपयोग करते हैं वो जो बहके जाता है उसमें ही हम सब्जी भाजी लगाए, हमने कुछ बीज उनको दिए और ऐसे घर घर में पीछे जो है वो इस प्रकार की सब्जियां लगा करके एक स्वावलंबन की दिशा में वो आगे बढ़े। जैविक खेती के माध्यम से कैसे, क्योंकि गोपालन और पशुपालन बड़ी मात्रा में वहां होता है, तो जैविक खेती कैसे कर सकते हैं ताकि बाजार से जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशक जो महंगा खरीदते हैं उससे हमको छुटकारा मिले, इस दिशा में प्रयास किया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास किए जिससे उनको एक आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से और एक सशक्त उनको एक काम मिला गांव में, और जो पलायन था, फिर सरकार के बीच बीच में अनेक प्रकार की योजनाएं आई जिससे बिजली को लेकर के, पानी, सड़क सब गाँव गाँव तक पहुंची, उसमें हमारा भी काम छोटा छोटा ही गिलहरी की तरह हमने भी उसमें किया जिससे समाज को और एक स्वावलंबी समाज बनने में उनके माध्यम से उनको एक लाभ मिला।
1: जल गंगा अवतरण आपका अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाया है, आप इस अभियान की सोच और प्रभाव के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं।
0: बिल्कुल, जब हम उन लोगों के बीच में गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी गांव की समस्या क्या है, तो हमारे गांव की समस्या पानी है। तो ये समस्या कब से है, तो ये 20-25-30 साल से हुई है। इसके पहले क्या था, बोले पहाड़ों पर जंगल था घना, जब जंगल समाप्त हुआ धीरे धीरे तो फिर वो पहाड़ जो है वृक्षहीन हो गए, तो जो नदी नाले बहते थे वो भी धीरे धीरे बंद हो गए, और इसलिए पहाड़ों पर पानी नहीं रुकता है, और इसलिए पहाड़ों पर पानी रोकना है उसके लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो फिर हमारे ध्यान में आया कि गंगा जी का अवतरण हुआ था, कैसे हुआ था, तो भगीरथ गंगा लेकर के आए, इसी कंसेप्ट को लेकर के फिर हमने गंगा अवतरण अभियान बैतूल जिले में प्रारंभ किया। सबसे पहले वहाँ की जो सोना घाटी उस पहाड़ी को हमने एक मॉडल के रूप में बनाया, वर्षा का जल कैसे रुके उसके लिए हमने फिर खंतियां खोदना प्रारंभ की, जहाँ जैसी भौगोलिक संरचना थी, कहीं 6x2x2 की, कहीं 10x2x2 की, और उसके लिए हमने समाज को आह्वान किया कि हम सब, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और अगर ये पहाड़ी पर पेड़ नहीं है तो हमारे यहाँ जल भी नहीं बचेगा, क्योंकि पहाड़ियां हमारे यहाँ पर जितने ही है ये सब हमारे ओवरहेड टैंक के पानी की टंकियां हैं, जैसे पानी की टंकियां शहरों में होती है उसमें पानी भर देते हैं फिर बाद में सप्लाई करते हैं। हाँ। तो ये पहाड़ हमारे पानी की टंकियां हैं, इसमें वर्षा का जल भर जाता है बाद में फिर हमको मिलता है, तो इसलिए इसको जल से भरना है। तो धीरे धीरे हमने खंतियां खोद करके उसमें वर्षा का जल रोका, वहां पर पौधारोपण किया और उसके माध्यम से धीरे धीरे अपने आप 3-4 वर्षों में जहां 1000 फुट पर भी पानी नहीं था वहां 100 फुट के नीचे 60 फुट पर भी पानी उस जगह पर आ गया। तो एक परिणाम था उसका, ये गंगा अवतरण था कि उसके गंगा जी को रोको और उसके बाद धीरे धीरे फिर नदी नाले के माध्यम से कुएं बावड़ी से उसका पानी हम सबको मिलेगा। और फिर ये काम पूरा हमने 75 पहाड़ियों पर बैतूल जिले में ये काम किया। मोदी जी का जो आह्वान था कैच द रेन, ये महामंत्र है मोदी जी का, जो उन्होंने कहा कि वर्षा के पानी को जहां गिर रहा है वहां पकड़ लो, 10 मीटर से ज्यादा अगर वर्षा का जल बह गया तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है।
2: जाता है, और इसलिए 10 मीटर के पहले ही कोई संरचना बना दो, कोई पेड़ लगा दो, कोई खंती खोद दो, कोई घास लगा दो, कोई पत्थर से उसको रोक दो, तो फिर वर्षा का जल धीरे धीरे जमीन में जाने लगता है, उसकी गति कम होती है, तो तेज हो जाएगी तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि वर्षा की पहली बूंद जहां गिरे वहां उसका प्रबंधन करना, यही जल प्रबंधन का अनाराम है। और हमने वहां के स्थानीय जनजाति समाज, आदिवासी समाज के साथ मिलकर के यही काम बैतूल जिले की पहाड़ियों पर किया, यही गंगा उत्तरण अभियान है।
1: आपसे चाहेंगे कि कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स आप हमारे श्रोताओं को दें, जिससे वो भी इस बार बारिश आने वाली है, गर्मी आएंगी फिर बारिश आएगी, तो वो भी जल का संचयन कर सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तीन उपाय हमको करना पड़ेंगे। एक तो वर्षा के जल का संरक्षण करना पड़ेगा कि वर्षा का जल कैसे अधिक से अधिक जमीन के अंदर जाए, फिर जो संरक्षित जल है उसका समुचित उपयोग करना पड़ेगा, और जो उपयोग किए हुए जल का पुनर्उपयोग करना पड़ेगा, कितना हम रीयूज कर सकते हैं पानी का। ये तीन बातें समाज को आज सिखाने की आवश्यकता है। केवल एक काम करेंगे तो जल संरक्षण नहीं होगा, जल प्रबंधन नहीं होगा, ये तीनों बातें। सबसे पहले हमारे यहाँ क्या है कि बारिश मुश्किल से 100 दिन होती है, और उसमें भी 10 दिन में ही 90-80% बारिश हो जाती है। बारिश का जो पीरियड है तेज बारिश का बहुत कम है, 8-10 दिन 12 दिन ही हमारे यहाँ पर है, और इसलिए उतने में ही हमको जल प्रबंधन करना है। इसलिए हमको उपाय करना पड़ेगा कि पानी जहाँ गिरता है हमारे घर का पानी घर में रुके, उसके लिए हमारी घर पे की छत 1000 फुट की भी है तो उसमें 1.25 लाख लीटर पानी उसमें गिरता है, तो कैसे हम उसको कोई सोक पिट बना करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना करके हमारे घर में ही कहीं पर, आज हम घर बनाते हैं तो इतनी सारी चीजें बनाते हैं, तो अपने आंगन में या घर के पीछे कहीं भी एक ऐसा स्थान बनाए जिसमें हमारी छत का पानी हम जमीन के अंदर उतार दें, तो पानी की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। फिर जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उसका उचित रूप से उपयोग करें, कि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो जितना चाहे उतना मन चाहे उपयोग करें, ऐसा नहीं, अनुशासन पूर्वक आज जल का उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर आपने जिस पानी का उपयोग किया उसको सिंचाई के रूप में, गमलों के रूप में, अन्य अन्य रूप से उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसका पुनर्भरण कैसे कर सकते हैं, कुल मिलाकर के हमको आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा समाज जो है इस दिशा में आगे आए, और छोटे छोटे काम अपने गांव की, कोई पास की पहाड़ी होगी, कोई पास का क्षेत्र होगा, किसान अपने खेत में मेड़ बंधन करें, गांव का पानी गांव में रुके, इसलिए तालाबों का हमारी जो जल शक्ति मंत्रालय है मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है, उसको बना करके गांव गांव में तालाब बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसके माध्यम से अपना रोके, फिर पहाड़ का पानी पहाड़ में रोके, खेत का पानी खेत में रोके, नदी का पानी नाले का पानी उसमें रोके, तो ये छोटे छोटे उपाय अगर हम समाज के साथ मिलकर के करते हैं और व्यक्तिगत स्तर भी करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। एक आपने 6x2x2 की खंती भी अगर खोद दी है कहीं पर और उसमें वर्षा का जल जा रहा है तो 30-35 हजार लीटर पानी केवल उसके माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा। हम छोटा सा काम करेंगे तो उसका एक परिणाम जो है बड़ा होगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे मैंने आपको कहा कि सोनाघाटी की पहाड़ी है, वो पहाड़ी वो है, कभी आपने भवानी प्रसाद मिश्री जी का नाम सुना होगा, उन्होंने कविता लिखी थी सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनबने जंगल, वो उसी पहाड़ी पर उन्होंने 1939 में बैठ करके लिखी थी। और जब 2014 में उनका जन्म शताब्दी वर्ष आया तो हमने उनका जन्म शताब्दी मनाया, तो जब उनके बारे में पढ़ा और उस पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वो वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियां कुछ बची थी। तो हमने उसी पहाड़ी को पहले कहा कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को अगर सही श्रद्धांजलि देना है जन्म शताब्दी वर्ष में तो इस पहाड़ी को फिर से हरा भरा करेंगे। और इसलिए बैतूल के लोगों को, आसपास के गांवों को आह्वान किया कि ये सोनाघाटी की पहाड़ी हमारी धरोहर है, इसको हम बचाएंगे। और उसी पहाड़ी पर गंगा उत्तरण अभियान प्रारंभ किया और वहां पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई, और उसके बाद फिर 32000 से ज्यादा उसमें पौधे लगाए, जो परंपरागत पौधे थे उनका संरक्षण किया। आज लाखों की संख्या में उस पहाड़ी पर पौधे फिर से हरे भरे हो रहे हैं। 2-4 साल में फिर से कह सकते हैं सतपुड़ा के घने जंगल घूमते अनबने जंगल। तो ये काम हम छोटे छोटे समाज के माध्यम से कर सकते हैं, और ये पूरा हजारों लोगों ने अभियान में पूरा अपना योगदान दिया।
1: बहुत अच्छी बात कही है, चूंकि आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं तो आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति चतुर्मास, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
0: जी बिल्कुल, चतुर्मास जो है प्रकृति को समर्पित, गांव को समर्पित, हमारी नदियों को लेकर के, परंपरागत जो हमारी पद्धति थी उसको लेकर के, कि नदियां कैसे बनती है और लोग पानी का संरक्षण कैसे करते थे और हमारे पूर्वजों की क्या परंपरा थी, उसको लेकर के ही उसमें कुछ कविताएं लिखी है। उस कृति को मध्यप्रदेश की साहित्य अकादमी ने और दुष्यंत कुमार पुरस्कार से भी सम्मानित किया है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक प्रकार का एक काव्य संग्रह है जो प्रकृति को समर्पित है।
1: आप जन अभियान परिषद में भी उपाध्यक्ष हैं, भारत भारती शिक्षा संस्थान से भी जुड़े हैं, शासन शिक्षा और समाज सेवा, इन तीनों भूमिकाओं को आप कैसे देखते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये एक ही काम है, ये एक प्रकार से सेवा की त्रिवेणी है। जब मैं बैतूल जिले में यह काम कर रहा था, मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान में आया होगा कि यह काम पूरे प्रदेश में होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष बना करके पूरे प्रदेश में काम करने का अवसर दिया है। और पिछली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो अभियान है जल गंगा संवर्धन अभियान,
2: उसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश में हजारों गांवों में जाकर के इस अभियान को लिया और उनके नेतृत्व में हमने 40 लाख लोगों को जनभागीदारी से इस नेटवर्क से लोगों को जोड़ा। हमने पुरानी 2200 बावड़ियों को स्वच्छ किया, 7000 कुओं को साफ किया, नदियों के तट स्वच्छ किए और पुरानी जल संरचनाओं को हमने साफ करके समाज के माध्यम से नई जल संरचनाओं का निर्माण किया। अभी

0: पूरे प्रदेश में हमने उसी के माध्यम से 7,000 से ज्यादा बोरी बंधान बना करके वर्षा के जल को रोकने का काम किया है, शिक्षा के माध्यम से और पर्यावरण के माध्यम से और समाज सेवा ग्राम विकास को लेकर के, और ये जो तीनों बातें हुई है मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का काम करने का अवसर दिया है। पहले एक जिला हमारे कार्यक्षेत्र में था, पूरे 55 जिलों का काम उन्होंने दिया।
1: बिल्कुल सर, आपके लिए परिवार और गाँव आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं?
0: परिवार तो हमारा मूल आधार है हमारे समाज का। जब तक कुटुंब व्यवस्था हमारे समाज में है तब तक ही हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति का है, हिंदू संस्कृति का है, वो अक्षुण है, क्योंकि हमको जितने संस्कार मिलते हैं सब प्रकार के वो हमारे परिवार में मिलते हैं। चाहे जैसे मैंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का, जल का जो मुझे संस्कार मिला वो अपने परिवार के माध्यम से मिला, कि घर में शाम के समय आज भी आप देखेंगे तो बड़े बूढ़े जो है वो बच्चा को अगर पेड़ को हाथ लगाता है तो पेड़ को हाथ नहीं लगाना, इस प्रकार का वो करते हैं रात को। तो ये परिवार से ही सारी चीजें सीखने को मिलती है, कैसे बड़ों का आदर करना है, कैसे अपनी परंपराओं का निर्वहन करना है, ये कुटुंब व्यवस्था और ये ग्राम में आधारित जो भारत की व्यवस्था थी कि कैसे एक परिवार की तरह पूरे गांव रहता है। आप देखेंगे प्रत्येक गांव स्वावलंबी था, किसी गांव को केवल नमक खरीदने के लिए गांव के लोग जाते थे, बाकी सारी चीजें गांव में पैदा होती थी, सारे कारीगर गांव में थे। 4 महीने भी अगर गांव के बाहर नहीं जाता तो उसकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। भारत कृषि प्रधान होने के साथ साथ उद्योग प्रधान देश था, गांव गांव में किसी न किसी प्रकार के कोई न कोई उद्योग होता था, कहीं पर कोई सामान बनता था, कहीं पर कोई सामान बनता था और उसका विदेशों में जाकर के व्यापार होता था। और इसलिए अंग्रेजों के आने के पहले हमारी जो परिवार व्यवस्था और ग्राम व्यवस्था ये बहुत सुदृढ़ थी सारी दुनिया में। आज फिर से हमको उसी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और इसके लिए जो एक अभियान चला कि कुटुंब कैसे फिर से सुदृढ़ बने, कैसे संयुक्त परिवार हमारे हो, ताकि ये सारी बातें जो सहज हमको सीखने को मिल जाती थी परिवार में वो आज उसके लिए हमको अलग से प्रशिक्षण देना पड़ रहा है हमारे बच्चों को। पहले सारी चीजें परिवार में सीखने को मिल जाती थी, इसलिए उन गांवों को फिर से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने बैतूल जिले का एक बाचा गांव को हमने उस रूप में लिया है, वो जनजाति गांव है। तो एक अच्छा गांव कैसे बन सकता है अपने गांव के लोगों के माध्यम से, तो बाचा गांव को सोलर ग्राम, जल ग्राम, आज पर्यटन गांव के रूप में गांव के लोगों के सहयोग से एक आदर्श गांव के रूप में उसकी ख्याति हुई है। तो ऐसे गांव हम फिर से बनाए ताकि देश दुनिया हमारे गांव को देखने के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है परिवार को, तो वाकई घर परिवार से ही सीखे तो बहुत अच्छी बात रहती है। साथ ही सर, जो युवा वर्ग है वो कैसे इस जल संरक्षण पर्यावरण की दिशा में, काफी युवा कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन जो और जुड़ना चाहते हैं छोटे छोटे प्रयास क्या कर सकते?
0: बिल्कुल, युवा इस दिशा में अभी पिछले एक दशक से जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है, एक तो केस दरेन को लेकर के, फिर एक पेड़ माँ के नाम को लेकर के, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे युवाओं का और महिलाओं का, मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। अभी हमने नवांकुर सखी जो अभियान चलाया था उसमें हजारों महिलाओं ने उसमें योगदान किया था, और अभी हमने युवा जन अभियान परिषद के माध्यम से जब काम प्रारंभ किया तो उसमें हजारों की संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि पहले युवा जो है वो अपना जन्मदिन मनाते थे तो कहीं केक काटते थे, कहीं हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया में देखता हूँ कि अधिकांश युवा अपने जन्मदिन पर कोई पौधा लगाते हैं, कोई वृद्धाश्रम में जाकर के भोजन कराते हैं या कोई गौशाला में जाकर के गोग्रास देते हैं। तो ये प्रकृति के प्रति हमारे युवा आगे आ रहे हैं और युवा जो है वो भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, मोदी जी बार बार कहते हैं, और इसलिए युवा जिस दिशा में जाएंगे उधर पूरा समाज जाएगा। और आज हमारा युवा अपनी प्रकृति को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, अपने समाज को लेकर के जागरूक हुआ है निश्चित रूप से, और इस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। हमारे हर अभियान में सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी का रहता था तो वो युवाओं का और महिलाओं का ही बड़ी मात्रा में रहा है, और आगे भी युवा इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने स्वरोजगार को लेकर के आगे बढ़े, उद्यमी को लेकर के आगे बढ़े, लेकिन साथ में प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण इसको लेकर के भी अपने जीवन का एक भाग इसमें रखें, और जीवन व्यवहार में हमारे प्रकृति और जल संरक्षण ये रहे। छोटे छोटे काम करके हम इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने घर में हम पानी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, जितना भी बजट हम अपने घर का बनाते हैं तो पानी का भी बजट बनाए कि हमारे एक व्यक्ति को 60 लीटर पानी लग रहा चाहिए, 60 से 100 लीटर, उससे ज्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आज समाज को, प्रशासन को, सबको जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम कैसे अपने भूगर्भ जल को बचा सकते हैं और वर्षा जल को बचा सकते हैं, इसके लिए छोटे छोटे उपाय हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मोहन जी, आपने बहुत ही सुंदर बात कही कि पानी का बजट बनाना पड़ेगा, पानी का सदुपयोग बहुत जरूरी है। मोहन जी, आपके अनुभव और विचार निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को जल संरक्षण और उनके प्रति सोचने के लिए जरूर कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
0: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी दीपा सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: 7:45 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कुमाऊनी भाषा में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचार नक दगड़ी मैं कुसुम पिलखवाल। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को संत समाजक मार्गदर्शन और सहयोगल हरिद्वार में आणवल कुंभ के दिव्य और भव्य रूप दिए जल। ग्राम विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी पिथौरागढ़ में अलग अलग विभागों की समीक्षा ले करी जिलमा विकास कामों प्रगति के संतोषजनक बता। टीवी मुक्त उत्तराखंडक लक्ष्य के हासिल कर नकली जी देहरादून जिलमा स्वास्थ्य विभागक अभियान लगातार जारी और पौड़ी नगरक बहुप्रतीक्षित कंडोलिया इंडोर स्टेडियमक शुभारंभ। आधुनिक सुविधाओं सुसज्जित यो स्टेडियम के खेल प्रेमियों और युवा खिलाड़ियों के समर्पित करीगो। और अब समाचार विस्तारल सुनो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल को की संत समाजक मार्गदर्शन और सहयोगल हरिद्वार में आणवल कुंभ के दिव्य और भव्य रूप दी जाल। आज हरिद्वार में आयोजित विशाल संत सम्मेलन में उन्होंने को की सनातन संस्कृति की सुरक्षा और तरक्की में संत समाजक योगदान अतुलनीय छो। मुख्यमंत्री को की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सांस्कृतिक पुनर्जागरणक नई युग कक साक्षी बनो। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और केदारनाथ धाम का पुनर्विकास जस काम भारत तक आध्यात्मिक विरासत के नई ऊर्जा प्रदान करने।
2: भारत की आध्यात्मिक चेतना का स्वर्णिम काल चल रहा है, सनातन का भी स्वर्णिम काल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, चाहे वो भगवान राम का मंदिर बन रहा हो, काशी का कॉरिडोर बनना हो या महाकाल लोक बनना हो, के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम ऑल वेदर रोने बननी हो, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण होना हो, शीतकालीन यात्रा चलनी हो या आदि कैलाश यात्रा चलनी हो, उन सभी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के अंदर अनेक काम हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर कुंभ का आयोजन भी होना है 2027 में, उसकी तैयारियां हो रही। सभी संतगणों का सभी का आशीर्वाद लिया है, उनके मार्गदर्शन अच्छा मिला हो, अच्छा आयोजन हो।
1: ग्राम विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी आज पिथौरागढ़ में अलग अलग विभागों की समीक्षा कर बेर विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत जायजा ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्त बनान, स्वरोजगारक अवसरों के बढ़ावा देने और युवाओं में श्रेणियों के आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम करने यह के लिए आवश्यक छु कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों अनुरूप योजनाओं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करूं। श्री चौधरी सरकारक जनहितकारी योजनाओं का लाभ समाजक आखिरी मनखी ताले समयबद्ध पारदर्शी और प्रभावी ढंग पहुंचाणक अधिकारियों के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीमांत पिथौरागढ़ जिल में विकास कार्यों की प्रगति संतोषजनक छो और ज्यादातर विभाग ये पूर्व तैयारी और जिम्मेदारी दगड़ी काम के कर नहीं। उन्होंने अधिकारियों के विकास कामों में गुणवत्ता बनाए रखन, लंबित मामलों के जल्द निस्तारण करण और दूरस्थ व सीमांत क्षेत्रों ताले योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश ले दी। प्रदेश में चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा सामान्य रूप से संचालित होने और केले को व्यवधान नीचू। रुद्रप्रयाग जिला नगरासू स्थित गुरुद्वारा साहिब में गत 20 जून के हई घटना के संबंध में जिलाधिकारी विशाल मिश्राल कौकी हेमकुंड साहिब यात्रा पूर्व तरीकल सुरक्षित और सुचारू रूपल जारी छू। उन्होंने कौकी कुछ माध्यमों यात्रा प्रभावित होनक संबंधी भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करी जा नहीं, जैक वास्तविक स्थिति कोले संबंध नाती। जिलाधिकारी स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं ने अपील करी कि वो अफवाहों पर विश्वास नहीं करो और केवल प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसे करो।
3: नगरासू में जो घटनाक्रम हुआ है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पर स्थित गुरुद्वारे के

0: अंदर ही आपसी विवाद हुआ था, और इस विवाद को मॉनिटर करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन वहां पर मुस्तैदी से उपस्थित है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत, और शांतिपूर्वक यात्रा भी चल रही है, गुरुद्वारे के अंदर भी शांतिपूर्वक सभी जो अरदास है, लंगर है, आवाजाही है, वो सब कुछ चल रही है।
1: वे पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमरल स्पष्ट करो कि श्रद्धालुओं और यात्रों के गुरुद्वारे में आ जाण समान रूपल जारी छू। लंगर, अरदास और दोहर धार्मिक गतिविधियों ले नियमित रूपल संचालित होने उन्होंने लोगों ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने के लिए अपील करी।

0: सूचनाओं पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। कल से लगातार यहाँ पर लंगर सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अरदास यथावत जारी है। सभी यात्री गुरुद्वारे में आ रहे हैं और अपनी यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें और केवल औपचारिक हैंडल से ही अपनी सूचनाएं प्राप्त करें।
1: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपु लोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बठे सुनने लग रहा। इन समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड मेले उपलब्ध छन। ताजा समाचार नक लीजिए अपु लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
2: टीबी मुक्त उत्तराखंडक लक्ष्य के हासिल करने के लिए देहरादून में स्वास्थ्य विभागक अभियान लगातार जारी छो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार सरमाल बता कि जिल में 189 उच्च जोखिम क्षेत्रों के चिन्हित कर 100% स्क्रीनिंगक लक्ष्य रखी जा रहो। निक्षय पोर्टल पर अब ताले लाखों संवेदनशील लोगों का पंजीकरण करी जानो और 53% एक्सरे स्क्रीनिंग पूरी हैगी। उन्होंने बता कि देहरादून में हर साल 3.5 से 4 हजार टीवी सक्रिय मामल सामने आनी गेलीजी बीमारी बखत पर पहचान और उपचार पर विशेष जोर दी जानो। स्वास्थ्य विभाग द्वी नई एक्सरे मशीनों मांगले करी ताकि स्क्रीनिंग रफ्तार और बढ़ाई जा सको और टीवी मामलों में प्रभावी कमी लाई जा सको।
3: हमारी एक्सरे मशीन है अलग अलग फैसिलिटी में है तो वहाँ पे भी हम प्रयास कर रहे हैं कैसे किस तरीके से टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हम लोगों की ज्यादा स्क्रीनिंग उसमें कर सके। एक इशू थोड़ा सा रहता है कि वहाँ पे एक टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत क्योंकि सभी को फ्री किया जाना है इसमें तो एक थोड़ा सा इशू उसमें रहता है कि किस तरीके से हम उन लोगों को वहाँ पे फ्री करते हैं उसको स्क्रीन करें। उस संबंध में लगातार एमओएसयू को निर्देश दिए जाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो इंडोर मरीज हैं या जो भी वल्नरेबल ग्रुप के हैं उनका स्क्रीनिंग जो करें तो वो उसको बढ़ाया जा रहा है और हम पूरा प्रयास निश्चित रूप से इसमें हम वृद्धि करेंगे और अच्छे रिजल्ट इसमें आएंगे। देहरादून में क्योंकि अब ऐसा महानगर है तो यहाँ निश्चित रूप से केसेस ज्यादा रहते हैं तो एक समय पे अगर हम बात करें तो 3500 से 4000 के आसपास हमारे एक्टिव केसेस जो है वो रहते हैं।
2: पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरियाल आज नगरक बहुप्रतीक्षित कंडोलिया इंडोर स्टेडियमक शुभारंभ करो। आधुनिक सुविधाओं सुसज्जित यो स्टेडियम के खेल प्रेमियों और युवा खिलाड़ियों के समर्पित करेगो। यह अवसर पर श्री पौरी जिलाधिकारी सराहना करते हुए कहो कि पौड़ी नगरक नई पहचान देण में उनर महत्वपूर्ण योगदान रहो। उन्होंने नागरिकों और खिलाड़ियों थे स्टेडियमक संरक्षण और रखरखाव में सक्रिय सहयोग देणक निमंत्रण ले दी। वे जिलाधिकारी कौकी स्टेडियम के उच्च मानकों के अनुरूप विकसित करी जेरो जो पौड़ी नगरक लीजी एक प्रेरणादायक उदाहरण बनल।
4: अब इसका पूरा एक जीर्णोद्धार पिछले 4-5 महीने के अंदर कराया गया जिसमें कि इसकी जो लाइटिंग है उसको सुधरवाया गया। हमारी जो वुडन फ्लोर था मेनली उसी का काम था। वुडन फ्लोर्स को मैटिंग को सभी को चेंज करके पुनः इसको एकदम नए जैसा बनाया गया और साथ में जो बाहर का भी सौंदर्यीकरण किया गया और अब वॉशरूम आदि का काम भी कराया जा रहा है। और पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी तो पानी आदि के भी कूलर्स और जो वाटर फिल्टर्स आदि सभी की व्यवस्था की गई है। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि मैक्सिमम बच्चे इससे लाभ अर्जित करें और ज्यादा से ज्यादा क्योंकि जो पौड़ी के लोकल बच्चे हैं वो यहीं पे आकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और एक कोच भी हमारा कम था तो अभी कुछ समय पहले एक नया कोच भी बैडमिंटन के लिए रखे गए हैं जो एक यहाँ पे स्पेशली इंडोर के लिए रहेंगे और एक ऊपर राशि के।
2: उत्तराखंड राजस्व परिषदक आयुक्त रंजना राजगुरुल चंपावत कलेक्ट्रेट मा राजस्व विभाग कामों की समीक्षा करी। उन्होंने राजस्व न्यायालय में लंबित पुराण वादों के ज्यादा निस्तारणक निर्देश देते हुए कहो कि एलआर एक्ट के तहत 6 महीने भी ज्यादा बखत ताले लंबित मामलों प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण पक्क करी जल। आयुक्तल प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए ई ऑफिस प्रणाली ज्यादा बटी ज्यादा उपयोग करने पर विशेष बल दी। आखिर में मुख्य समाचार आई सुनो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल कौकी संत समाजक मार्गदर्शन और सहयोगल हरिद्वार में अणवल कुंभ के दिव्य और भव्य रूप दी जल। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी पिथौरागढ़ में अलग अलग विभागों की समीक्षा ले करी जिलमा विकास कामों प्रगति के संतोषजनक बता। टीबी मुक्त उत्तराखंडक लक्ष्य के हासिल करने के लिए देहरादून जिलमा स्वास्थ्य विभागक अभियान लगातार जारी और पौड़ी नगरक बहुप्रतीक्षित कंडोलिया इंडोर स्टेडियमक शुभारंभ। आधुनिक सुविधाओं सुसज्जित यो स्टेडियम के खेल प्रेमियों और युवा खिलाड़ियों के

0: समर्पित करीको। यही के तगड़े ही कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचारों या अंक इति के समाप्त हूँ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सरस। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं गुलाम अली की गाई इस गजल से।

नाज़िर काज़मी का कलाम अभी आप सुन रहे थे, फनकार थे गुलाम अली। कार्यक्रम का अगला नगमा ये सुनते हैं नदीम की आवाज़ में।

मिले जुले गीत गज़लों का कार्यक्रम सबरस इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए के एम आरिफ का कलाम, फनकार हैं गुलाम अली।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से और फ्रांस का सामना इराक से होगा। अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। ISSF जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। फ्रेंच पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, जीते स्वर्ण पदक। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कैलिफोर्निया के फुलटन में कल से शुरू। FIH प्रो लीग में भारत ने नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया और विश्व मुक्केबाजी कप में ज्योति ने जीता एकमात्र स्वर्ण पदक। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट्स में से एक फीफा विश्व कप से, जहां हर दिन रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
1: फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। मिस्र के मोहम्मद सलाह ने शानदार प्रदर्शन किया और अपने देश की ओर से सर्वाधिक गोल करने के करीब पहुंच गए हैं। सलाह ने कल न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप में 3-1 की जीत में अपना 68वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया, जो अब मिस्र के मौजूदा कोच होसाम हसन के करियर रिकॉर्ड से सिर्फ एक गोल कम है। यह विश्व कप में उनका तीसरा गोल था। इससे पहले 2018 में रूस में खेले गए विश्व कप में उन्होंने 2 गोल किए थे।
2: Salah scores for Egypt. A World Cup in which the brightest stars have shone. Stamenich first time. Egypt secured their first ever win at the World Cup. And they do so by beating New Zealand by 3-1.
1: प्रतियोगिता में पहली बार विश्व कप में हिस्सा ले रही काबो वर्डे का शानदार सफर जारी है। ग्रुप एच में काबो वर्डे ने 2 बार की चैंपियन उरुग्वे के साथ 2-2 से मुकाबला ड्रॉ किया। इससे पहले काबो वर्डे ने स्पेन को भी अपने पहले मैच में ड्रॉ पर रोका था। लगातार दूसरे ड्रॉ के साथ ही काबो वर्डे ने टूर्नामेंट में दूसरा अंक भी हासिल कर लिया है और टीम राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की रेस में बनी हुई है। मैच की शुरुआत से ही काबो वर्डे का दबदबा देखने को मिला। टीम ने मैच के 21वें मिनट में उरुग्वे के खिलाफ 1-0 से बढ़त बनाई। टेल्मो अरकाजो की फ्री किक को केविन पिना ने शानदार गोल में तब्दील किया। यह काबो वर्डे का विश्व कप इतिहास का पहला गोल भी रहा। हाफ टाइम से पहले ही स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। उरुग्वे की ओर से मैच का पहला गोल मैक्सी अरुजो ने किया। इसके बाद स्टॉपेज टाइम में उरुग्वे ने मैच में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। टीम के लिए दूसरा गोल अगस्टन केनोबियो ने किया। काबो वर्डे के लिए 60वें मिनट में फरेला ने गोल करते हुए 2-2 से स्कोर को बराबर कर दिया। इसके बाद किसी भी टीम को सफलता हाथ नहीं लगी और मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में बेल्जियम और ईरान के बीच मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर खत्म हुआ। लॉस एंजलिस स्टेडियम में दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन शानदार गोलकीपिंग और मजबूत डिफेंस के कारण कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। इस ड्रॉ के साथ ही बेल्जियम और ईरान को अभी भी इस विश्व कप में अपनी पहली जीत का इंतजार है। टीम के अनुभवी मिडफील्डर केविन डी ब्रुइन ने शुरुआती मिनट में ही लंबी दूरी से शॉट लगाया, लेकिन गेंद गोल पोस्ट के बाहर चली गई। इसके बाद डी ब्रुइन और लिएंड्रो ट्रोडार्स ने मिलकर कुछ अच्छे मौके बनाए, लेकिन ईरान के गोलकीपर अलीरेजा बेरानवंद ने शानदार बचाव करते हुए बेल्जियम को बढ़त लेने से रोक दिया। हाफ टाइम तक स्कोर 0-0 ही रहा। निर्धारित समय के बाद मिले 5 अतिरिक्त मिनटों में भी कोई गोल नहीं हुआ और मुकाबला 0-0 की बराबरी पर खत्म हुआ। ग्रुप एच मुकाबले में स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सऊदी अरब को 4-0 से करारी शिकस्त दी। स्पेन की इस जीत में युवा खिलाड़ी लामिल यामल और स्ट्राइकर मिकेल ओयार जाबल ने अहम भूमिका निभाई। यामल ने 1 गोल किया जबकि ओयार जाबल ने 2 गोल दागे। स्पेन का

0: अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ वेम्बू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और

0: भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
2: वित्त मंत्री डॉक्टर ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलान बतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलान बतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेस्तेग बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उप सचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई।

0: और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता, तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए सागर फिल्म से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी वर्मन ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। कार्यक्रम का अगला गीत ये सुनते हैं याराना फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: किशोर कुमार के गाए अनजान के बोल और राजेश रोशन के संगीतबद्ध याराना फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
2: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। रोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। जब युवाओं को अवसर मिलते हैं तो न केवल उनका भविष्य संवरता है बल्कि देश की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार

0: करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है ये योजना, इससे युवाओं, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में। हमारा विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा और क्षेत्रीय आयुक्त प्रणित जोशी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है उसके बाद 2331-0481 या 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं और ट्विटर हैंडल है @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए आपके जो भी सवाल हैं और शंकाएं हैं पूछ सकते हैं। तो आगाज करते हैं कार्यक्रम का। सबसे पहले पूर्णेंदु जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो कि यहाँ हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने के लिए एक सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जारी की है। ये इंसेंटिव स्कीम इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर अभी अगले 2 साल के लिए रहेगी और इस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट हो रहा है उसको एक बढ़ावा मिले और जो एम्प्लॉयज़ किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ रहे हैं वो वहाँ पे कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बनी रहे।
0: जी प्रणित जी, आपसे जानना चाहूँगी कि ईपीएफओ बहुत मेजर रोल निभा रहा है, क्या है, अपने श्रोताओं को इस बारे में बताएं।
3: हाँ, सो ये स्कीम जो है भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ को सौंपा है। तो ईपीएफओ इंडिया एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल एम्प्लॉयज़ है लगभग 8 करोड़ फॉर्मल एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ कवर्ड है। तो ये स्कीम में जो भी बेनिफिट्स हैं वो ईपीएफओ के थ्रू हम देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई एडिशनल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइदर फॉर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स। डायरेक्टली ईपीएफओ एनरोलमेंट से ही सारे बेनिफिट्स हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इनको दी जाएगी।
0: ये तो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है ईपीएफओ नियोक्ता और जो कर्मचारी के बीच में। हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
4: नमस्कार,
0: सवाल पूछे अपना।
4: विकसित भारत के अंतर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला और किस तरह का रोजगार मिला?
3: रमाशंकर जी, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है तो अभी तक लगभग 70 लाख युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं, लगभग 70 लाख से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। इसमें लगभग 13.29 लाख तक का बेनिफिट अभी हमने उनको, इन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इनका पहला किस्त का जो बेनिफिट है हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिए।
0: जी पूर्णेंदु जी, आपने इंसेंटिव्स की बात की थी तो इंसेंटिव्स जो, अगर मैं सबसे पहले कर्मचारी जो पहली बार जो नौकरी पाने वाले हैं तो उनको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है ये बताएं।
2: कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलती है इस स्कीम में वो है जो पहले 6 महीने तक अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के बाद वहाँ रह जाता है तो उनका जो एवरेज वेज होता है उसका आधा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम वो 15,000 रुपये, तो ये पूरा बेनिफिट हो गया। पहले 6 महीने में उनको 7,500 रुपये तक मिलते हैं और अगले 6 महीने तक अगर वो एक हमारे यहाँ पे वो लिटरेसी कोर्स उनको करना पड़ता है, 6 महीने के बाद अगर उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया और लगातार वहीं एम्प्लॉयड रह गए तो उनको 12 महीने के बाद 15,000 रुपये तक की राशि दी जाती है।
0: तो 6 महीने के बाद और फिर 6 महीने
2: के दो बार में दिया
0: जाता है। आगे भी चर्चा करते हैं, पहले अपने श्रोता का सवाल पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हैं राकेश जी।
4: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
4: जी। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, तो इसमें हमें क्या क्या प्रावधान रखना पड़ता है और इसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
2: राकेश जी, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको केवल ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ता है। ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए जो ईपीएफओ में कवरेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो आपकी कंपनी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी संस्थान हो जहाँ आप काम कर रहे हैं, वो अगर ईपीएफ में कवर्ड हैं, और जो बिल्कुल नए लोग अगर आ रहे हैं उस कंपनी में, जो 1 अगस्त 2025 के पहले कहीं भी हमारे ईपीएफओ से जुड़े हुए नहीं थे, तो वैसे लोगों के लिए एक इंसेंटिव है। और इसलिए इसमें कोई अलग से आपको कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ईपीएफ में आप किसी भी एम्प्लॉई का कंप्लायंस हो रहा है, तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मिल जाता है।
0: जी, अगर हम नियोक्ता की बात करें तो उनको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा और जो इसमें उनको भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, और ख़ासकर जैसे अगर कोई कंपनी है, अगर वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसने ईपीएफओ में रजिस्टर किया है या स्टार्टअप है नया, तो उन सब के लिए क्या प्रावधान है?
2: कंपनी के लिए 2-3 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला, अगर वो ईपीएफओ में कवर्ड नहीं है, तो पहला तो उनका कवरेज ज़रूरत होगी यहाँ ईपीएफओ में। साथ ही उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं, जो नए एम्प्लॉई आके ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बेसिस पे, और जो पुराने एम्प्लॉई जो भी हैं, जो कहीं और से आके उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टाइमर एंड रीज्वाइनिंग, तो दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। और जो इंसेंटिव है, अगर 10,000 रुपये तक की सैलरी है एम्प्लॉई की, तो उसमें 1,000 रुपये, अगर 20,000 रुपये तक की सैलरी है 10 से 20,000, तो 2,000 रुपये, और अगर 20,000 से लेकर और 1,00,000 रुपये तक की अगर सैलरी है, तो 3,000 रुपये का इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है। और ये एम्प्लॉयर को ये प्रत्येक महीने जैसे मिलता जाएगा, अभी पहले 6 महीने किसी का सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर अगले महीने भी किसी न किसी का 6 महीने होगा, तो वैसे उनको बेनिफिट मिलता रहेगा।
0: डीबीटी के थ्रू ही
2: ये सारे बेनिफिट एम्प्लॉयर को डीबीटी के थ्रू मिलेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल एक ही होती है, एक ईपीएफ में कवर्ड हो, दूसरा उनका जो पैन डिटेल्स है वो हम लेते हैं उनके, क्योंकि हम पैन से जो लिंक्ड उनका बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है। डीबीटी एम्प्लॉयज के लिए होती है।
0: जी, हरिद्वार से जुड़े हैं रवि जी।
1: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: हाँ जी, थैंक यू, और महानुभव विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी। सर, मैं जानना चाहता हूँ, सर ये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है, सर इसके लिए जो ये एक युवा है वो मतलब क्या क्वालिफिकेशन होकर मतलब इस योजना का हिस्सा बन सकता है, मतलब इस योजना से लाभ उठा सकते हैं, इसमें एक युवा की क्या मतलब क्वालिफिकेशन,
0: क्या पात्रता क्या होनी चाहिए? हाँ,
3: रवि जी, इसमें जैसे कि पूर्णेंदु जी भी पहले बताया कि इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर पहली बार आपकी संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उमंग ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस ऐप में उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हम लोग UAN कहते हैं। और उसके बाद 6 महीने अगर उसी संस्था के साथ आप जुड़े हैं और आपका जो जो ग्रॉस वेजेस है आपका जो सैलरी है वो 1,00,000 से कम होना चाहिए, उनके लिए एक स्कीम है, तो 6 महीने के बाद आपको पहला किस्त 7,500 तक दिया जाएगा, और उसके बाद एडिशनल 6 मंथ्स के बाद आपको दूसरा किस्त दिया जाएगा।
0: जब एम्प्लॉयर्स की बात आगे कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मैंने पूछा कोई नया अगर स्टार्टअप आया है और 50 से कम अगर उसके एम्प्लॉयज़ हैं या 50 से ज़्यादा हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं अलग अलग कि मिनिमम आपके पास अगर आपको इतने रखने होंगे, ईपीएफओ में रजिस्टर होना होगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं।
2: जी, एक स्कीम की सबसे प्राइमरी कंडीशंस में से एक ये है कि आपने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उस संस्थान ने कितना जनरेट किया है। तो उसने अगर किसी के पास 50 से कम एम्प्लॉई हैं, अगर उन्होंने मिनिमम 2 भी एम्प्लॉई को जनरेट कर दिया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर नया आ गया, और अगर 50 से ज़्यादा उस संस्थान के सदस्य हैं, तो वैसे केसेस में 5 उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तभी वो इसके लिए पात्रता के भागी होंगे। लेकिन साथ में एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे ECR पे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है, तो न केवल ये कितना उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, दो आदमी होंगे या पांच आदमी होंगे, बल्कि इन लोगों के लिए कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड होगा।

0: महीने के लिए।
1: हाँ,
0: तो लगातार अगर कंप्लायंस आएगी 6 महीने, तभी ईपीएफओ को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका वेज कितना था और कितने रुपए के इंसेंटिव के हकदार हैं। जो थ्रेशोल्ड का एक और दूसरा भी कॉम्पोनेंट है हमारा, कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट है कितना जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने एक रखा हुआ है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड हमने माना हुआ है, राइट। एक पीरियड है कि अगर अगस्त के पहले, अगस्त 2025 के पहले अगर कोई भी इस संस्थान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उसको हम तभी मानते हैं, उसके पिछले 12 महीने का एवरेज देखते हैं कि कितने लोग थे, और वहां से फिर उसका वो एवरेज हो गया, बेसलाइन जिसे हम कहते हैं। तो बेसलाइन से कितना बढ़ रहा है, अगर अगस्त 2025 के बाद कोई भी संस्थान है तो उसका बेसलाइन होगा हमारा वो 20 रहेगा मिनिमम, वहां पे एवरेज हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो उस बेसलाइन के बाद फिर हम उसको आगे काउंट करते हैं।
1: छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी और तभी इंसेंटिव के आप पात्र बनेंगे। बिहार से जुड़े हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे अनुरोध है कि अपने जो आपका रेडियो है सेट है उसकी आवाज कम कर दे।
2: मैडम कर दिया मैंने।
1: जी जी,
2: कर दिया कर दिया।
1: सवाल
2: मैडम, मेरा ये सवाल था कि क्या मैं अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हूँ NIC मुजफ्फरपुर में, ठीक है
1: जी,
2: लेकिन थर्ड पार्टी जो मुझे पेमेंट कर रही है, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट के, ये मेरा जो है EPF नहीं कट रहा है मैम, तो क्या हम लोग, लेकिन पहले से जो कंपनी हमारी थी उनके द्वारा मेरा जो EPF कटा हुआ है, तो क्या हम लोग इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है?
1: जी पुनेंद्र जी,
0: हाँ, इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको बिल्कुल नए एम्प्लॉई होना पड़ेगा। आप चूंकि पहले से EPF से जुड़े हुए हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट मिलती है उसमें आप हकदार नहीं होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है, अगर आप कहीं भी और दूसरी जगह पे ज्वाइन करते हैं, तो उसको एज रीज्वाइनी हम लोग उन आपके जो भी यहाँ पे ज्वाइन करने के हिसाब से एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा।
1: महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी। हेलो,
3: हाँ जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ, ठाणे महाराष्ट्र।
1: जी जी,
3: हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है, जैसे EPFO में जो नई कंपनियाँ होती है, जैसे जॉइंट होते हैं, लेकिन एम्प्लॉय का पैसा तो कटता है, तो कभी कभी ये देखा गया है कि सही तरीके से पैसा वहाँ पे जमा नहीं हो पाया है, फ्रॉड, कभी कभी फ्रॉड भी देखा जाता है, गड़बड़ी देखी जाती है उसमें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और सही, मतलब जो पैसा सैलरी से कट जाता है एम्प्लॉयज का इस कंपनी से, तो वो जमा हुआ है कि नहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कैसे चेक करें? थैंक यू
1: जी। प्रणय जी,
4: गुरुनाथ जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो एम्प्लॉयज से, जो एम्प्लॉयर पैसे काटता है PF जमा करने के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर PF जमा नहीं करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, एंड उस एम्प्लॉयर को एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर उनको जेल भी भेजा जा सकता है। तो अभी इसमें ये सवाल है कि इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपका जो पासबुक है, आप अपने पासबुक में आप चेक कर सकते हैं हर महीने की जो आपका अमाउंट कट रहा है वो सही से जमा हो रहा है नहीं है, एंड उसमें पासबुक में आपको ये भी दिखेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है और टोटल कितना अमाउंट है, तो आपके लॉगिन या फिर आप उमंग ऐप से भी आपका पासबुक आप देख सकते हैं इसमें।
1: जी, बिहार के सासाराम से जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
5: जी नमस्कार, मेरा ये सवाल था, सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार, कि जैसे कि हम लोग जो अभी 2025 से जो अभी लागू हुआ है 1 अगस्त, उससे पहले जितने भी जैसे कि अलग अलग कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं या बीच में कहीं छूट जाता है, तो कैसे वो मालूम चलेगा कि उनका PF जो करता है या PF का जो इतना संभाग उनमें रहता है क्रेडिट, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो कट रहा है कहाँ कैसे?
0: हाँ अमित जी, अमित जी नमस्कार। आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया होगा, आपने जहाँ कहीं भी काम किया होगा, तो अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू आप एम्प्लॉई पोर्टल पे जाके EPFO के आप लॉगिन कर लें। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, तो जो भी आपका आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर है उसके थ्रू OTP से आप रिसेट कर सकते हैं, और जितने जगह पर भी आपने काम किया होगा जो UAN से लिंक्ड होगा, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे आपके अपने पोर्टल पे ही, आपके पासबुक में भी वो दिखने चाहिए, और जहाँ जहाँ से भी आपने काम किया है, अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं कर

0: करवाया है तो आप उसको एक जगह पर ट्रांसफ़र करवा लें ताकि आपके लिए बाद में सुविधा होगी।
1: जी हाँ, जैसे अब कई लोगों की शंकाएं हैं, कई जो होते हैं जो कर्मचारी हैं उनको ईपीएफ खाते, यूएएन नंबर जो अन्य सुविधाएं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो उस लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कोई ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या कदम उठाने हैं
0: अभी? हाँ प्रणीत,
2: सो जब भी कोई अभी जो हमने अगस्त 2025 से एक प्रावधान किया है, पहले ये होता था कि जहाँ पे जिस संस्था में कोई ज्वाइन करते हैं कोई एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर खुद वो उनका यूएएन जनरेट करते थे। तो अभी हमने वो हक सिटीजन को ही दिया है, एम्प्लॉय को ही दिया है, जो खुद अपने उमंग ऐप से जो आधार ऑथेंटिकेशन करके वो खुद अपना यूएएन जनरेट करेंगे और फिर वो एम्प्लॉयर को देंगे। तो उससे जो उसको बेसिक तो उनके हाथ में है कि उनका ईपीएफओ का अकाउंट बना नहीं है, बना है या नहीं है, अभी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है। तो उसके बाद उनको ये देखना है कि उनका हर महीने पासबुक उनको चेक करना है कि हमेशा वो हर महीने उनका एवरी मंथ डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा है।
1: जी।

0: योजना है रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। लेकिन ऐसे में यदि कोई जो नियोक्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद कर्मचारी को नौकरी से हटा देता है या उसे लंबे समय तक कार्य में नहीं बना के रखता है, तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रावधान या निगरानी व्यवस्था है?
1: इसमें एक सिस्टम का ही इनबिल्ट मैकेनिज्म है। जैसे ही अगर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कम होती है जो बेस लाइन से, या थ्रेशोल्ड अगर उसका डाउन होता है, तो एम्प्लॉई तो चलो 6 महीने के बाद अगर वो नहीं रहते हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट में तो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट, लेकिन साथ ही एम्प्लॉयर को भी यह बेनिफिट कम हो जाती है। तो एम्प्लॉयर के लिए काइंड ऑफ डिसइंसेंटिव है कि अगर लोगों को निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं, अगर वहाँ पर रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो राधर एम्प्लॉयर को अभी ज़्यादा इंसेंटिव इसमें है कि लोगों को रखें, रिटेन करें और उनको ट्रेन करें। तो केवल रिटेन करना ही नहीं होगा, जितने दिन लोग रहेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एम्प्लॉई के लिए भी फायदा, एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा।
0: जी, विन विन सिचुएशन है दोनों।
1: विन-विन है जी।
0: बिहार से जुड़े हैं मोहन पासवान जी।
2: नमस्कार सर।
1: नमस्कार।
2: मैं बस सत्तूर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ सर।
0: जी।
2: सर मैं जानना चाहता हूँ कि छोटी छोटी कंपनियां लोगों के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाई है सर नए स्तर से। दूसरा है सर
1: जी, पूछे
0: जी मोहन जी,
2: जो सर भारतीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है 2017 तक, इसके लिए कौन से सूत्र तैयार किए गए हैं सर, एवं इसमें युवाओं के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाए गए हैं सर?
0: जनरलाइज सवाल पूछाना ने
1: एक जनरलाइज सवाल है। बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई हैं भारत सरकार के द्वारा, उनमें से एक योजना ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है जो 2047 के विजन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को बेनिफिट देते हुए, इंसेंटिव देते हुए ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को जो सृजित कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, वर्कर जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ओवरऑल इंसेंटिव करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए ये एक बहुत अच्छी योजना है।
0: जी, अक्सर मैं एक सवाल जो रहता है जहन में MSME क्षेत्र को लेकर, जो छोटे छोटे जो रोजगार सृजित करते हैं, तो देश के जो MSME क्षेत्र को रोजगार का जो प्रमुख हम स्रोत मानते भी हैं, तो इस योजना को MSME क्षेत्र को क्या लाभ मिलने की संभावना है इस योजना से?
3: तो इसमें MSME के ऊपर जो जो इसके ऊपर प्रोविजंस है, तो नॉर्मली EPFO जो लॉ है वो केवल एस्टैब्लिशमेंट्स विद एटलीस्ट 20 एम्प्लॉयज जो है उनके लिए मैंडेटरी है। बट आज के डेट में हमारे पास जो डेटा है उसमें बहुत सारे ऐसे MSMEs हमसे जुड़े हुए हैं जिसका स्ट्रेंथ 20 से भी कम है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि उनके लिए उनके छोटा साइज को ध्यान में रखते हुए, उनके कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनको केवल 2 एम्प्लॉयज एडिशनल एम्प्लॉयज जनरेट करने का उनको कंडीशन रखा गया है। तो 2 साल के पीरियड में उनको एटलीस्ट 2 नए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और उनको सस्टेन करना है। तो सारे MSMEs इसमें बहुत बेनिफिट मिलने की आवश्यकता है।
0: तो विनिर्माण क्षेत्र को भी इस जो योजना से बहुत लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो वो किस प्रकार मिलेगा?
3: तो विनिर्माण क्षेत्र में एम्प्लॉयर्स जो है उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है इसमें। सो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ये स्कीम चलता है, तो बाकी संस्थाओं को जो 2 साल तक जो बेनिफिट मिलता है हर एक महीने हर एक नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको 4 साल तक इसके स्कीम के बेनिफिट्स मिलते हैं।
0: यदि कोई जो युवा है पूर्णेंदु जी, पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है, तो उसे EPFO से जुड़ी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा?
1: जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनका एक फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू उमंग ऐप पे जब भी वो UAN जनरेट होता है तो वहाँ पे उनकी हम आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। जो पार्ट ए का जो बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम में कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका होना पड़ेगा। सेकंड, उनका एक DBT इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए। सो आधार के साथ लिंक होता है, लेकिन आपको बैंक में साथ ही साथ अपना वो DBT के लिए भी इनेबल करवाना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे, फिर जैसे ही EPFO में अगर आप जुड़ते हैं ऑटोमेटिकली आप 6 महीने तक अगर आ रहे हैं यहाँ हमारे साथ सस्टेन कर गए एक एम्प्लॉयर के साथ, आपका सारा रिटर्न यहाँ आ रहा है, आपका कंप्लायंस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बेनिफिट कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में चले जाते हैं।
0: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्र भान जी।
4: नमस्कार, मैं चिरमिरी कुरासा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़।

0: से इंद्रपाल सिंह बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है,
1: सवाल पूछे जी,
0: भारत रोजगार रोजगार में कौन कौन से सेक्टर है,
1: कौन कौन से
2: इसमें
1: sectors?
2: इसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्कीम ईपीएफओ के थ्रू भारत सरकार चला रही है, वो भी इसलिए यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन यूएएन के थ्रू करते हैं, कंपनीज कवर्ड हैं तो बेनिफिट बिकॉज आइडेंटिफाइड लोगों को जाती है। तो जितने भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उनके थ्रू ये सारा कुछ, ये सारी बेनिफिट जाती है
1: जी। अगर किसी के मन में प्रश्न है कि या कोई कर्मचारी है नियोक्ता इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो कोई ऐसा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सीधा संपर्क किया जा सकता है?
3: हाँ, तो ये स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारा pmvbrv.labor.gov.in। इसमें सारे स्कीम रिलेटेड सारे आपको विशेष उसमें मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कॉल करके पूछना है तो टोल फ्री नंबर है 1-44-80-1-44-80। इसमें आप मंडे टू सैटरडे 10 to 6 आप कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं।
1: जी हाँ, 1-44-80 हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का जो भी है निवारण पा सकते हैं। पूर्णेंदु जी, आपसे एक जाते जाते यही आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगी कि ईपीएफओ के आंकड़ों के आधार पर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक रोजगार में क्या परिवर्तन देखने को मिले?
2: मैम, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं और ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है
1: जी।
2: वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी वो काफ़ी फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और हम सबों को एक फॉर्मल इकोनॉमी, एक विकसित भारत देखने को मिलेगा।
1: जी हाँ, हमें विश्वास है कि आज की चर्चा से युवाओं को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में उपयोगी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद आप दोनों का, पूर्णेंदु जी और प्रणय जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ चर्चा की। श्रोताओं, आपका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी सोमवार को एक नए मुद्दे के साथ। तब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: नमस्कार।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और आकाशवाणी ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं ज़फ़र हुसैन खान बदायूनी एवं साथियों की गाई इस कव्वाली से।

सुगम संगीत इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कैसर अल जाफरी का कलाम, फनकार हैं गुलाम अली।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुगम संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला नगमा ये सुनते हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में।

ए हरिहरन की गाय इस गज़ल के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 10:30 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं चितचोर फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है यशुदास ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

FM 16.8 MHz पर आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए नदियां के पार फिल्म से आवाज़ें हैं हेमलता और जसपाल सिंह की गीत और संगीत रविंद्र जैन का है

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला नगमा ये सुनते हैं सीआईडी फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ें हैं। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप फिल्म संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, काजल फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रवि ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में दीवाना फिल्म से। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं मधुमति फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल शैलेंद्र के हैं और संगीत दिया है शैलेश चौधरी ने।

0: मोहम्मद रफ़ी के गाए मधुमति फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के KGMC में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi today. He noted that several initiatives have been launched in the last 12 years with the motive of Nation First. Mr. Modi asserted that Nation First is India's highest guiding principle today.
4: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
3: द प्राइम मिनिस्टर सेड द कंट्री हैज विटनेस्ड एंड एंड्योर्ड साइकल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन। ही एडेड दैट इंडिया कैरीज द मेमोरी चिप ऑफ एजेस विद इन इट्स कॉन्शियसनेस। Mr. Modi stated that India's actions are shaping the future for the next 1,000 years. Highlighting the achievements of the NDA government over the past 12 years, Mr. Modi said, mobile connectivity has been extended to approximately 45,000 villages across the country. He also mentioned that around 75,000 banking correspondents and over 6,000 post offices were established. Shiv Sena leader and Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde today announced the induction of 6 Lok Sabha MPs from the Shiv Sena UBT faction into the party. Addressing a press conference in Mumbai, Mr. Shinde welcomed the MPs Sanjay Dina Patil, Sanjay Deshmukh, Sanjay Jadhav, Bhav Saheb Bakachore, Nagesh Patil Ashtikar and Om Prakash Rajanimbalkar into Shiv Sena.